मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं, प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के

0: बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं भक्ति संगीत से महकती वंदना। शुरुआत करते हैं समूह स्वर में देश गान के साथ। रचना है नारायण लाल परमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत से सराबोर वंदना। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब सुनते हैं चिंतन। आलेख है श्री जयशंकर शर्मा का।
1: जीवन क्या है, जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप और लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके कारणों को जिसने समझ लिया, समझना चाहिए कि उसे जीवन समुद्र में सुरक्षित नौकायन का मार्ग मिल गया, दिशा मिल गई, उसने जीवन जीने की कला को आत्मसात कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, हमेशा आनंदमय आत्ममुग्ध जीवन व्यतीत करता है, आनंद का उजास फैलाता है, जीवन को आनंदमय अवसर

0: ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, हमेशा आनंदमय आत्ममुग्ध जीवन व्यतीत करता है, आनंद का उजास फैलाता है। जीवन को आनंदमय अवसाद रहित बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें, मन विवेक और बुद्धि को जागृत, संतुलित और निरपेक्ष बनाएं, काम क्रोध लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का दमन करें, उसके लक्ष्य की सार्थकता को हासिल करने का प्रयास करें। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति के मार्ग का अनुसरण करें। मानसिक दुर्बलता और आंतरिक अस्त व्यस्तता के नियमन और उच्च संतुलन के द्वारा मनुष्य की शक्तियां संगठित होती हैं। एकाग्रता और तन्मयता के जरिए उन्हें शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इंद्रिय निग्रह और कठोर अनुशासन से उसे नई ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। एक बार हमने खुद को, संसार को और जीवन के आदर्श उद्देश्यों को आत्मसात कर लिया तो समझिए कि हमने सत्य को जान लिया। हमें ये बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि संशय, अविश्वास और अंधविश्वास मानव मन का तमस है, जिसकी उपस्थिति में सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी पथ भ्रांत होकर अपने लक्ष्य से दूर रह जाता है। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दीवा में सोता जगता जग जीवन। सचमुच अगर सुख ही सुख रहे तो वो भी उत्पीड़न ही है, सिर्फ दुख ही रहे तब तो मनुष्य जीवन से आजीज आ जाए। सुख और दुख दोनों ही दिन और रात की तरह विद्यमान रहे तो ही जीवन जीवन है। समृद्धि और संपन्नता को सुख का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए। हम ऐसे हजारों लोगों को देखते हैं जो समृद्धि और सुख सुविधाओं की बुलंदी पर हैं। उन्हें जीवन यापन की हर सुविधा और संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वो सुखी नहीं नजर आते। किसी न किसी रूप में दुख भी उनके साथ मौजूद है। इसी तरह विपन्न से विपन्न व्यक्ति भी हमेशा दुखी ही नहीं रहता, जीवन की मुस्कान उसके होठों पर भी दिखाई देती है। विपन्नता उसकी मुस्कान छीनने में समर्थ नहीं होती। हमारे देश में बड़प्पन धन संपत्ति या शान शौकत नहीं, बल्कि सद्गुणों, आदर्श व्यक्तित्व और महान बनाने वाले गुणों को महत्व दिया जाता रहा है। देश की महान विभूतियों पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो बड़े और श्रद्धेय इसलिए नहीं माने जाते कि वो संपन्न और कुलीन परिवार से थे, बल्कि इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी की बजाय सरस्वती के स्तवन को महत्व दिया। सेवा, त्याग और संतोष पथ के राही बने। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूरी बनाकर सेवा के राजमार्ग पर चले। भले आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। एक फ्रेंच कहावत है, जीवन आधा बीत चुका होता है जब हम सोचते हैं कि जीवन क्या है। विक्टर ह्यूगो कहते हैं कि जीवन एक पुष्प है और प्रेम उसका मधु। महाकवि दिनकर ने उसकी व्याख्या इस तरह की है, जो हिमालय से अटल हैं, सत्य पर हिलते नहीं, आग पर चलते हुए भी जो चरण जलते नहीं, उन पगों के रजकणों का नाम केवल जिंदगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री जयशंकर शर्मा का। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कगार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को ये प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का और संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। 176.

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। गायक स्वर था श्रीकांत पारगांवकर का और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। बीजों में अनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण, इस विषय पर कृषि चर्चा आप सुनते हैं संगीता टेटवार से।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज

0: मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम बोलते हैं कृषक भाई जब घर प्रमाणित बीज उत्पादन में भाग ले रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कई बार उनके बीज अमानक हो जाते हैं और उसका कारण होता है कि ODV परीक्षण या कहा जाता है कि भाई उसमें किसी अन्य किस्मों का मिश्रण पाया गया है। तो किसान भाई यही सोचते हैं कि भाई हमने तो देखा था तो उसमें तो ये मिश्रण नहीं था, लेकिन ये कैसा हुआ? तो उसका परीक्षण किस प्रकार प्रयोगशाला या प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत किया जाता है, मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहूंगी आज। जो भी कृषक भाई जो बीज उत्पादन करते हैं उन बीजों की ग्रेडिंग होती है या ग्रेडिंग के पूर्व भी अगर वो आधार बीज उत्पादन है तो आधार बीज के लिए हमारे यहाँ से GOT का परीक्षण किया जाता है। GOT अर्थात ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट के लिए शुल्क लिया जाता है, अगर स्व परागित किस्में हैं तो ₹550 प्रति सैंपल या नमूना, और यदि पर परागित किस्में हैं तो ₹650 प्रति हेक्टेयर के अनुसार उसमें शुल्क लिया जाता है। ग्रो आउट टेस्ट में हमारे यहाँ बिलासपुर में चोरभट्टी में GOT प्रक्षेत्र है। GOT प्रक्षेत्र में हम अगर खरीफ किस्में खरीफ फसलों का रबी के सीजन में GOT परीक्षण किया जाता है। अब आप भाई कहेंगे कि भाई वो तो बारिश के समय की फसल है और उसका परीक्षण आप ठंडी में कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको निसंदेह ये बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसके लिए उसी प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है। ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, पॉली हाउस बनाए जाते हैं, जिसमें वही नमी वही तापमान एवं आर्द्रता का निर्धारण करते हुए और 2000 दानों की एक प्लॉट तैयार किया जाता है जिसमें कि दानों को लगाया जाता है ग्रो आउट टेस्ट का परीक्षण करने के लिए। अब इस ग्रो आउट टेस्ट का परीक्षण में केवल मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम अनुवांशिक शुद्धता या फिर अन्य किस्मों के अगर बीजों का मिश्रण है उसका परीक्षण करें। तो इसके लिए बीजों को या पौधों को पूर्ण रूप से बिल्कुल जिस तरीके से खेत में लगाया जाता है उसी तरीके से खाद वगैरह देते हुए उनमें पानी वगैरह जिस जो भी आवश्यकताएं जिस स्टेज में या जिस समय अवधि में जो आवश्यकताएं होती है वो देते हुए उन पौधों को तैयार किया जाता है। और जब उसमें पुष्पन की अवस्था आती है उस समय कृषि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों, यदि वो धान के वैज्ञानिक हैं तो वो धान का निरीक्षण करेंगे, यदि वो दलहनी फसलों के वैज्ञानिक हैं तो दलहनी फसलों का निरीक्षण करेंगे, वो आते हैं। और अधिसूचित किस्मों के लिए जो पौध कैरेक्टर या बोल सकते हैं कि जो पौधों के बारे में जो बताया गया है कि उनका किस प्रकार का मॉर्फोलॉजी या उनके किस प्रकार के कैरेक्टर्स होंगे उसके आधार पर कि उसमें फूल का रंग क्या होगा, वो कितनी अवधि में पुष्पन आएगा, या उसमें अगर हम धान की बात करें तो हम देखते हैं बालियों में धान में वो निकले रहते हैं नुकेले नुकेले ऑन निकले रहते हैं, उन सबके आधार पर या फिर पौधों की लंबाई कितनी है इन सबके आधार पर वो पूरा निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण के उपरांत वो ये बताते हैं कि क्या अगर वो 10-10 है तो क्या इसमें स्वर्णा या किसी अन्य किस्म के पौधे भी तो हैं कि नहीं है, यदि वो पूर्ण रूप से अनुवांशिक वो शुद्ध पाए जाते हैं तो इस प्रकार वो अमानक हो जाते हैं, अतएव उन्हें वहीं पर ही निरस्त कर दिया जाता है कि इसमें अन्य किस्म के बीजों का मिश्रण है तो वो अनुवांशिक रूप से शुद्ध ये जो मिश्रण है उसमें जेनेटिक प्योरिटी की कमी है। दूसरा होता है कि प्रयोगशाला में अगर केवल आधार बीजों का ही छत्तीसगढ़ में प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत केवल आधार बीज उत्पादन में GOT का परीक्षण किया जाता है, किंतु यदि हम प्रमाणित बीजों या हम जैसे कि क्लास की बात करें तो आधार के बाद में आता है प्रमाणित बीज, तो अगर उनका परीक्षण की बात करें तो आधार और प्रमाणित दोनों प्रयोगशाला में भी नमूने भेजे जाते हैं, वहां पे किया जाता है ODV परीक्षण यानी अन्य पहचानी जा सकने वाली किस्मों का परीक्षण। उनका परीक्षण भी SeedNet पोर्टल में लिखे हुए या फिर उसमें पब्लिश हुए या फिर कह सकते हैं अधिसूचित किस्मों या वैज्ञानिकों द्वारा जो किस्में अधिसूचित की जाती है उसके बारे में पूरे प्लांट एवं सीड कैरेक्टर दिए गए रहते हैं, उनके आधार पर ही उन बीजों का परीक्षण किया जाता है कि उनकी लंबाई रंग आकार के आधार पर उनका परीक्षण किया जाता है। यदि स्वर्णा जैसे हम उदाहरण दूं तो सरना को सब जानते हैं कि भाई वो सुनहरे रंग का होता है, उसका छिलका छोटा आकार मध्यम आकार का रहता है, अगर उसमें कोई भी कह सकते हैं कि सफेद या हस्क मतलब जैसे हल्के रंग का छिलका पाया जाता है तो वो अपने आप ही ODV हो जाता है। तो इस प्रकार हम माइक्रोस्कोप और दूसरा लेंस की सहायता से निरीक्षण करते हुए अन्य किस्मों के बीजों को पहचानते हैं और उस प्रकार हम उसका परीक्षण करके अपना परीक्षण परिणाम देते हैं। धन्यवाद।
1: संगीता टेटवार से कृषि चर्चा भी आप सुन रहे थे। विषय था बीजों में अनुवांशिक

शुद्धता का परीक्षण। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग बसंत। सुबह 7:05 पर नमस्कार रायपुर कार्यक्रम के तहत सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर खाद्य विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जैन से बातचीत। वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस पर आकांक्षा फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर साधना नायक से बातचीत। साथ ही सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी से बातचीत।

बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल वाटिका सुबह 8:30 पर, जिसमें सुनेंगे बेरा के बाद हिंसा कभी भी अच्छा नहीं हो है। श्री भोलाराम सिन्हा की कहानी सुनेंगे क्रम आव सुनन कहिनी में, साथ ही होगा क्रम लयिका मन के चिट्ठी और बाल गीत। प्रगति के सोपान कार्यक्रम के तहत सुबह 9:00 सुनिएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू से रमाशंकर की बातचीत। चित्रपट संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2:00, दोपहर 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00।

0: सुबह 8:40 पर और रात 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार होंगी सीमा कौशिक और साथी। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे गोरेलाल बर्मन और साथी। सुबह 10:00 स्वरधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह और मीनल जैन। ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 11:05 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे रात 10:30 पर। हिंदी गजल का सफर, ये रूपक सुनिएगा रात 9:30 पर। लेखक श्री गिरीश पंकज और प्रस्तुति डॉक्टर ब्रिजेंद्र वैद्य की। आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा धुरवी गीत और हल्बी गीत। कलाकार होंगे बुद्धुराम और साथी और राजेंद्र कश्यप और साथी। बहने सुनेंगी कार्यक्रम बिंदिया दोपहर 1:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे क्रम आज की बात, अपनी सीमाएं तय करें, संकल्प से सिद्धि तक नारी, ये वार्ता सुनेगा। वार्ताकार होंगी श्रीमती रश्मि गुप्ता। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर, जिसमें मुख्य आकर्षण आज होंगे क्रम अपन गोठ जिंदगी अनमोल है। क्रम संस्कृति के महक के तहत सुनेगा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत, संगीत में लोक वाद्यंत्र के प्रयोग। वार्ताकार होंगे दानिश कुमार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्राया पंचमं अंतिमं प्रचरण सफलतया संपाद्य इटली देशात नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः महत्वपूर्ण खनिजाः आयुर्वेदः विज्ञानं तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां धनशोधनस्य आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे रसद क्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिण 24 परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम

0: चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनते हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

0: दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की महफिल हो, ऑफिस का ब्रेक हो या फिर बारिश का मौसम, एक चीज तो हर मौके को खास बना देती है, वो है चाय। और आज का दिन तो चाय प्रेमियों के नाम है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। साथियों, चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। भारत में तो एक कप चाय रिश्तों को जोड़ने, बातचीत शुरू करने और थकान मिटाने का सबसे आसान जरिया बन चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में चाय का स्वाद और अंदाज भी अलग है। कहीं मसाला चाय, कहीं कुल्हड़ वाली चाय, तो कहीं लेमन टी और ग्रीन टी का चलन है। खास बात यह है कि चाय के साथ सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। लेकिन दोस्तों, स्वाद के साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। सही मात्रा में और सही तरीके से पी गई चाय शरीर को ताजगी देती है, वहीं जरूरत से ज्यादा चाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे चाय की परंपरा, उसके स्वाद, सेहत और लोगों की जिंदगी में उसकी खास जगह के बारे में। इसके लिए जुड़ते हैं खाद्य विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जैन जी से। नेहा जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: थैंक यू
0: जी। नेहा जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि जो टी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हम उनके जो चाय को उगा

0: वाले हैं, जो फार्मर्स है और जो वर्कर है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी हम सेलिब्रेट कराना चाहते हैं कि, और जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उनको भी उनकी जो प्रॉब्लम है उसके तरफ फोकस करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये दिन को फिक्स किया गया कि हम उनकी भी प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि चाय का तो सबको इंजॉय कर रहे हैं पर उनकी प्रॉब्लम को हम ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं।
1: जी नेहा जी, भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, आप इसे कैसे देखती हैं?
0: चाय भारत में क्या, बीच में मैं बोलूंगी पानी के बाद जो सबसे ज्यादा पीने वाली कोई चीज है तो वो चाय है। भारत में तो जितना चाय हम प्रोड्यूस करें उसका 80% हम खुद ही कंज्यूम करते हैं, मतलब हर घर में या गली में, मोहल्ले में, ऑफिस में, किसी भी जगह आप जाएंगे तो चाय सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। आप खुशी में भी चाय लेते हो, कोई मौसम बदलता है तो भी आप चाय पीते हो, कहीं पे भी आप कोई बातचीत चालू करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप चाय को एंजॉय करते हैं। तो चाय एक सिर्फ लिक्विड पेय पदार्थ नहीं है, एक सेलिब्रेट करने की चीज है जो हर कोई एंजॉय करता है। इवन एज ग्रुप का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, छोटे बड़े यंग हर कोई जनरेशन है जो चाय को पसंद करती है।
1: जी नेहा जी, अलग अलग प्रकार की चाय जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी और मसाला टी, इसमें क्या अंतर होता है?
0: देखिए ये प्रोसेसिंग का अंतर होता है, क्योंकि ग्रीन टी होती है वो डायरेक्ट टी लीव्स होती है, वहां पे उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, आप डायरेक्ट चाय की पत्ती को सुखाया जाता है और हम उसको यूज करते हैं। ब्लैक टी जो होती है वो मतलब ब्लैक टी में मिल्क का यूज नहीं होता, ब्लैक टी को प्रोसेसिंग करने के बाद में थोड़ा हम ज्यादा मतलब तेज फ्लेवर चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग टी चाहिए तो ब्लैक टी का यूज करते हैं। ऐसी मसाला टी भी होती है जिसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करते हैं, जो हमारे भारतीय मसाले होते हैं ना, जैसे दालचीनी है, इलायची है, अदरक है, ये सब मसाला टी में यूज होती है, मतलब ये एक फ्लेवर के लिए यूज होती है और आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह का यूज करना चाहते हैं।
1: जी नेहा जी, अब स्वास्थ्य की बात करें तो क्या सही मात्रा में चाय पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं?
0: देखिए चाय सही मात्रा में, चाय ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सीवियर एसिडिक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या होती है, या आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको चाय अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। जो नॉर्मल पर्सन है जिसको किसी भी तरह की समस्या नहीं है तो एक दो कप चाय तो नॉर्मल है, क्वांटिटी आप मत बढ़ाइए कि मात्रा आप चाय बहुत ग्लास भर के चाय पी रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार चाय पी रहे हैं वो प्रॉब्लम करेगा, या एक दो बार पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और टाइमिंग, जैसे कई लोग होते हैं कि रात को सोने से पहले चाय पी रहे हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी नींद खराब होगी। नॉर्मल आप सुबह उठने के समय पीते हैं या फिर शाम के समय, दोपहर के समय थोड़ा पीते, 4-5 बजे तो ले सकते हैं।
1: जी नेहा जी, गर्मियों के मौसम में चाय पीने को लेकर लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए गर्मी में टेम्परेचर, क्योंकि जैसे अभी मई जून का टाइम है तो टेम्परेचर बहुत हाई है, 40 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो चाय ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ले सकते, क्वांटिटी कम कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, मतलब एकदम जैसे 12 से 4 के बीच का जब टेम्परेचर एकदम पीक में होता है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, तब वहां आप एकदम चाय लेते हो तो वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो वहां पे थोड़ा अवॉइड कीजिए। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा बहुत ले रहे हैं या शाम के समय 4-5 बजे ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं।
1: जी नेहा जी, आखिरी सवाल है कि क्या चाय तनाव कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है?
0: हाँ, चाय तनाव कम करने और मूड को बेहतर बनाने के, क्योंकि एक फील गुड फैक्टर होता है ना, वो चाय में होता है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और एक कप चाय आप लेते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, कभी कभी आपका शुगर लेवल डाउन भी होता है, आपको चिड़चिड़ापन आता रहता है, आप बहुत थकान महसूस करते हैं, तो उस टाइम पे चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक्स या बिस्किट लेते तो वो आपको रिफ्रेशमेंट देगा, क्योंकि चाय कॉफी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिफ्रेशमेंट देती है, जो थकान होती है उसको कम करते हैं, तो इसलिए ये अच्छा होता है। इवन बच्चे भी जब बहुत ज्यादा पढ़ाई कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो उस टाइम पे उनको एक कप चाय मिलती है तो फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं और वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए चाय अच्छा होता है लेना, और चाय को सभी इंजॉय करें, और चाय का जो फ्लेवर है हर तरह की चाय, चाहे वो आप अदरक की चाय पीना चाहते हैं, इलायची की चाय पीना चाहते हैं, ईरानी चाय या घर की चाय, चाय सेलिब्रेशन कीजिए।

0: उसको थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लीजिए, एडिक्शन मत बनाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
1: जी जी बिल्कुल, आपका ये संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: गूगल सर्च व फर्जी कस्टमर केयर नंबर से धोखाधड़ी। आजकल जब हमें किसी बैंक, ई कॉमर्स साइट या कुरियर कंपनी की मदद चाहिए होती है तो हम सीधे गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, लेकिन सावधान रहें, साइबर क्रिमिनल गूगल मैप्स और फर्जी वेबसाइट पर फर्जी नंबर डाल देते हैं जो सर्च रिजल्ट पर सबसे ऊपर दिखाई देता है। जैसे ही आप इन नंबरों पर कॉल करते हैं, स्कैमर्स आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस लेने का प्रयास करते हैं, आपकी निजी बैंकिंग संबंधी जानकारी चोरी कर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमेशा कस्टमर केयर का नंबर कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से लें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
2: दोस्तों, हम रोज मोबाइल चलाते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, ऐप इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये डिजिटल सुविधाएं हर व्यक्ति तक कितनी आसान है, मतलब इसकी पहुंच हर व्यक्ति तक कितनी है? आज वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस यानी कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए जिन्हें दिव्यांगजन भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, सुनने में परेशानी है या हाथों से मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है तो उसके लिए डिजिटल दुनिया कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में तकनीक की सुगम पहुंच बहुत जरूरी हो जाती है। आज दुनिया भर में ऐसे ऐप्स, वेबसाइट्स और तकनीक विकसित की जा रही हैं जो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी हों, क्योंकि असली प्रगति तो वही है जिसमें कोई पीछे ना छूटे। तो आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे डिजिटल समावेश, जागरूकता और उन प्रयासों की जो तकनीक को हर व्यक्ति के लिए आसान और सुलभ बना रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही संस्था आकांक्षा फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर साधना नायक जी। साधना जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
3: नमस्कार
2: मैडम। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस क्या है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है?
3: देखिए, वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस, जिसको ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, यह हर साल मई महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि दुनिया की हर सुविधा, जैसे बिल्डिंग, रोड, टॉयलेट, एजुकेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल सेवाएं, सभी लोगों के लिए आसान और उपयोग करने योग्य होनी चाहिए, खासकर दिव्यांगजनों के लिए।
2: जी मैम, एक्सेसिबिलिटी या सुगम पहुंच का सरल भाषा में क्या मतलब है?
3: बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। ऐसी सुविधाएं, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसे हर व्यक्ति आसानी से उपयोग कर सके, जैसे व्हील चेयर।

0: चेयर का उपयोग करने के लिए व्यक्ति आसानी से बिल्डिंग में जा सकता है। दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए मोबाइल वेबसाइट सुनकर चला सकता है। श्रवण बाधित व्यक्ति कैप्शन देखकर वीडियो समझ सकता है। यानी बिल्डिंग, रोड, टॉयलेट, एजुकेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सार्वजनिक सेवाएं सभी के लिए उपयोगी हो, यह इसका सरल भाषा में मतलब होता है।
1: जी मैडम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिव्यांग जन के लिए आसान बनाना क्यों जरूरी है?
0: दिव्यांग जनों के लिए इसलिए जरूरी है कि आजकल जो शिक्षा है, बैंकिंग है, नौकरी है, टिकट बुकिंग, सरकारी सेवाएं और सभी कुछ ऑनलाइन हो गई है। अगर वेबसाइट और मोबाइल ऐप आसान नहीं होंगे तो दिव्यांग जन इन सुविधाओं का उपयोग कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक्सेसिबिलिटी से है, सभी को समान अवसर मिलता है, लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटता है।
1: जी बिल्कुल मैडम, आज मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं?
0: आज कई ऐसे फीचर्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं, जैसे स्क्रीन रीडर, जिससे कि जो टेक्स्ट अपन करते हैं उसको आवाज में पढ़ता है। वॉइस कमांड, अपन जो भी कमांड देते हैं वो वॉइस में होता है। टेक्स्ट जूम, उससे अपन साइज बड़ी करके देख सकते हैं। हाई कंट्रास्ट मॉडल, स्पीच टू टेक्स्ट, इमेज, इतनी सभी मदद से दिव्यांगजन मोबाइल और वेबसाइट को आसानी से उपयोग कर सकते हैं।
1: जी मैम, भारत में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को लेकर जागरूकता और सुविधाओं की स्थिति को आप कैसे देखती हैं?
0: भारत में एक्सेसिबिलिटी को लेकर जागरूकता पहले से बढ़ी है। पहले लोग इतने इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन अब इसमें काफी जागरूकता आ गई है। कई सरकारी वेबसाइट और ऐप अब एक्सेसिबल बनाए जा रहे हैं। जैसे सभी वेबसाइट को पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता है, कई स्कूल और ऑफिस में सुविधाओं की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो जागरूकता की बहुत अधिक कमी है। अभी हमें इस दिशा में और बहुत काम करने की जरूरत है जो दिव्यांग जनों को एक्सेसिबल बना सके।
1: जी मैम, एक सवाल ये भी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और नई तकनीकें दिव्यांग जनों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रही हैं?
0: जी, नई तकनीकियां दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रही हैं। जैसे मोबाइल बोलकर जानकारी देता है, आज की आवाज टेक्स्ट में बदल देता है, नेविगेशन ऐप रास्ता बदला देता है, AI तस्वीरें और वस्तुओं को पहचान कर बताता है कि ये क्या है। इन तकनीकियों से शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन में कई नई संभावनाएं बढ़ रही हैं।
1: जी मैम, आखिरी सवाल ये है कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए जरूरी है, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जरूर, बहुत सही आपने प्रश्न किया है। एक्सेसिबिलिटी का फायदा हर व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे रैंप बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी उपयोगी है और दिव्यांगजनों के लिए भी उपयोगी है।
1: जी,
0: शोर वाली मशीनों की जगह पर सभी को मदद करते हैं। वॉइस कमांड हर व्यक्ति के लिए आसान है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी केवल दिव्यांगजनों की जरूरत नहीं बल्कि सबके लिए सुविधाएं हैं।
1: जी धन्यवाद मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: दोस्तों, आतंकवाद सिर्फ देश की सुरक्षा पर हमला नहीं होता, बल्कि यह इंसानियत, शांति और समाज की एकता पर भी चोट करता है। हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश देने की प्रेरणा देता है। इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आतंकवादी हमले में हत्या हुई थी, जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के समय में आतंकवाद सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, अफवाहों और कट्टर सोच के जरिए भी समाज को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जागरूकता, शिक्षा और युवाओं की सकारात्मक सोच बेहद जरूरी हो जाती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता, समाज की भूमिका और युवाओं की जिम्मेदारी के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी जी।
1: रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: जय हिंद अंकुर जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके रेडियो चैनल पर हूँ।
1: जय हिंद सर। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?
2: इस दिन का मतलब ये है कि इसी दिन यानी 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, जब वे चुनावी रैली में थे और एक आतंकवादी संगठन ने उसकी पूरी जिम्मेवारी दी थी। और उसके बाद से फिर ये दिवस हर साल मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए या नागरिक के लिए कितना खतरनाक और खौफनाक है, और हर नागरिक को मिलके इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस दिन का ये विशेष महत्व है
1: जी। सर, आतंकवाद का समाज और देश की मानसिकता पर किस तरह से असर पड़ता है?
2: देखिए, आतंकवाद का देश की मानसिकता पे और समाज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे देश के नागरिकों

0: की मौत होती है, हमारे करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होती है, लेकिन मानसिक हालत पे जो फर्क पड़ता है ये सबसे गहरा होता है, क्योंकि इंसान हमेशा डर और खौफ में ही रहता है। मैं अपने बचपन का मैं बताना चाहूंगा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में और मैं अपने नाना नानी के पास जाता था जो तब पंजाब में थे, मोहाली में, और तब पंजाब में आतंकवाद बहुत ज्यादा था। हम शाम को अपने नाना नानी के घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, जैसे ही अंधेरा होता था एक डर सा जहन में आ जाता था। अगर दिन के वक्त भी हम कहीं दुकान में जाते थे हमें डर लगता था कि कहीं से गोली ना चढ़ जाए, कहीं से आतंकवादी आके अंधाधुंध फायरिंग ना करें। अगर हम बस में सवारी करते थे पंजाब में, डर लगता था कि कहीं कोई बस को अचानक रोक के आतंकवादी वहां पे गोलियां चलाएंगे। तो मानसिक हालत पे बहुत फर्क पड़ता है आतंकवाद का। और जैसे मैंने बताया, हमारे नागरिक, हमारे सैनिक, हमारे संपत्ति की जो बर्बादी होती है वो तो है ही है, लेकिन मानसिक हालत पे समाज पे बहुत फर्क पड़ता है। और जब मैं अपने बचपन को देखता हूँ और अब मैं जब पंजाब जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहां अब आतंकवाद नहीं है, तो कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जब मैं जाता था मेरे जहन के अंदर इतना डर और खौफ होता था, ये मैं अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब मैंने अपने आंखों से आतंकवाद देखा है जब मैं बच्चा
1: जी था। सर, आज के दौर में, यानी कि आज जो डिजिटल दौर है, आज के दौर में आतंकवाद के तरीके किस तरह से बदल रहे हैं?
0: आज के दौर में आतंकवादी सिर्फ आतंक गोलियों से ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का या डिजिटल मीडिया का बहुत दुरुपयोग करके अपने आतंकवादी मंसूबों को वो सफल होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आज हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज हो गई है। अगर आप किसी एक चीज को आप देखें YouTube पे या Twitter पे या किसी चीज पे, वही चीज AI के माध्यम से ऐसी चीजें बार बार आपके सामने आती हैं और इंसान को लगता है कि शायद ये जो सब दिखाया जा रहा है वो सब सही है, लेकिन हकीकत में वो सब गलत होता है। लेकिन क्योंकि आतंकवादी जानते हैं इस AI का पूरा दुरुपयोग करना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, फेक न्यूज का दुरुपयोग करना, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर वो वायरल हो गई तो दुनिया को लगता है कि ये सच्ची बात है जो कि हकीकत में नहीं होती है। तो आतंकवादी हमेशा कोशिश करते हैं नए नए तरीके इस्तेमाल करने के, ताकि उनके जो नापाक मंसूबे हैं वो कभी ना कभी सफल हो जाएं। गोली चलाना, जान लेना वो तो है ही है, लेकिन आजकल के जमाने में हर इंसान को, हर भारत के नागरिक को जागरूक होना चाहिए कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने में ये आतंकवादी संगठन करें, जिसका हमें पता नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है बहुत देरी हो चुकी होती है।
1: सर, क्या सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी काफी है या आम नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है अगर आतंकवाद के संदर्भ में बात करें?
0: देखिए, पूरे देश को इकट्ठे मिलके इस आतंकवाद जैसे बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ सुरक्षा बल की अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक ने अपने अपने कैपेसिटी कैपेबिलिटी में अपना योगदान देना है। मैं बताना चाहूंगा, जब मैं 1980 के दशक में दिल्ली में पढ़ता था, तब दिल्ली में बहुत ट्रांजिस्टर बॉम्ब ये आतंकवादी इस्तेमाल करते थे, चाहे बस के अंदर या किसी बेंच के नीचे या पब्लिक प्लेस में। तो तब एक मुहिम चलाई थी दिल्ली पुलिस ने कि आपको कोई भी संगीत चीज दिखे फौरन आप रिपोर्ट करिए। और फिर जैसे नागरिक आगे आए, उन्होंने ये ऐसी चीजों का रिपोर्ट करना शुरू किया, तो काफी ऐसे वारदातें बताई गई जहाँ पे बम फटने से पहले ही पूरा ये चीज को रिपोर्ट किया गया। तो अल्टीमेटली किसी भी देश में अगर आतंकवाद को हमने हराना है तो होल ऑफ नेशन अप्रोच की जरूरत होती है, यानी पूरे देश को इकट्ठे मिलके एकजुट होके आतंकवाद लड़ना पड़ता है, सिर्फ सुरक्षा बलों की जिम्मेवारी नहीं होती।
1: जी जी बिल्कुल सर। सर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
0: धन्यवाद अंकुर जी, आपने मेरे को मौका दिया। जय हिंद।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: तो साथियों, हर दिन की तरह आज भी हमने सीखा कि सोच अगर सकारात्मक हो तो हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। आपका शहर सिर्फ सड़कों और बाजारों से नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी संस्कृति और आपकी जिम्मेदारी से बनता है। तो कल फिर मिलेंगे नई बातों, नए विचारों और उसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी अंकुर शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। समाचारों के लिए अब रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का।
1: एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत

0: Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी

0: और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and

0: develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing

0: बच्चों जय हिंद।
1: मुड़जम्मो नान्हे संगवारी मल्ला चंचल दीदी के जय जोहार। संगी हो, अभी आप मन के गर्मी छुट्टी लग गए है, तब कोनो कोनो संगवारी मन अपन ममा घर गए हो ही, तब कोनो संगी मन अपन अगला कक्षा के तैयारी में लग गए हो ही। आप मन जहाँ भी रहाओ प्यार से रहाओ, काबर हमार धरती में सबो जीव जंतु मनखे पेड़ पौधा प्रकृति के अंग आए, सबोला जिए के अधिकार हवे। कोनोला जान से मारना तो हिंसा आएच, फिर कोनोला दुख देना कोनोला गाली देना डराना धमकाना भी हिंसा कहलाते। तो संगी हो, आज बेरा के बात माँ चर्चा करबो, हिंसा कभी भी अच्छा नहीं होवे। संगवारी हो, कोई मनखे जीव जंतु ला शारीरिक मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुँचाना ला भी हिंसा कहे जाते। ऐसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कई समाज शास्त्रीय के चिंतन के आधार पर हिंसा मुख्य रूप ले कई प्रकार के माने जाते, जैसे शारीरिक हिंसा, मानसिक या भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, सांस्कृतिक या धार्मिक हिंसा और डिजिटल या ऑनलाइन हिंसा। महावीर स्वामी भी कहते, अहिंसा परम धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़े धर्म हरे। संगी हो, छोटे छोटे जीव ला कभू नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे हमला दर्द होते ना, उसने दूसर जीव ला घलो दर्द होते। भगवान बुद्ध के भी विचार है, घृणा करेले घृणा खत्म।

नहीं हुए, प्रेम से घृणा खत्म होते। संगी हो, हम जिहा भी रहन, चाहे स्कूल माँ, घर माँ, समाज माँ, हम मीठा बोली बोलन औ प्यार औ सुनता से रहन। मीठा बोली मनखे के दिल ला जीत लेते, तभी तो कही थे

चाहिए। तो संगी हो, हमला जीव जंतु से मया प्रेम से रहना चाहिए। ये जो चराचर प्रकृति है, उनमें जो जीव है, चाहे पेड़ पौधा हो, चांटी हो, मछली हो, चाहे मेचका हो, उनमें हम मनुष्यला सबसे श्रेष्ठ जीव कहे जाते। तब हमर मन करा विचार करे के क्षमता है। पशु पक्षी मनला केवल भोजन चाहिए और कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, मगर हम तो सोचे के क्षमता रखतन। एदे खराब है, एदे अच्छा है, सबला जानथन। देखना, हमर घर मा नान नान नान नान गोड़ेला चिरई मन चिव चिव चिव चिव करत रहा। संगी हो, आजकल हमला गोड़ेला चिरई घलो देखे बन नहीं मिले। काव काव करैया कौवा, ये सब हमर परिवार के सदस्य है, ये मन अब कहाँ देखते। संगवारी हो, जाने अनजाने भी ऐसन छोटे छोटे जीवला मत मारो। ये नहीं रही तो ये प्रकृति असंतुलित हो जाही। इही चिरई चिरगुन हमर हानिकारक कीट पतंगाला खा के हमर किसान मन के सहायता करते। तो आवो इही संग मा सुनन ये सुघर गीतला।

0: संगी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो गीत जिला स्वर देरहीन माया वैद्य और साथी मन संगवारी हो। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे स्कूल माँ कुछ कार्यक्रम होते तब कौन कौन भाग लेते हो? मतलब हमार जम्मो संगी मन कार्यक्रम माँ भाग लेते। तुम्हारे बीच माँ एकाद जन ऐसे लेकर रहे थे जिन हम बड़े बड़े कार्यक्रम के मंचला संचालन करते। तो आज मैं हाँ तुम्हारा एक ऐसे नोनी की कहानी सुनात हो जेकर शीर्षक हावे मंच संचालक रीना। अब ये कहानी ला कौन लेके आए? भोला राम सिन्हा हाँ। तो आवो सुनन ये कहानी ला।
1: आकाशवाणी रायपुर के जम्मू संगवारी मल्ला भोला राम सिन्हा के जय जोहार। संगवारी हो, मैं आज बालवाड़ी का कार्यक्रम में कहनी लेके आए हूँ जेकर शीर्षक हावे मन संचालक रीना। सेवती के एक जन बेटी रहे रीना, रीना सांवली फिर बड़ गुणवंती रहे। वह आठवीं कक्षा में पढ़त रहे, व्यवहारशील लड़की आए, नतक गोतला बढ़िया जानाए और मानाए। ओकर माँ सिखाए जो रहीस, कौनला चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, भैया भौजी कहना है सबो ल जाना। गाँव के कोनो भी मन के घर में आ जतीस तब बैठे भर कुर्सी देतीस, और चाचा माने के नतरती त चाचा कतीस, भैया माने के नतरतीस त भैया कतीस, चाय पानी तको पिला डारतीस। रीना बेरा में स्कूल पहुँच जाए, रीना चित्रकारी में तको होशियार रहे। रीना के बनाए चित्र ला स्कूल के लड़का और गुरुजी मन बड़ पसंद करे। रीना कोनो भी चित्र बनातीस त ओमे बढ़िया संदेश देवत नारा तको लिखतीस। पानी बचाव वाला चित्र मा पानी हमर जिंदगानी, शौचालय के महत्व वाला चित्र मा बेटी के बिहाव उहाँ घर में शौचालय हो जिहाँ, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ऊपर धान के झालर, ईंट छाप, बिच्छी छाप जेमे चिड़ई चुरगुन मन धान ला खावत हावे परोपकारी बनो, ये चित्र मा परोपकार के संदेश देवत हावे। गाँव में आज तको मई लोगन मन चिड़ई चुरगुन के खाए बर IR 64 गुड़मतिया महामाया सरोना धान के सुघर झालर बनाथे। भारत माता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ महतारी के तको बढ़िया चित्र बनाए रहीस। ये सब वो चित्र मल्ला गुरुजी हा आठवीं कक्षा में लगवाए रहीस। रीना रोज जल्दी उठे फिर आज थोड़कुन लेट हो गए रहे। रीना रीना उठ न बेटी, 6 बजत हावे और तेह अभी तक ले सुते हावस। रीना के माँ सेवती कहिस, हाओ न माँ उठू न वो एक कनऊ सुतंदे कही।

के चादर ला ओढ़ के यू सुते लागिस। बेटी आज शनिवार आए, हर शनिवार के तुम्हार स्कूल सवेरे 7:30 बजे लगते, नहीं जानस का बेटी? एक कन खिसियावत कहिस। रीना सुबह स्कूल के गोठ ला सुन के उठ जाते, अपन माँ ल कथे, हाँ माँ हर शनिवार के सुबह स्कूल लगते और बाल सभा होते, चल जल्दी नहा ले, मैं तोर बर चीला रोटी बनात हूँ और पताल के चटनी पीसत हूँ। हाँ माँ कहिस और नहा धो के चीला रोटी खा के स्कूल चल दिस। रीना स्कूल में मन लगा के अध्ययन करे। रीना जब स्कूल ले घर आते तो अपन माँ ल कथे, माँ माँ अवैया शनिवार के बाल सभा बर मोला गुरुजी ह बड़का जिम्मेदारी दे हावय। का जिम्मेदारी बेटी? मन संचालन करे के माँ। अभी नवा नवा प्रधान पाठक बिहारी गुरुजी आ हे, ते हा लड़की मन ला बड़ प्रोत्साहित करत हावय। ये तो बने बात आए बेटी माँ, लेकिन मैं आज तक मन संचालन नहीं करे हाँ वो तो काय हुईस बेटी? अभी तोर कना बेरा हावय, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करे ले कोई भी काम होय सफल हो जाते, मन के हारे हार मन के जीते जीत। हाँ माँ मैं अभी ले अभ्यास करे के चालू कर देत हूँ। हाँ बेटी बने कहा थस। रीना कथे, माँ ते मोर मदद करवे। हाँ बेटी। रीना रोज अभ्यास करे लागिस, संगे संग कविता कहानी पुस्तक अध्ययन कर कापी में नोट करे लागिस और अपन माँ के मदद ले लागिस। बार बार अभ्यास करे ले रीना मन संचालन करेला सीख गे। कौन काय काय बोलही तेकर नाम वाला लिस्ट रात कुन बना डारिस। शनिवार के दिन मुंधरा ले उठ गे, नहा धो डारिस, भगवान के पूजा पाठ कर डारिस, अपन माँ ला प्रणाम करिस। ओकर माँ रीना ला बढ़िया मन संचालन करबे बेटी की ही के आशीर्वाद दिस। रीना अपन संगवारी मीना चमेली संग स्कूल चल दिस। स्कूल माँ कुछ लड़का मन रीना ला बढ़िया मन संचालन करबे की ही के हिम्मत दिस। ता मोहन रीना के खिल्ली उड़ात कहिस, ते हम मोर असन मन संचालन कर डालबे? खिखी खिखी हाँसत रेंग दिस। मोहल्ला घमंड हो गई रहीस कि मोर असन कोई मन संचालन नहीं कर सकाय। घमंड नहीं करना चाहिए। स्कूल के प्रधान पाठक बिहारी गुरुजी सबो लड़का ला मऊहा पेड़ कना मेट टाट पट्टी बिछा के बैठे ला कहिस। रीना के संगवारी मीना चमेली दामनी मंच में गुरुजी मन के बैठे बर कुर्सी लगा डारिस। प्रधान पाठक संग रामलाल श्यामलाल गुरुजी मंच में बैठ गए। लड़का मन तको शांतिपूर्वक बैठ गए रहीस। बिहारी गुरुजी रीना ला मन संचालन करे बर कहिस। रीना माइक ल धरिस और बोले के चालू करिस। सबले पहली गुरुजी मन ला मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि बनेस और माँ शारदे के पूजा पाठ करवाइस। तेकर बाद गुरुजी मन के माला और गुलाल ले स्वागत करवाइस। रीना बोले लागिस, नए विचार हो नए कदम हो नित हो नई साधना, नए विचार हो नए कदम हो नित हो नई साधना। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बाल सभा में भाग लेने के लिए हार्दिक शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। लड़का मन जोरदार ताली बजेस। ताली की आवाज़ सुन के रीना के हिम्मत बाढ़े लागिस। भारत हमारा प्राणों से प्यारा है दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम का नारा है दोस्तों। लड़का मन फिर ताली बजेस। अब देशभक्ति कविता सुनाए बर कक्षा 7वीं के चमेली ला बलेस। चमेली अपन कविता के शीर्षक बताइस सीखें और कविता सुनाए लागिस। भारत के वीरों से देश के लिए संघर्ष करना सीखें, अपनी पावन धरती के लिए बलिदान करना सीखें। देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक वीर शहीद हुए, ऐसे वीर शहीदों का सम्मान करना सीखें। अपने लिए जिए तो क्या जिए यारों, दीन दुखियों का सहारा बनना सीखें। हम भारत के और भारत हमारा बाती की तरह जलकर प्रकाश करना सीखें। लड़का मन चमेली के कविता सुन के ताली बजाए लागिस। रीना अब आदित्यला जनौला सुनाए बर बलेस। तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछरी, आदित्य कथे बताओ काय हरे? लड़का मन सोचे लागिस। मीना बताइस जीव ताय जीव। सबो लड़का मन ताली बजेस। रीना नानकुन दान के महिमा के कहानी सुनेस और रोहन ला कहानी कहे बर बलेस। रोहन अपन कहानी के शीर्षक गिन्नी और निंदिया रानी बताइस और कहानी सुनाए लागिस। गिन्नी पढ़े बर बैठे तब पलंग में सुते सुते अध्ययन करे, एक कन पढ़े तहाँ नींद आ जाए और सूत जाए। गिन्नी अपन कक्षा में फर्स्ट नंबर ले पास होना चाहत रहीस।

0: जल्दी सूझ जाए तेकर सेती गणित के कोर्स ह पूरा नहीं होत रहा। एक दिन गिन्नी सपना म निंदिया रानी ल कथे, निंदिया रानी तेह मोर खोली म जल्दी झन आए कर। निंदिया रानी कथे, मैं कहाँ जल्दी आत हूँ गिन्नी, तीही है तो मोला जल्दी बोला थस। गिन्नी समझ गए, अब गिन्नी सूते सूते नहीं बैठ के अध्ययन करे लागिस, मेहनत रंग लईस। गिन्नी अपन कक्षा में पहली नंबर ले पास होइस। रीना कहिस, बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाए रोहन। रीना अब गीत सुनाए बर मीना ल बोलाइस, मीना बढ़िया गीत सुनाइस। आखिरी माँ रीना प्रधान पाठक बिहारी गुरुजी ला दू शब्द बोले बर बोलाइस। बिहारी गुरुजी रीना के संगे संग कार्यक्रम में भाग लेवैया सबो लड़का मन के प्रशंसा करीस और चमेली ल पूछिस, तेह के ठन कविता अध्ययन कर रहे चमेली। चमेली बताइस, गुरुजी मैं मुस्कान पुस्तकालय ले विदुषी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी, कदम का पेड़, कोयल, खिलौने वाला, बांसुरी वाला, मुन्ना का प्यार, सभा का खेल, कुल मिला के 13 कविता अध्ययन कर रहे हूँ गुरुजी। और तेह के ठन कहानी अध्ययन कर रहे रोहन, मैं छेरछेरा, ठिनठिनी, दादी की झाड़ू, डंगरू चुरू, रुंझुन मेमना, हुआ हुआ कहानी ला अध्ययन कर रहे हूँ गुरुजी। बहुतेज बढ़िया, जैन विद्यार्थी जतका ज़्यादा कविता कहानी पुस्तक अध्ययन करी वो उतकी बढ़िया कविता कहानी लिखी। अवैया बाल सभा में ज़्यादा ले ज़्यादा लड़का मन भाग लुह कहात, गुरुजी अपन गोठ ला विराम दिस, एति मोहन ला अपन गलती के एहसास हो गई रहीस कि काकरो खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। आकाशवाणी रायपुर के जम्मू संगवारी मल्ला भोला राम सिन्हा के जय जोहार।
1: संगी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो कहानी मंच संचालक रीना, जिला सुनावत रहीन भोला राम सिन्हा हा। तो संगी हो, हमला बढ़िया काम करना चाहिए ताकि हमरो जीवन के कहानी बने। नान्हे संगवारी हो, रोज सुनेल मिलते कि पर्यावरण बिगड़त है, पर्यावरण बिगड़त है, ता एला बचाए बर का करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। ता आज हम सब संकल्प करन कि हर लड़का ला कम से कम एक एक ठो पेड़ लगाना है, चाहे आमा के पेड़ हो, चिरई जाम के पेड़ हो, बड़ पीपर, कहीं भी पेड़ हो, हमला प्यार से लगाना है। और केवल पेड़ भल्ला लगाना नहीं है, ओकर देख रेख भी करना है। जैसे तुमन अपन हाथ गोड़ के जतन कर थो, उसने पेड़ पौधा के घलो जतन करो, देखो थोड़ा दिन मा वो तुहार अतका बड़ हो जाही, फिर पौर साल और बड़े हो जाही, तब कतका आनंदा ही। तबाव सुनन इही संगमा ये सुघर गीतला।

संगी हो, अभी आप मन सुनत रहो गीत जिला स्वर दे रहीन पंचराम मिर्झा और कुलवंत तिनबाई हा। संगवारी हो, तुहर मन के जब चिट्ठी आते ना तो मन एकदम गदगद हो जाते। कतको झन संगवारी मन हा चिट्ठी लिखते, तब कतको झन मन हा ईमेल भेजते। तब मैं तुमन ला एक ठन सलाह दूँ संगी हो, अपन हाथ से लिखो। ओकर से का हो ही, तुहर सुंदर सुंदर शब्द लिखे के आदत बनी। और लइका मन के जब टूटी फूटी भाषा में पत्र आते ना तो हमो मल्ला पढ़ के भला आनंद आते। तो संगी हो, आवाओ देखन मोर हाथ में अभी अब्बड़ अकल ने चिट्ठी पाती है। कई झन संगवारी मन ईमेल घलो भेजे हैं, तो आवाओ सुनन आज के ये चिट्ठी ला। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से पुष्पराज राजपूत, सूरज पूर्वी गौरव राजपूत। कर्मा चौक लोहारीडी कवर्धा छत्तीसगढ़ से सुशांत साहू, निशांत साहू। पोटिया कला दुर्ग से शशांक साहू, सीमा साहू, गोलू और छोटिया। डोंगर गांव से तन्मय गजभिये, बेबी अनिष्का गजभिये, कोयल खुशी और याशिका। गांव पड़सा टोला अंबागढ़ चौकी से खुमेंद्र मसिया, तुषारणी, कामेश अनिरुद्ध, साकेत पायल, गरिमा काजल, मेघा वर्षा, रुद्र कुमार मसियाहा। तो ये संगी मन के बारे में कहना चाहूँ, हमार ये अंबागढ़ चौकी के संगवारी मन हर कार्यक्रम में अपन चिट्ठी पाती ईमेल ला भेजते। तो काली हमन देखत रहें हर कार्यक्रम में आप मन के चिट्ठी ईमेल आए। तो आप मन हमार बालवाटिका आकाशवाणी के अतेक अच्छा श्रोता हरो, तेकर लिए आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। यही संगमा ग्राम कोयलारी कंवड़धा से मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र चंद्राकर, साहिल और भाव्य चंद्राकर। पलारी से पूजा वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, यशस्वी वर्मा। लोरमी ग्राम चचेड़ी से पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, नेहा चमन सुमित, रिंझा मरावी। ग्राम सिंगारपुर पैली मेटा से चिंताराम ध्रुवे, चंद्रध्वज, सानु ध्रुवे। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से नोमेश सिंह रावल, नेहा वान्या सिंह रावल। रानीगांव नगरी जिला धमतरी से शुभम सेजल साहू, राकेश रोहन साहू। धमधा ग्राम खुसरी कला से मनीष जंघेल, आयुष आदित्य, आरुषि आशिका, नैना अंजलि, नंदनी जंघेल। अड़ाड़ नांदघाट से राहुल गोपी, भूपेश दीपेश वर्मा। कनिया दमोह जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से देवानंद साहू, श्वेता साहू, योगिता साहू, केंजल साहू। गांव तेंदू भाठा मगरलोड जिला धमतरी से उमेंद्र कुमार निषाद, देविका नूतन, यशस्वी भास्कर, भूपेश दिव्यांश, शिवा निषाद। तो संगी हो, आप सब मन गजब अकन चिट्ठी पाती भेजे हो, पढ़ के बड़ा नीक लागेस। तो वाह, संगे संगमा आप मल्ला पढ़ाई लिखाई

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल वाटिका। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रगति के सोपान कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू से रमा शंकर की बातचीत।

0: श्रोताओ नमस्कार, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना काफी आवश्यक होता है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हम मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, कभी कभी मानसिक रोगों से भी घिर जाते हैं। तो श्रोताओं, मानसिक रोगों से बचने के लिए और इसके इलाज के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, और बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर मनोज साहू जी, जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक है चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में। तो मनोज साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: मनोज साहू जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है और यह कब शुरू किया गया, और साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है।
1: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम कुछ जो डेटा है उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ष 2000 तक पूरे भारतवर्ष में जो 110 करोड़ जनता के लिए केवल सिर्फ 4000 ही मनोचिकित्सक उपलब्ध थे, और वो भी सिर्फ शहरी इलाकों में। तो आप उसमें से 4000 में से खाली 3000 ही वो कार्य कर रहे थे, बाकी 1000 तो या तो विदेश चले गए थे या रिटायर हो गए थे। तो मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं या सुविधाएं देश के हर व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल आसान और सस्ता बने, मानसिक रोगों का रोकथाम तथा शीघ्र पहचान एवं उपचार सही तरीके से हो, और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनता में जागरूकता बढ़े ताकि मानसिक स्वास्थ्य के सामुदायिक भागीदारी भी बढ़े। इस उद्देश्य से 1982

0: में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, लेकिन इसका सही जो क्रियान्वयन वर्ष 2000 के आसपास उसका शुरुआत हुआ था।
1: जी, मानसिक रोगियों की जब हम बात करते हैं तो इनकी पहचान किस तरह की जाती है और जो मानसिक रोग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं?
0: देखिए, मानसिक रोगों की जो पहचान उनकी रोगी के लक्षणों से की जाती है, जो कि उसके व्यवहार, विचार, भावनाएं और व्यक्तित्व में परिवर्तन के आधार पर की जाती है। इसके लिए डॉक्टर या मनोचिकित्सक रोगी से बातचीत करते हैं, परिवार से जानकारी लेते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, उसके व्यवहार में हुए परिवर्तन की जानकारी जुटाते हैं और ज़रूरत पड़ने से किसी भी तरह जो कि कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसके आधार पर उसकी बीमारी का पहचान करते हैं।
1: जी।
0: जो मानसिक बीमारी है वो कई तरह के होते हैं, जो मुख्य रूप से जो मनोविकृति जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, सीवियर जो सबसे गंभीर मानसिक बीमारी होती है, उसके अलावा जो मन की बीमारी जो बोलते हैं मनोदशात्मक बीमारी, जैसे कि डिप्रेशन, अवसाद है, उन्माद या मैनिया है, ये दोनों गंभीर मानसिक बीमारी में आते हैं। इसके अलावा चिंता, एंग्जाइटी, विकार, ये सारे नशे की बीमारी और बाल और किशोर छोटे बच्चों में जो बीमारी होता है वो भी एक तरह की मानसिक बीमारियां होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ कहाँ उपलब्ध है?
0: जी, जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले 2003 में इस संबंध में भारत सरकार से इस राशि आवंटित की गई थी और 2005 में जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिला धमतरी से शुरू हुआ था। वर्तमान में हमारे प्रदेश के 28 जिलों में ये जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हो रहा है और ये जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सिर्फ जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं होता है, इसके अलावा इसमें जो चिकित्सा महाविद्यालयों में जो मनोचिकित्सक या जो इनके जो मैन पावर को बढ़ाने के लिए, नए क्रिएट करने के लिए, इसका भी विभाग का उन्नयन करना भी इनका एक हिस्सा है। इसके तहत जब 2003 में हमारे सारे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अलग से मनोचिकित्सा विभाग नहीं था, लेकिन आज की तारीख में सारे प्रदेश के जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय, सारे चिकित्सा महाविद्यालयों में ये मानसिक रोग का जो साइकियाट्रिक का कोर्स संचालित हो रहा है और 2-3 चिकित्सा महाविद्यालयों में इसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी शुरुआत हो चुका है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: लोगों को नए साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक का ये करना, वो भी जो उसका जो उद्देश्य है वो भी अब पूरा हो गया है।
1: जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब, एक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे हम निमहांस के नाम से जानते हैं, तो इनकी क्या भूमिका होती है राज्य स्तर पर?
0: जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें 3 विशेष पार्ट थे। एक तो ये है कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि निमहांस मैं एक स्टडी हुआ था उसके आधार पर, इसीलिए लोग उसको निमहांस मॉडल बोलते हैं। निमहांस में सबसे पहले जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का बेल्लारी मॉडल चालू किया गया था और उसमें इतना फायदा हुआ कि भारत सरकार ने उस मॉडल को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया और जो इसको हम जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं। उसके अलावा जो चिकित्सा महाविद्यालय में जो मानसिक चिकित्सा संबंधित पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है उसको भी बढ़ावा देना इस एक कार्यक्रम का हिस्सा था। और जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत प्रत्येक जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कि 10 बिस्तर का एक इनपेशेंट वार्ड होना चाहिए, मनोचिकित्सक होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, सोशल वर्कर होना चाहिए और समस्त प्रकार के जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध हो, ताकि वो जो मरीज को किसी दूर से जो मरीज हैं उनको लंबी दूरी तक यात्रा करना ना पड़े और सुविधा वहीं अपने ज़िले में ही मिल जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी हम देखें इस बदलते दौर में युवाओं में और जो आजकल एक देखा जा रहा है ट्रेंड, बच्चों में भी एक तनाव, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं तो उन्हें तनाव होता है, युवाओं में कई तरह की कैरियर को लेकर तनाव हो जाता है, तो इस बदलते दौर में जो है जो मुख्य कारण क्या है सबसे ज़्यादा जो तनाव का?
0: ये बदलते दौर में जो अब आजकल हम युवाओं में मानसिक रोग और तनाव का कुछ ज़्यादा ही बढ़ना देख रहे हैं, इसका कुछ मुख्य, वैसे सारे कारण तो हम कहना मुश्किल है, उसमें कुछ मुख्य कारण जो है जो प्रतिस्पर्धा और करियर का तनाव, मतलब आज के दौर में इतना प्रतिस्पर्धा हो गया कि करियर से संबंधित, घर से संबंधित जो प्रेशर होता है, जो तनाव होता है, उससे जब युवा अपने आप को फिट नहीं कर पाता है तो उसमें अवसाद या एंग्जाइटी

0: बढ़ सकता है
1: जी।
0: पारिवारिक दबाव रहता है आज के तारीख में, सारे माँ बाप, सारे जो पेरेंट्स है, सब चाहते हैं कि बच्चा अपना सारे इंजीनियरिंग, मेडिकल या IIT पढ़े। तो इसमें क्या होता है कि जो तो सबके बच्चों के ऊपर तनाव रहता है कि वो क्वालिफाई करे। अगर किसी भी तरह से, देखिए सभी को क्वालिफाई करना तो संभव नहीं है, है ना, तो ये एक पारिवारिक दबाव रहता है। उसके चलते वो गलत आदत में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, वो उसको और बढ़ावा देता है। जब आप उस तनाव की वजह से नशे में चले जाते हैं या गलत आदत में चले जाते हैं, झुकाव हो जाता है तो और बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का अति उपयोग, ये भी होता है। सोशल मीडिया में आप बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जिस या ऐसे देखते हैं जिसको देख के युवा अपने आप को उस तरह ढालने की कोशिश करता है जिससे उसको तनाव होता है। चौथा एक कारण है कि आज के जो नींद एक हमारे मनुष्य के लिए एक अति आवश्यक है, जो नींद को इन लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा नींद होना जरूरी है, अगर आप 7-8 घंटे सही सो रहे हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि आज के ज़माने में, आज की तारीख में जितने भी युवा हैं उनको सभी भौतिक सुविधाओं का तत्काल मिलना, किसी भी टाइप का, जैसे वो नौकरी में चला गया है, कुछ भी होगा तो उसको तत्काल उसको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इस जो भौतिक सुविधाओं का जो तत्काल जो उसका डिमांड रहता है उसको जब फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसके वजह से तनाव होता है और फिर मानसिक बीमारियों का लक्षण
1: शिकार हो जाते हैं। इनके कितने श्रेणियाँ देखते हैं आप?
0: देखिए जो सबसे पहले जो कोई मानसिक कोई परेशानी लेके आता है जो जिला स्तर पे हम देखते हैं तो हम उसको फर्स्ट कांटेक्ट बोलते हैं, मतलब सबसे पहले, या उससे पहले भी एक रहता है जो हेल्पलाइन रहता है जो निमैंस द्वारा टेली मानस चलाया जा रहा है, जिसमें कि पहले व्यक्ति फ़ोन करके अपना परेशानी बताता है, जिसमें कि काउंसलर रहता है, वो देखता है कि अगर वो सिंपल काउंसलिंग से ठीक हो जाता है तो उससे काउंसलिंग करके छोड़ देता है। अगर उससे उनको लगता है कि इसको और किसी प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य का हेल्प सर्विसेज का जरूरी है तो फिर वो जिला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ भेज देता है। वहाँ पे मनोचिकित्सक रहते हैं जो मरीज का परीक्षण करते हैं और जिस तरह की दवाइयों का, काउंसलिंग का, जिस तरह का वो उसको चिकित्सा सुविधा का आवश्यक है उसको देते हैं। अगर उनके द्वारा भी वो उसका उपचार सही तरीके से नहीं हो पाता फिर वो मेडिकल कॉलेज जो टर्शियरी केयर सेंटर है वहाँ उनको रेफर कर देते हैं। तो ये पूरा चैनल बना हुआ है कि मरीज कहाँ से कहाँ जाएगा, तो वहाँ आपको सारे पूरा चैनल बता दिया जाता है कि आप ऐसे ये होगा तो पहले यहाँ करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो आगे जाके कैसे करेंगे, सारे उसको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब अभी आपने बताया टेलीमानस, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि यहाँ कैसे फ़ोन किया जा सकता है।
0: ये टेलीमानस जो है, जैसे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक टेलीमानस, निमैंस वालों ने एक नया सुविधा चालू किया हुआ है, उसके अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर रहता है वो जिला अस्पताल में चलता है, वो उस हेल्पलाइन में किसी भी प्रकार के आपको परेशानी होगा तो वो टोल फ्री नंबर होता है, आप उसको कॉल करेंगे 24/7 उपलब्ध रहता है, उसमें काउंसलर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और उनका काम जो प्राथमिक असेसमेंट वो रहता है कि किसी भी तरह से जैसे बच्चा एग्जाम में दिया, फेल हो गया, उसको कुछ गलत विचार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं तो टेलीमानस हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकता है, वहाँ बताएंगे, जो भी काउंसलिंग है वो करेंगे और उनको लगता है कि इससे और ज़्यादा चिकित्सकीय परामर्श या सुविधाओं को जरूरी है तो वो उपचार की ज़रूरत है तो उन लोग खुद उसको बताएंगे कि आपके जो नियरेस्ट मेंटल हेल्थ सर्विस सेंटर है वहाँ जाके बताइए
1: जी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अभी युवाओं की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है नशे की लत, तो ये नशे की लत कितना जिम्मेदार है मानसिक रोगों के लिए?
0: ये देखिए ये तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी मानसिक बीमारी को या उसका शुरुआत करने में, उसको बढ़ावा देने में नशे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज रहता है। तो नशे की लत आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है और जो हम को जो स्टैटिस्टिक्स देखते थे उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में भी खास करके शराब का नशा बहुत ज़्यादा है और बाकी जो हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं उसका भी आजकल प्रचलन युवाओं में बहुत होने लग गया है। नशे के कारण 2-3 तरह के बीमारी हो, एक तो नशे के डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो नशे की वजह से बीमारी आता है वो होता है, नशा जब नहीं मिलता है किसी भी वजह से उसको, या आर्थिक कारण से या और किसी कारण से नहीं मिलता है, नहीं मिलने से भी मानसिक बीमारी चालू होता है। और तीसरा ये कि वो नशे की इन्फ्लुएंस में वो किसी भी तरह के किसी भी एंटी सोशल असामाजिक कार्य करते हैं जिसके, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या है
1: जी। जी डॉक्टर साहब कार्यक्रम में चले उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अपनी मानसिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं।
0: देखिए कुछ

0: चीज़ें जो कुछ मानसिक बीमारियां जो है अनुवांशिक या कुछ वैसे रिलेटेड होता है उसको तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉमन मानसिक बीमारियां हैं या मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रखेंगे उसके कुछ उपाय हैं जिसको हमको सबको करना आवश्यक है। सबसे पहला यह है तो कि आपकी नींद पर्याप्त होना चाहिए, 7 से 8 घंटा आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटा सोना आवश्यक है। एक फिजिकल एक्सरसाइज या जो भी एक नियमित व्यायाम करना चाहिए, किसी भी टाइप का आप करें, सुबह करें शाम को करें। आपका जो खान पान जो है संतुलित होना चाहिए ताकि आपके जो शरीर का जो शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपका सोच को थोड़ा सा सकारात्मक करना चाहिए। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप उसको नकारात्मक भी सोच सकते हैं और सकारात्मक, तो आप हर नकारात्मक जो कंडीशंस होता है उसमें आप सकारात्मक सोचने की कोशिश करेंगे। एक कहावत है कि जो भी हमारा स्ट्रेस होता है वो 10% हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है, हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं वो 90% जिम्मेदारी होता है। तो स्ट्रेस तो सबके लिए बराबर होता है, वही गर्मी से अगर मोम पिघल जाता है वही गर्मी से अंडा भी एक हार्ड हो जाता है। तो हमारा जो रिएक्शन होता है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, सकारात्मक सोच करना है, संबंध लोगों से बनाए रखना है, चाहे आपको जरूरत पड़े या ना पड़े। जब आपको लगता है कि आपके साथ इतने सारे लोग हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो आपको मानसिक जो भी टेंशन होगा, जो स्ट्रेस होगा, उससे उबरने के लिए आपको अच्छा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नशे से दूरी बनाएं।
1: जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनोज साहू जी से, जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक है चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में, और बात कर रहे थे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

प्रगति के सोपान कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू से रमाशंकर की बातचीत। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मेरे जीवन साथी, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे थे मजरू ने, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा है गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं सीमा कौशिक और साथी।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सीमा कौशिक के स्वर में लीजिए सुनते हैं ये पारंपरिक गीत।

0: सीमा कौशिक के गाए इसी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, सुबह के 9:55 होने को हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की निगरानी करेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमन डेका कल जनगणना 2026 प्रक्रिया में शामिल हुए। जनगणना 2026 की प्रक्रिया के तहत नगर निगम के अधिकारियों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से जनगणना के 33 बिंदुओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने निर्धारित प्रश्नों के आधार पर राज्यपाल से व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य सामान्य विवरण लिए। राज्यपाल ने जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर की जोन कमिश्नर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0, पीएम जनमन कार्यक्रम और पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा।

0: दो सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर में अब से कुछ देर बाद गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस शिविर का उद्घाटन कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं स्वरधारा कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं तराना फिल्म के इस गीत के साथ। स्वर है शैलेंद्र सिंह का, बोल लिखे हैं तिलक राज थापा ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा है गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मंदिर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे सुरों में ढाला है SD बर्मन ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर की। फिल्म का नाम है अभिमान।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए प्यारे का तो फराए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना कामचोर फिल्म का गीत। बोल लिखे थे इंदिवर ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में राजेंद्र कृष्ण का लिखा है गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है इंतकाम।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में। बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, दिन के 11 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और

0: सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ। स्वर है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के, बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनवाने के लिए ईमेल हमें भेजे हैं हथौत करही भदर से जीवनलाल देवांगन, भोलाराम डीलेश्वरी और योगेश्वरी देवांगन, इंदिरा विहार रायगढ़ से अमर अकरम नूरजहां, डब्ल्यू सईद, वसीम और वलीउल्ला, प्रमीलगंज रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांशु और ऋषि वर्मा, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रेशम कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, बिलाईगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, पहंदा कोरबा से सम्मेलाल कुर्रे और सावित्रीबाई कुर्रे, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू, महामायापारा दरचुआ से फिरंता साहू, दुलेरिन योगेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, बाजारपारा बेमित्रा से सनत कुमार यादव, राजू, दिलीप यादव, आदित्य यादव, कोरदालवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम, गुलशन, शिव कुमारी, हेमलता और बेद किरण वर्मा, हथनीपारा भाटापारा से दुलारीबाई और चोवाराम वर्मा, अशोकनगर गुड़ियारी से नंदकिशोर गुप्ता, विजय बिश्नोई, नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी, जतिन, जयंत, कुनिका, दीपशिखा देवांगन, ग्राम चांदो डोंगरगांव से छन्नूलाल साहू और मधु साहू, कुर्मीपाला बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, वृजकांत सारथी, सिवनी खुर्द रेंगाखार से मनशाराम पटेल, बुधियाबाई और पायल पटेल। तो आइए सुनते हैं इन सभी के अनुरोध पर आशिकी फिल्म का ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने का अनुरोध हमें भेजा है हाई स्कूल पारा फरसगांव बस्तर से हरीश कुमार साहू, पुनीत राम, पद्माबाई, आकांक्षा, पायल साहू, रेंगनी से रामेश्वर थापा, राम थापा, शारदा विहार अमलीडी रायपुर से भूपेश कुमार देवांगन, तुषार देवांगन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, श्वेता सुमिता ध्वनि गवहाणकर, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, गंज टुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम शमशुल, कमर राही, भाटापारा से बचकमल मोती यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन, त्रिभुवन अग्रवाल, गंगाराम देवांगन, गर्रापार बांधा बाजार से सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू और राकेश साहू, लालपुर रायपुर से कार्तिक साहू, लक्ष्मी साहू, डोंगरिया मलाजखंड से मुन्नालाल पटले, माधुरी पटले, दीपांशु और याचना पटले, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति, भाटापारा से रामगुलाम सेन, नूतन कुमार, बॉबी और पूजा सेन, खम्हार मुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी, मगरलोड से पुन्नूराम साहू, तेजेश्वरी, राजश्री और राजवीर साहू, कमल विहार रायपुर से रतन जैन, कोकिला, वैभव और चिराग जैन। ये सभी सुनना चाहते हैं कुमार सानू और संजीवनी के

शान और श्रेया घोषाल के स्वर में लीजिए सुनते हैं वांटेड फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं अरुण भैरव ने, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं। रोहांसी से डगेसर साहू, घनश्याम साहू, नूतन और मेनका साहू। कन्नेवाड़ा बालोद से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी गीतिका सोनवानी। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, अंजलि जंघेल। अनारकली बाजार जगरौन से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका पाठक, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा पाठक। सिरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई और राजेंद्र कुमार दामले। पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। सिर्री गातापारा से लावण्या साहू, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पा और प्रभुराम साहू। करही भदर बालोद से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा और लल्ली निर्मलकर। शिवचौक साकरा से मनोज निषाद, प्रतिभा पूर्वी, खुशांत और वीरभ निषाद। भाटापारा से राधेश्याम टेलर और लतेल प्रसाद साहू। शंकरनगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस, कावेरी, राहुल, विनीता और लेखमणि बैस। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। रुआबांधा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, सौरभ, श्रेया और शुभम जैन। रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला और पूजा अंबादे। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा। तो सुनते हैं इन सभी के अनुरोध पर ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा और सुनील जैन। नागलोई दिल्ली से मान सिंह, सुनीता, भैरवी, विशाल और यशवंत। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। कांडे मोहल्ला मानपुर से रूप सिंह साहू, शैलेन्द्री साहू। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। लोरमी चचेरी से मोहन सिंह मरावी, सविता, रिंझा, तनुराही मरावी। अडार नांदघाट से माखन चांदनी वर्मा। ऊसरवाही रेंगाखार से भूखन दास मानिकपुरी और रेखा मानिकपुरी। फूलझर घटारानी धाम से हर्षिता, पूर्वी, लक्ष्मी और मुस्कान साहू। बिनौरी फिगेश्वर से टीकाराम साहू और हेमलता साहू। भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी और प्रतिभा। जुनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू और तारा विद्या साहू। ये सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और हरिहरन के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे सुरों में ढाला है शिवहरी ने और फिल्म का नाम है डर।

विनोद राठौर और अलका याग्निक के स्वर में आइए अब सुनते हैं गौहर कानपुरी का लिखा गीत। संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है बाजीगर। इस गीत को सुनवाने का

अनुरोध हमें भेजा है शहीद नगर खमतराई रायपुर से हीरा साहू, संतोष ध्रुव और दिनेश साहू, कचारडी से ब्रिगदास मानिकपुरी, रीतिका और उर्मिला मानिकपुरी, बठेना पाटन से राजेश साहू, रेशमा और पूर्वी साहू, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल, राहुल कुमार, सविता, स्वाति और माखीजा परिवार के सभी सदस्य, रोहानसी पलारी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, यहीं से श्यामलाल साहू, युवराज, बिट्टू और वर्षा साहू, नागरकोहरा राजनांदगांव से प्रेम साहू, पूजा, दुष्यंत और प्रांजल साहू, पथरिया भरेवा से चन्नूलाल सिंगरौल, नारायणी और वान्या सिंगरौल, धरसई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम, जयवंती, उमंग और मोक्ष, गिरिडीह से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा, हसन नवाज और बाबू अहमद, कटंगी गंडई से प्रमोद पटेल, शिव कुमार, अंकित कुमार और खुशी पटेल, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, चंपा, करण और राहुल साहू, कोटनापानी डोंगरगढ़ से कैलाश कुमार, रुपेश कुमार और गरिमा सोनवानी, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से पुष्पलता यादव, छन्नू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अभिनव यादव और इकबाल कुरैशी। तो सुनते हैं इन सभी के अनुरोध पर बाजीगर फिल्म का ये गीत।

जाने होगा क्या। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का गीत अभिजीत और श्रेया घोषाल के स्वर में। वो लिखे हैं समीर ने और संगीत है निखिल विनय का। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, यशवर्धन और प्रकाश देवांगन, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, बंगला माटिया बालोद से आशुतोष अंगारे, लीना आंशुमाला अंगारे, बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा कांबड़े, राजापुर सरगुजा से मानसिंह राम प्रजापति, जानकी घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति, बागबहारा भद्रसी से पन्नालाल सेन, मुंगेली से उत्तरा परमेश्वरी, नितिन और योगिता दिवाकर, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल और मानस, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, हथखेरा भाटापारा से पंचू यादव और दादू यादव, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु और अंकित देवांगन, सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, पथरिया से मीनू मरावी, लता दर्शिता, रश्मि मरावी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विनोद साहू, हसदा से कमलेश्वर साहू, जितेंद्र साहू और पायल यादव, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार और अजीत कुमार।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। सहसपुर लोरमी से चुटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन, दुलीचंद, लालमणि, नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टीकेश्वर, रितु राजपूत, कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, चिल्पी मेघापारा से मोहराम पटेल, मानूराम, शोभा, पूनाराम विसाहू, राधेश्याम भगत पटेल और तुलाराम पटेल, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर, भाटापारा से पद्मिनी रावत, शैली यादव, गुनगुन यादव, अदिति यादव, खुशी और तनु यादव, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी, गीतिका, गुड्डी, अंजलि, गिन्नी और परी, हसदा से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश और अनुराग कश्यप, खैरागढ़ राजलालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशील, नेहा और येशु भीमटे, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी, नीरज, शुभम और सौरभ रावत। तो आइए सुनते हैं इन सभी के अनुरोध पर अनुराधा पौडवाल और मनहर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है हीरो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुनिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, दिन के 11:55 हुए हैं, अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश क्रय की शिकायतों की निगरानी करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। पालकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर

0: शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, में रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं, आप प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ

0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
1: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
1: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
1: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुवांशु पांडे जी ने लिखा है।
1: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
1: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी,
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी

0: की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ दादी माँ, का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।

0: उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं,
1: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों, क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: Patty. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल

0: मोर क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
9: अरे रुको रुको,

0: रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
3: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
3: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है,
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
0: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
3: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। इसमें आज सुनिए ध्रुवी गीत। कलाकार हैं बोटूराम और उनके साथी। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे हल्बी गीत। कलाकार होंगे राजेंद्र कश्यप और साथी। पहले सुनिए बोटूराम और साथियों के स्वर में ये हल्बी गीत।

बुटूराम और साथियों के स्वर में आप सुन रहे हैं ध्रुवी गीत। अभी आपने सुना विवाह गीत और आइए अब सुनवाएं गुरगाल गीत।

बुटूराम और साथियों के स्वर में अभी आपने सुने ध्रुवी गीत। आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में अब आपको सुनवा रहे हैं हल्बी गीत। कलाकार हैं राजेंद्र कश्यप और साथी। सुनिए राजेंद्र कश्यप और साथियों के स्वर में ये पारंपरिक हल्बी खेल गीत।

आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज आपने सुने बुटुराम और साथियों के गाए ध्रुवी गीत और राजेंद्र कश्यप और साथियों के गाए हल्बी गीत भी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 1 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी

0: 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना अतरंगी रे इस फिल्म का गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत यार रहमान का था।

0: Akashwadi at 90.
1: लीजिए अब सुनिए अंकुर अरोरा मर्डर केस। इस फिल्म का गीत देव नेगी और दीपाली साठे की आवाजों में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत चिरंतन भट्ट का है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान और असीस कौर की आवाजों में मनोज मंतशर का लिखा गीत। संगीत रोचक कोहली का है, फिल्म का नाम है अय्यारी।

सुनिधि चौहान और असीस कौर की आवाज़ों में अभी आपने सुना मनोज मुंतशिर का लिखा गीत। संगीत रोचक कोहली का था, फिल्म थी अय्यारी। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अरमान मलिक की आवाज़ में कुमार का लिखा गीत। संगीत अमाल मलिक का है, फिल्म का नाम है बदला।

अरमान मलिक की आवाज में फिल्म बदला का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था कुमार ने, संगीत था अमाल मलिक का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे शाम 4 बजे और रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज के बाद में सुनिएगा चर्चा, अपनी सीमाएं तय करें। साथ ही आप सुनेंगे श्रीमती रश्मि गुप्ता की वार्ता, संकल्प से सिद्धि तक नारी। और साथ ही होंगे क्रम कुछ टिप्स और गीत संगीत भी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन कोट का विषय होगा जिंदगी अनमोल है। क्रम संस्कृति के महक में आप सुनेंगे दानिश कुमार की वार्ता, छत्तीसगढ़ी के पारंपरिक गीत संगीत में लोक वाद्य यंत्र के प्रयोग, और होंगे माटी के गीत भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे गोरेलाल बर्मन और साथियों के गायक कुछ लोग की। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सीमा कौशिक और उनके साथी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज के बाद में चर्चा, बाजार के मांग अनुसार औषधीय पौधा की खेती। 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में डेयरी संयंत्र निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी देंगे डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक पशुधन उत्पाद विभाग पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग। हिंदी गजल का सफर।

ये रूपक आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। लेखक श्री गिरीश पंकज और प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र वैद्य। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग बसंत। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत होगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर भी। श्रोताओ, हम आपको एक बार फिर बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम मिलिया। इसमें आज की बात में सुनिएगा चर्चा अपनी सीमाएं तय करें। साथ ही आप सुनेंगे श्रीमती रश्मि गुप्ता की वार्ता संकल्प से सिद्धि तक नारी और होंगे कुछ टिप्स और गीत संगीत भी। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युवावाणी में अपन गोठ का विषय होगा जिंदगी अनमोल है। क्रम संस्कृति के महक में आप सुनेंगे दानिश कुमार की वार्ता छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत संगीत मां लोक वाद्य यंत्र के प्रयोग और होंगे माटी के गीत भी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा बाजार के मांग अनुसार औषधीय पौधा की खेती। 7:30 पर किसान वाणी में क्रमाज की सलाह में डेयरी संयंत्र निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी देंगे डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा। और रात 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक हिंदी गजल का सफर। लेखक श्री गिरीश पंकज और प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र वैद्य।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बहनों वो समय आ ही गया जिसका था हमको और आपको भी इंतजार। तो शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। स्वागत है सभी सखियों का आज की बिंदिया में। आप सभी को जुनेदा का स्नेह भरा नमस्कार। बहनों सुबह की व्यस्त दिनचर्या, घर गृहस्थी के काम, जिम्मेदारियां हर महिला की होती है, लेकिन इन कामों के बीच क्या कुछ पल आपने अपने लिए निकाले हैं, अपने लिए सोचा है, अपने शौक अपने सपनों को महत्व दिया है? अगर नहीं दिया है तो दीजिए ऐसा वक्त जो सिर्फ आपका हो, यानी आपकी रुचि का कोई भी काम जिसे आप बना सकती हैं कैरियर, निखार सकती हैं बहनों अपनी कला अपनी खूबियों को। बहनों अगर हम कोई भी काम ना मेहनत लगन दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ करते हैं ना तो सफलता जरूर मिलती है और सपने भी साकार होती हैं। बहनों जीवन में आगे बढ़ने लक्ष्य को पाने और एक खुशहाल स्वस्थ सुखी जीवन के लिए बहनों जीवन में सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। सीमाएं आपको जीवन में वह मार्ग बनाने में मदद करती हैं जिन पर आप चलना चाहती हैं। सीमाएं यह परिभाषित करने में मदद करती हैं कि आप किस चीज़ से सहज हैं और आप दूसरों से कैसा व्यवहार चाहती हैं। सीमाएं तय करना मानसिक शांति, भावनात्मक शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, समय की सीमा और स्वस्थ रिश्तों के लिए बहनों जरूरी है। वहीं बहनों हम नकारात्मक सोच, गलत संगत, बेवजह की बातों से दूरी बना लें। अपनी आय के अनुसार खर्च करें, सोशल मीडिया फोन का उपयोग सीमित करें। हर कार्य के लिए बहनों एक निश्चित समय सीमा तय करें ताकि हर काम समय पर पूरा हो। जब आप किसी काम के लिए सहज ना हो तो अपनी बात विनम्रता सीधे शालीन तरीके से बताएं, स्पष्ट दृढ़ता के साथ ना कहना सीखें। अपनी सीमाएं तय करना खुद को महत्व देने की पहली सीढ़ी है। वहीं दूसरों की सीमाओं का भी बहनों हम सम्मान करें। आत्मसम्मान के लिए, गरिमा की रक्षा के लिए सीमाएं तय करना जरूरी कदम है। तो बहनों जीवन में भरिए खूबसूरत रंग और हर नई सुबह का स्वागत मुस्कुराते हुए करें। संगीत के सुरों में होती

आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। हर अदा को बेहद खूबसूरती से बयां करता सुकून देता नगमा आपने सुना, जो हिंदी सिनेमा का सदाबहार गीत है। फिल्म घर के इस गीत के लिए गीतकार गुलजार की कलम, संगीतकार आर डी बर्मन की धुन और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की दिलकश सुरीली जादुई आवाज़ थी। बहनों, नारी की महत्वाकांक्षा और कुछ कर गुजरने का जज्बा ही है कि आज नारी घर बाहर के दायित्व जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। कैरियर को लेकर सजग है, हर क्षेत्र में अग्रणी है, उपलब्धियां हासिल की हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं। आत्मनिर्भर सशक्त बनने का की ओर अपने कदम

0: बढ़ रही है और एक खुशहाल भविष्य के संकल्प के साथ। तो संकल्प से सिद्धि तक नारी इस विषय पर सुनते हैं बहनों वार्ता। वार्ताकार हैं श्रीमती रश्मि गुप्ता।
1: बिंदिया कार्यक्रम सुन रही समस्त बहनों को रश्मि गुप्ता का नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा का विषय है संकल्प से सिद्धि तक आज की नारी। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व मैं संसार की समस्त नारी शक्तियों का नमन करते हुए उनके सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। नारी तू है शक्ति की प्रतीक, नारी तू है प्रेम की मूरत। नारी तू है शक्ति की प्रतीक, नारी तू है प्रेम की मूरत। तेरे बिना अधूरा है जीवन, तू है सृष्टि की रीति। तेरे बिना अधूरा है जीवन, तू है सृष्टि की रीति। यह पंक्तियाँ नारी के महत्व और शक्ति को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। नारी तू है शक्ति की प्रतीक का मतलब नारी सिर्फ कोमल नहीं है, वह शक्ति का रूप है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, यह सब नारी के ही रूप हैं। घर चलाना, बच्चे पालना, बाहर काम करना, मुश्किलों से लड़ना, यह सब उसकी शक्ति दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जब एक माँ रात भर जागकर बीमार बच्चों की सेवा करती है तो वह शक्ति ही तो है। नारी तू है प्रेम की मूरत, मतलब नारी प्रेम, ममता, करुणा की साक्षात मूर्ति है। माँ का प्यार, बहन का दुलार, पत्नी का समर्पण, बेटी का स्नेह, प्रेम के सारे रूप नारी में दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, एक नारी बिना बोले ही घर के हर सदस्य की जरूरत समझ लेती है, यह प्रेम की मूरत ही कर सकती है। तेरे बिना अधूरा है जीवन, मतलब नारी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह माँ, पत्नी, बेटी, बहन, हर रिश्ते में जीवन को पूरा करती है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि पिता घर चलाते हैं पर घर को घर माँ ही बनाती है। तू है सृष्टि की रीति से तात्पर्य है सृष्टि का नियम, परंपरा, चक्र नारी से ही चलता है। सृजन यानी जन्म देने का अधिकार प्रकृति ने नारी को ही दिया है। नारी ना हो तो सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ेगी। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि नारी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं, वह हर क्षेत्र में शक्ति और प्रेम का रूप है। आज के दौर में नारी द्वारा किए गए बहुमूल्य कार्य, जिसे कि नारी ने अपने संकल्प से सिद्ध किया है, वह इस प्रकार से है। आज की नारी परिवार के साथ साथ अपने कैरियर को भी भली भांति संभाल रही है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट बनकर देश चला रही है और साथ ही साथ घर परिवार की जिम्मेदारी भी बड़ी खूबसूरती से निभा रही है। आज की नारी ने देश की रक्षा में भी अपना अमूल्य योगदान देने में अपनी भूमिका निभाई है। वह भारतीय सेना, वायुसेना, नेवी, पुलिस, बीएसएफ में फ्रंट लाइन पर है। कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन में तैनाती पाई है तो वहीं अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट है। यह शक्ति का असली रूप है। आज की नारी ने अपनी संकल्प शक्ति से अंतरिक्ष विज्ञान में भी नाम कमाया है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स से लेकर रितु करिधाल श्रीवास्तव, जिन्हें रॉकेट वुमेन कहते हैं, चंद्रयान 3 की मिशन लीडर भी रही है। इस तरह से सृष्टि को आगे बढ़ाने में नारी ने विज्ञान के जरिए अपना योगदान दिया है। वहीं हम यह जब बात करें खेल जगत की, तो पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, निकहत जरीन, ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी बहनें इन समस्त नामों से चिरपरिचित होंगी। समाज सुधार और नेतृत्व क्षमता में भी हमारी महिलाएं कम नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से लेकर गांव की सरपंच तक अब बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज की नारी स्वयं सहायता समूह चलाकर लाखों महिलाओं को रोजगार दे रही है और उनके जीवन को सफलता की किरणों से प्रकाशित कर रही है। बीते वर्षों में जब सभी तरफ कोविड महामारी ने हाहाकार मचा रखा था,

0: ऐसे नाजुक दौर में आशा वर्कर, नर्स, महिला डॉक्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा की, घर घर जाकर दवाइयाँ और टीका पहुँचाया। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी संसार के प्रत्येक क्षेत्र में नारी की पहचान और प्रसिद्धि की एक लंबी फहरिस्त तैयार की जा सकती है, जिसमें रीता फारिया, इंदिरा नुई, मेघा पाटकर आदि के नाम प्रमुख हैं। नारी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और सोचिए, अगर हॉस्पिटल में महिला नर्स ना हो, स्कूल में महिला टीचर ना हो और खेतों में काम करने वाली महिलाएं ना हो, तो सचमुच में जीवन रुक जाएगा। आज की नारी न सिर्फ नन्हे शिशु को जन्म देकर सृजन करती है, बल्कि एक नए स्टार्टअप बनाना, नई खोज करना, समाज को नई दिशा देने का भी कार्य करती है। यह सभी कार्य भी सृष्टि को आगे बढ़ाना है, जो आज की नारी कर रही है। अब तक तो हम चर्चा कर रहे थे महिला की संकल्प की शक्ति से लेकर सिद्धि तक, किंतु हमने देखा है कभी कभी हमारे समाज की नारी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही सकारात्मक परिस्थितियां नहीं मिल पाती है। कभी कभी उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। इनमें से मुख्य बाधाएं हैं सामाजिक रूढ़ियां, सुरक्षा का अभाव और शिक्षा की कमी और आर्थिक असमानता। यह सभी कारक महिला की क्षमता को सीमित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आज के दौर में हालांकि शिक्षा के स्तर में सुधार और पुरुष सदस्यों जैसे पिता, भाई, पति के बढ़ते सहयोग से परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन अभी भी रूढ़िवादी सोच और हिंसा की चुनौतियां बनी हुई है। नारी के आगे बढ़ने में प्रमुख बाधाएं और समस्या इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला कारण है सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियां। हमारा समाज पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को अक्सर घर की चार दीवारी तक सीमित रखना चाहता है, जहां उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। आर्थिक निर्भरता अर्थात महिलाओं का पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना भी उनकी सफलता के मार्ग में रोड़े डाल रहा है, जिसका प्रमुख कारण है संपत्ति के अधिकारों की कमी और समान काम के लिए समान वेतन का न मिलना। कार्य जीवन संतुलन अर्थात वर्क लाइफ बैलेंस, इसका अर्थ यह है कि घर की जिम्मेदारी, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और ऑफिस के काम के बोझ को एक साथ संभालना, डबल बर्डन भी महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याएं, जिसका प्रमुख कारण है पौष्टिक आहार की कमी। अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं घर के सारे सदस्यों की खान पान का तो भली भांति ध्यान रखती है, किंतु स्वयं के स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार की ओर ध्यान देने का उसके पास समय ही नहीं होता। इतना ही नहीं, चिकित्सा तक कम पहुंच और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी उनके विकास में बाधा डालती है। किंतु वर्तमान में समाज और परिवार की सोच बदल रही है और पुरुष सदस्यों का सहयोग भी बढ़ रहा है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाएं इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अंत में हम कह सकते हैं कि आज की नारी चूल्हे चौके से निकलकर चांद तक पहुंच गई है। वह प्रेम से घर संभालती है और शक्ति से दुनिया चलाती है, इसलिए वह सचमुच शक्ति के प्रतीक और प्रेम की मूर्त है। उसने संकल्प की शक्ति से अपने आप को सिद्ध कर दिखाया है। इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। अंत में मैं नारी के सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। नारी जब ठान ले तो हर राह आसान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। नारी जब ठान ले तो हर राह आसान होती है। रोक सके न कोई तूफान उसके इरादों को, क्योंकि सफलता भी खुद नारी का सम्मान होती है। रोक सके न कोई तूफान उसके इरादों को, क्योंकि सफलता भी खुद नारी का सम्मान होती है। धन्यवाद
1: बहनों। अभी आप सुन रही थी वार्ता।

विषय था संकल्प से सिद्धि तक नारी और वार्ताकार थी श्रीमती रश्मि गुप्ता। बहनों, नारी निरंतर ऊंचाइयों को छू रही है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता, संघर्षों का डटकर सामना करने की सीख और उम्मीद की किरण जगाता, हौसला देता सुनते हैं ये गीत।

बहनों अभी आप सुन रही थी फिल्म आरती का गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, रोशन का संगीत और मधुर आवाज थी लता मंगेशकर की। बहनों चलिए कुछ बातें कर लेती हैं। बहनों कहा जाता है कि सावधानी ही सुरक्षा है। कई बार छोटी सी असावधानी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जैसे कि बहनों हम रसोई में खाना बनाते समय सूती कपड़े पहने, ढीले या नायलॉन के कपड़े ना पहने, गैस सिलेंडर के पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल या मिट्टी का तेल ना रखें। गैस सिलेंडर में अगर रिसाव हो रहा है या कोई कुछ खराबी है बहनों, तो बिजली का कोई भी स्विच ऑन या बंद ना करें, खिड़की दरवाजे खोल दें और रेगुलेटर को ऑफ करें और जितनी जल्दी हो सके मैकेनिक से चेक करवाएं। बहनों गैस सिलेंडर के उपकरणों की नियमित रूप से जो उनका चेक करवाते रहें, जिससे कि उनकी खराबी का हमको पता चलता रहे। गैस सिलेंडर की नाब प्रयोग होने के बाद बंद कर दें। शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर बहनों मेन स्विच बंद कर दें। आग बुझाने के लिए मिट्टी या रेत का उपयोग करें और कहीं भी बहनों आग लगने की घटनाएं होती हैं तो तुरंत ही अग्निशमन विभाग को सूचित करें। किसी भी बहुमंजिला इमारत में आग लगने पर हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का नहीं। खराब तारों को तुरंत बदलवा दें। बिजली के उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। बढ़ती गर्मी के कारण बहनों जहां आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं, वहीं हम सबको भीषण जल संकट से भी गुजरना होता है। जल ही जीवन है, जल की बूंद बूंद कीमती है। तो बहनों हम जल का महत्व हम सभी को समझना है और जल का संरक्षण करना है और पानी की बचत के कुछ उपाय भी हम ध्यान में रखें, जैसे कि उतना ही पानी उपयोग करें जितनी जरूरत हो। नल से पानी टपक रहा हो या रिसाव हो तो जल्द से जल्द सुधरवा लें। कपड़े धोने से बचे

पानी से हम पोछा लगा सकते हैं। दाल चावल सब्जियों को धोने का जो पानी निकलता है उसे हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लें और इस पानी को हम पेड़ पौधों में भी बहनों डाल सकते हैं। घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं ताकि वर्षा का जल बेकार न बहे बल्कि ज़मीन में जाकर भूजल का स्तर बढ़ाए। बहनों ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हैं महत्वपूर्ण, जिनका हमको ध्यान रखना है, सजग रहना है। गैस सिलेंडर या बिजली के उपकरणों का उपयोग तो बहनों को सावधानी से करना है और हम सब मिलकर अग्नि से सुरक्षा के नियमों को समझें, दूसरों को भी जागरूक करें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बहनों सावधानी ही सुरक्षा है। और अब बहनों चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

बहनों, अभी आपने सुना खिलाड़ी फिल्म का गीत, अलका याग्निक और अभिषेक की आवाज में जतिन ललित का मधुर संगीत था और अनवर सागर के दिल को छू लेने वाले भावपूर्ण बोल थे। और बहनों, अब समय हमारे जाने का, तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं पत्रों और ईमेल के माध्यम से जरूर प्रेषित कीजिएगा। और वादा रहा, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत सभी श्रोता बहनों को। जुनेदा का नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय वाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म वास्तव का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत जतिन ललित का था।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें।

0: और अपने विचार भी साझा करें तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म संघर्ष का ये गीत, जिसके लिए आवाज सोनू निगम की है। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: फिल्म संघर्ष के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल

0: यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan, with its long time,
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र

सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान

0: अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना

0: कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजू का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ें कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीता नुमलिक का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

लीजिए अब सुनिए फिल्म गर्भ का गीत, उदित नारायण, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत साजिद वाजिद का है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म का गीत मनोहर शेट्टी, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत संजीव दर्शन का है।

चित्रपट संगीत के अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार 22 मई 2026 यानी कल प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग और सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई यानी

कल दिन में 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही यानी कल ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म यकीन का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 4 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर सुनवाने इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने माना कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोप, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है। इसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओहयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा इनका प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नई मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोक भवन में राज्यपाल

0: काल विश्वनाथ अर्लीकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने इन नए केंद्रों के लिए आवेदन किया है। झारखंड के रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। इनमें 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to cooperate on IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with Prime Minister Modi in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni described IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the Middle East and India with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Ms. Meloni said, strengthening interconnectivity between the regions remains an important priority and added that both countries strongly support the development of the corridor. The two prime ministers also reaffirmed that innovation, science and technology are core drivers of the India-Italy partnership. Prime Minister Narendra Modi said Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: The re-poll in the Palta Assembly constituency is going on peacefully in West Bengal. We have more from our correspondent.
3: Peaceful voting is being conducted in the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district in West Bengal today. Total 60.43% voting has been recorded till 1 p.m. After the withdrawal of TMC candidate Jahangir Khan from the contest, the main fight is among BJP, Congress and CPIM. Kollan Laha, Akashvani News, Kolkata.
1: The West Bengal government has made the singing of Vande Mataram mandatory during morning assembly prayers in all madrasas across the state with immediate effect. The order has been issued by the Directorate of Madrasa Education. According to the notification, the directive will apply to government model madrasas, government aided madrasas, recognized unaided madrasas, as well as approved Shishu Shiksha Kendras and Madhyamik Shiksha Kendras functioning under the Minority Affairs and Madrasa Education Department. The Ministry of Education has clarified that the School Management Committee Guidelines 2026 are not applicable to private unaided schools, as such institutions do not receive any grants from the government or local authority towards meeting their expenses. Recently, Mr. Pradhan had launched School Management Committee Guidelines in New Delhi to strengthen community participation and school

0: नमस्कार। आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव हम मना रहे हैं और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसी आवाजें भी सुनने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने आकाशवाणी को और समृद्ध किया है अपनी मेहनत से, अपने कार्यकाल के दौरान और अपने नए नए विचारों से। आकाशवाणी के संग यादों के रंग, आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं और विभिन्न केंद्रों पर महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं। लक्ष्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो।
1: धन्यवाद नीलम जी, धन्यवाद।
0: जब मैं आपका परिचय दे रही हूँ और बता रही हूँ कि यहाँ पर आप स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, तो एक विचार मेरे मन में आता है कि मुझे आपके अंडर काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्यवाद इस कार्यक्रम को कि आज आपसे बात करने का अवसर मुझे मिल रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी की प्रथम स्मृति आपके मन में क्या है।
1: देखिए, जहां तक आकाशवाणी का प्रश्न है, अगर स्मृति की बात करें तो मेरे ख्याल में मैं 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था
0: जी।
1: तब मेरे घर में पहली बार रेडियो खरीदा गया था, तब मैंने पहली बार रेडियो क्या होता है, कैसा होता है, वो सुनना शुरू किया और अनुराग रेडियो के प्रति विकसित हुआ। लेकिन मूल रूप से जो रेडियो से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ, एक वार्ताकार के रूप में कहना चाहिए
0: जी।
1: मुझे आज भी याद है, वर्ष 1969 में, तब मैं भोपाल के राजकीय हमीदिया कला वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए का छात्र था
0: जी।
1: और पहली बार आकाशवाणी भोपाल में
0: जी,
1: नई उमंग नई तरंग, इस ढंग से आकाशवाणी भोपाल से वो कार्यक्रम प्रसारित होता था। और पहली बार मेरी जो वार्ता कहिए या जो विचार कहिए, वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में
0: जी
1: प्रसारित हुए थे। जनवरी वर्ष 1969 में ये मेरा पहला जुड़ाव शुरू हुआ और उसके बाद आकाशवाणी भोपाल के एक वार्ताकार के रूप में, और एक वार्ताकार के रूप में ही नहीं बल्कि ऑडियंस रिसर्च यूनिट में एक सर्वेयर के रूप में भी
0: जी
1: मेरे को आकाशवाणी से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और चूंकि समाजशास्त्र मेरा विषय था और मैं ये आज भी मान के चलता हूँ

0: कि आकाशवाणी ही नहीं, रेडियो ही नहीं, जनसंचार माध्यम के जितने भी साधन हैं, मूल रूप से वो समाज के विषय हैं
1: जी।
0: क्योंकि वो समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए समाज शास्त्र में उनका विशेष रूप से महत्व है। तो वही आगे चलकर विकसित होता रहा। मैंने किताब भी लिखी जनसंचार का समाज शास्त्र बाद में। वर्ष 1976 में जब आकाशवाणी का विकास हुआ अलग अलग केंद्रों में, तब एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: मैंने ज्वाइन किया, और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो आकाशवाणी रायपुर में सबसे पहली बार ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में हुई। फिर 1982 में यूपीएससी से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में, 1990 में यूपीएससी से स्टेशन डायरेक्टर के रूप में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और मैं जबलपुर, जलंधर, भोपाल, इंदौर, और जो अभी आपने आकाशवाणी दिल्ली की चर्चा की
1: जी,
0: तो मुझे जहां तक याद पड़ता वर्ष 2002, 2003, 2004 मेरे को सौभाग्य मिला आकाशवाणी दिल्ली में काम करने का, और यहां आकर मैंने बहुत कुछ सीखा
1: जी।
0: और आकाशवाणी का जो मूल रूप से काम है, या आकाशवाणी ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया है समाज को, लोग कहते हैं ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, ये तो हमारे साधन है ही, लेकिन आकाशवाणी ने समाज में, एक नए आजाद हुए देश में
1: जी,
0: धारणा के निर्माण का सबसे बड़ा कार्य किया, और यहाँ की जनता को ये समझाया, जनता के बीच में एक धारणा विकसित की कि हमें अपने देश के विकास के लिए स्वयं मेहनत करना है, स्वावलंबी बनना है, और राष्ट्रीय भावना का विकास करना है, वो आकाशवाणी ने विकसित की। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस देश के विकास में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान
1: जी। तो हम कहते हैं कि जो मजबूत नींव होती है, उस नींव को मजबूत करने में आकाशवाणी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
0: जी बिल्कुल
1: जी। आपकी पसंद का एक गीत,
0: अगर आप मेरी पसंद का गीत, तो मेरे को लगता सतीश भाटिया जी की हमें चर्चा करना चाहिए। सतीश भाटिया जी का आकाशवाणी में बहुत योगदान रहा है, तो उनका बूंजो बन गई मोती का एक गीत है, ये कौन चित्रकार है, ये सतीश भाटिया जी को एक हमारी श्रद्धांजलि भी होगी
1: जी बिल्कुल।

0: कहा कि आपकी शुरुआत ट्रैक्स के रूप में हुई
1: जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: और ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: तो ये बताएं कि आपके समय में कार्यक्रम तैयार करना कितना चुनौतीपूर्ण होता था, क्योंकि तकनीक में लगातार सुधार हुआ है, बेहतर चीजें आज हमारे पास हैं, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी मेहनत पर। तो कैसे आप कार्यक्रम तैयार करते हैं?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 1976 में जब मैंने ज्वाइन किया था
0: जी,
1: उस जमाने में हम लोग चाहे किसी भी पोस्ट में थे
0: जी,
1: हम सभी कार्यक्रम निर्माता थे
0: जी,
1: और हम सभी को इस बात का अवसर मिला था कि हम कार्यक्रमों का निर्माण करें, और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ती थी
0: जी।
1: अनुशासन बहुत पक्का था। आपकी बात से मेरे को याद आया, मेरे साथ ही घटा हुआ एक प्रसंग, आकाशवाणी रायपुर का प्रसंग आपको बताता हूँ। मैंने 1976 में ज्वाइन किया एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव
0: जी,
1: और तब हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे हेमेंद्र नाथ जी, बहुत गुणी स्टेशन डायरेक्टर थे, बहुत सिखाया उन्होंने, गुरु थे वो। तो बहुत थोड़े ही अरसे बाद वहां से युववाणी कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित होने लगा, और उन्होंने मुझे इसलिए युववाणी कार्यक्रम का इंचार्ज बना दिया, जबकि मैं ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव था। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि कोई युवा इसका इंचार्ज बने, ताकि वो युवा भावना से काम करे। तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। तो हमारा एक कार्यक्रम था सवालों के आईने में। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उस जमाने में किस ढंग से जिम्मेदारी से काम किया जाता था। तो सवालों के आईने में कार्यक्रम में क्या होता था कि उस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से 5 प्रश्न देते थे, और उनसे ये निवेदन करते थे कि आप पोस्ट कार्ड पे इनके सही उत्तर लिख के भेजें। बुधवार को वह कार्यक्रम होता था, और अगले बुधवार को हम उनके सही उत्तर बताएंगे
0: जी,
1: और सही उत्तर जो बताएगा उसके नाम बताएंगे। अब मैंने एक प्रश्न उसमें रखा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताइए। अब जब उसके उत्तर आए तो 2-4 उत्तर को छोड़ के सारे उत्तर गलत थे
0: जी।
1: तो हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि ये सब लोग कैसे गलत बता रहे हैं
0: जी।
1: बहरहाल हमने सही उत्तर जो था वो बता दिया बुधवार को। बृहस्पतिवार के अखबारों में, वो जमाना ऐसा था जब आकाशवाणी पर बहुत कड़ी दृष्टि रहती थी, खासकर अखबारों की, समाचार पत्रों की, तो उसमें बकायदा प्रथम पेज पे एक वो था, कौन सही है, आकाशवाणी रायपुर या भूगोल की किताबें। अब जब मैं पहुंचा ऑफिस 10 बजे, मेरे ख्याल में मॉर्निंग ड्यूटी थी, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी के बाद, तो मेरे को अच्छे से याद है एक मलयाली सज्जन थे, स्टेनो मित्र भी थे, तो चुपरा जी इधर आइए, इधर आइए, क्या हो गया, आपके नाम मेमो है। अच्छा, मैंने देखा तो वो पेपर की कटिंग लगी थी, और उसमें था कि आज 2 बजे तक एक्सप्लेनेशन कॉल दीजिए आप कि कौन सही है। आपने ये उत्तर दिया है और भूगोल की किताब में ये उत्तर दिया गया। अच्छा, वो शशि जो थे वो हम उम्र थे, बहुत चिंतित थे बेचारे कि अभी इनकी नई नौकरी है, प्रोबेशन भी पूरा नहीं हुआ है, क्या होगा। तो मैंने उससे कहा शशि आप चिंता नहीं करिए, अगर हमने ये उत्तर दिया है तो हमने सही उत्तर दिया है और हमारे पास इसका प्रमाण है। ठीक है, तो मैंने अपना जो स्पष्टीकरण था वो लिख के स्टेशन डायरेक्टर साहब को दे दिया। अब देखिए हुआ क्या था कि जब वो भूगोल की किताबें छपी थी तो उसमें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो वर्ग मील में दिया गया था
0: जी।
1: अब जब उसको सुधार किया गया तो वर्ग मील की जगह तो वर्ग किलोमीटर कर दिया गया
0: जी,
1: आंकड़े वही के वही रखे गए।
0: जी
1: तो नेचुरल है, अब वो
0: गलत
1: हो गया वो
0: जी।
1: यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि वो जमाना ऐसा था जब मैंने अपना जवाब दिया मीटिंग में, तो स्टेशन डायरेक्टर ने ये कहा कि लक्ष्मेंद्र आप वेट करेंगे थोड़ी देर। मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा, मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद कॉल बेल बजाई और बोले इनको एक चाय पिलाइए इनाम में।
0: जी,
1: और वो बहुत बड़ी बात थी कि आप स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में एक कप चाय पी रहे हैं
0: जी।
1: पर मेरा मतलब यहाँ सिर्फ कहने का ये है, क्योंकि जब मैंने उस सवाल का चयन किया था और उसका उत्तर ढूंढा था तो मैंने बकायदा जो जिला सांख्यिकी विभाग था
0: जी,
1: उस जमाने में ये गाड़ियां वाड़ियां नहीं मिलती थी, अपनी साइकिल पे आना जाना पड़ता था, मैं बकायदा उस ऑफिस गया था, जिला सांख्यिकी अधिकारी से मिला था, उन्होंने पुस्तिका निकलवाई थी और उस पुस्तिका से वो आंकड़े हमें नोट कराए।

0: गए थे और वो सही आंकड़े, तो हमने उसका उत्तर दिया कि हमारे आंकड़े सही हैं और बाकायदा ऐसा नहीं है, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब ने जिस अखबार में छपा था उनके संपादक महोदय को फोन किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमारे लड़के ने गलत काम नहीं किया है, आप किसी को दोष मत दीजिए, पर कल इसका भूल सुधार छापिए।
1: जी,
0: यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है नई पीढ़ी को भी कि अगर आप आकाशवाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया याद रखें आपके भरोसे पे बहुत से लोग परीक्षाएं भी देते हैं
1: जी,
0: बहुत से लोग अपनी जानकारियां, और वो ये मान के नहीं चलते हैं कि ये सोशल मीडिया पे जानकारी आई है या और किसी मीडिया पे आई है, वो ये मान के चलते हैं कि आकाशवाणी से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उन्हें विश्वास है आकाशवाणी पे, इसलिए ये आंकड़े सही होना चाहिए। तो ये वो युग था नीलंच।
1: जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग आकाशवाणी पर जो समय बताया जाता है उसी से अपनी घड़ी भी मिलाते थे, ये भी हमने सुना है।
0: जी।
1: अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप श्रोताओं को

0: यहां मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है नई पीढ़ी को भी कि अगर आप आकाशवाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया याद रखें आपके भरोसे पे बहुत से लोग परीक्षाएं भी देते हैं
1: जी।
0: बहुत से लोग अपनी जानकारियां और वो ये मान के नहीं चलते हैं कि ये सोशल मीडिया पे जानकारी आई है या और किसी मीडिया पे आई है, वो ये मान के चलते हैं कि आकाशवाणी से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उन्हें विश्वास है आकाशवाणी पे, इसलिए ये आंकड़े सही होना चाहिए। तो ये वो युग था नीलम जी।
1: जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग आकाशवाणी पर जो समय बताया जाता है उसी से अपनी घड़ी भी मिलाते थे, ये भी हमने सुना है।
0: जी।
1: अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवाना चाह रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको, हम चूंकि आकाशवाणी दिल्ली में बैठे हैं
1: जी
0: और पंडित रविशंकर जी को याद ना करें, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी।
1: जी
0: देखिए आकाशवाणी के हमारे दो बड़े कलाकार ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, उनमें पंडित रविशंकर जी एक हैं, भूपेन हजारिका
1: जी
0: एक हैं
1: जी।
0: दोनों को भारत रत्न से विभूषित किया गया है, तो मैं ये चाहूंगा कि हम पंडित रविशंकर जी का गोदान फिल्म का गीत
1: जी
0: जो है
1: पीपरा के पतवा पे,
0: हाँ
1: डोले
0: वो अगर हम श्रोताओं से, क्योंकि उसकी एक खास बात और भी है, पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई जब मैं यहाँ आकाशवाणी दिल्ली में स्टेशन डायरेक्टर था तो मैं उनके निवास पे मिलने गया था।
1: अच्छा आप मिले हैं?
0: हाँ उनसे मैं मिला, उनके निवास पे मिला, और वो जितनी देर बात करते रहे वो यहाँ के स्टूडियो, यहाँ के आर्केस्ट्रा, यहाँ के अपने पुराने साथियों के बारे में ही मुझसे पूछते ताछते रहे, इतना प्रेम था उनको आकाशवाणी से। तो वो गीत श्रोताओं को सुनाते।
1: जी बिल्कुल।

0: के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और आज यादों के रंगों को ताजा कर रहे हैं हमारे साथ लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं और विभिन्न केंद्रों पर महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां आपने संभाली, और आज आपके बहाने हम भी आकाशवाणी का बीता वक्त फिर से जी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी लक्ष्मेंद्र जी, जब आपका सिलेक्शन हुआ आकाशवाणी में, बाकी के जो भी पद होते हैं, जो भी विभाग होते हैं, उनके बारे में लोगों को कुछ जानकारी पहले से होती है। आकाशवाणी एक ऐसा विभाग है जिससे सबका मन का रिश्ता तो है, लेकिन कार्य प्रणाली क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब आपने किसी को भी आप बताते थे कि आकाशवाणी में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या प्रतिक्रिया उनकी रहती थी?
1: आकाशवाणी का बहुत सम्मान था नीलम जी
0: जी।
1: और मैं आपको एक और अपने श्रोताओं को भी बात बताना चाहूंगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस साल मेरा आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हुआ था, उसी साल मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी चयन हुआ था
0: जी।
1: क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मैं पहले दे चुका था, तो मैंने तय ये किया कि आकाशवाणी एक सामाजिक सांस्कृतिक सेवा करने का विभाग है और बेहतर हो कि मैं आकाशवाणी में ही कंटिन्यू करूं
0: जी।
1: और आकाशवाणी का समाज में बहुत सम्मान था, और माता पिता ने भी मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं, आपका आकाशवाणी में तुम्हारा हुआ है तो तुम आकाशवाणी की ही सर्विस को कंटिन्यू करो। आकाशवाणी एक बहुत ही भावनात्मक रूप से भी इंसान को जोड़ता है, संगीत, संस्कृति, सामाजिक समस्याओं को लेके, इन सारी चीजों को लेके आकाशवाणी लोक संगीत के संरक्षण में, संगीत के संरक्षण में, साहित्य के संरक्षण में, तो और सबसे बड़ी चीज ये है जो मैंने अपने पूरे जीवन भर, मैंने एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी में ज्वाइन किया और एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन से रिटायर हुआ
0: जी,
1: किसी ढंग का दबाव, जनता के दबाव को छोड़ के, श्रोताओं के दबाव को छोड़ के
0: जी,
1: किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात
0: जी। आपने अभी जिक्र किया कि श्रोता जो है वो चिट्ठियां लिखते थे, सवालों के जवाब भी देते थे और कार्यक्रम भी खूब सुने जाते थे। कोई बड़ी घटना आपको याद आती है उस समय की, किसी बहुत बड़े कलाकार का इंटरव्यू किया हो, या फिर किसी ने कमेंट किया हो, या कोई कार्यक्रम जो है उस पर बहुत विशेष चर्चा हुई हो? जैसे अभी आपने कहा कि आपातकाल का समय था, उस वक्त चल रही थी नौकरी, तब अलग तरह की कठिन परिस्थितियां थी, तो इसके अतिरिक्त कोई ऐसी घटना?
1: मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो आकाशवाणी के श्रोताओं से ही संबंधित है
0: जी।
1: आकाशवाणी रायपुर मैंने एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा यूपीसी से सिलेक्शन हो गया, मैं जगदलपुर चला गया
0: जी।
1: जगदलपुर में मैंने 4 साल आदिवासी अंचल में काम किया, आदिवासी क्षेत्र में, और आदिवासी क्षेत्र में काम करने का एक ये मेरे को नया अनुभव ये हुआ कि आकाशवाणी का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, जन जन की समस्याएं सुलझाना भी है। उसी दौर में जगदलपुर में खूनी पेचिश की बीमारी फैल गई
0: जी।
1: तो जो बाकी जनसंचार माध्यम थे उन्होंने तो चिकित्सकीय सेवाओं की आलोचना, प्रशासकीय सेवाओं की आलोचना, ये सब शुरू की
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में ये आया कि सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में क्यों फैल रही है। भाई जगदलपुर में तो नहीं फैली, जगदलपुर तो शहर है
0: जी,
1: ये गांव में क्यों फैल रही है? तो वहां पर एक मेरे मित्र थे और वो बस्तर के ही रहने वाले थे, अभी भी बस्तर में रह रहे हैं, असिस्टेंट एडिटर थे हमारे डिपार्टमेंट में, मयाराम नेताम और गोंडी। तो मैंने मयाराम जी से बात की, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, और मैंने मयाराम जी से कहा कि मयाराम जी आप तो बस्तर के रहने वाले हैं
0: जी,
1: हमारी ड्यूटी है कि हम इस बात का पता करें कि भाई ये बीमारी यहाँ के गाँव में ही क्यों फैल रही है। तो मयाराम जी सहमत हुए, तो मैंने कहा अगर आप मेरा साथ दें तो अपन उन गांव में चलते हैं और उस गांव में चल के अपन खोजबीन करते हैं,
0: जो कि बहुत ही साहस का काम था क्योंकि बीमारी फैली हुई थी वहां पर।
1: अब मेरे को अभी तक याद है, कुंडू करके ड्राइवर थे, बड़ा यंग लड़का था, हेमनारायण पात्रो स्टेशन डायरेक्टर थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, वो बड़े खुश हुए, बोले हाँ ठीक है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि एक नदी है, उस नदी पे पुल नहीं है, तो आप छोटी छोटी नाव बांध के उस पे जीप चढ़ाई जाएगी और नाव से उस पार हमें जाना पड़ेगा। अब मेरे को

0: क्या लगा कि कुंडू जो हैं वो शायद मना कर दें कि भाई ड्राइवर हैं वो, कि भाई मैं तो नहीं, पर कुंडू से मैंने पूछा भाई कुंडू क्या किया जाए, बोले सर जैसा आप कहें वैसा करते हैं। तो मैंने कहा चलते हैं उस पार के गांव में। अब वहां जाके हमें बात समझ आ गई कि बरसात का जो पानी है वो जमा हो जाता है वहां नालों में, और वही पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, और चूंकि आदिवासी भाई उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी उनको खूनी पेचिश्की हो जाती है। तो हमने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की
1: जी।
0: और रिकॉर्डिंग करके हम वापस जगदलपुर आए। उसके बाद मैं जाकर वहां पर कमिश्नर जो थे उनसे जाके मिले, हमने उनको सुनाया, उन्होंने हमसे कहा कि आप चिकित्सकों से करिए। हम जाके वहाँ महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर था, वहाँ जाके उनके डॉक्टर्स से मिले। उन्होंने हमें ये सुझाव दिया कि इसका एक ही हल है कि आदिवासी भाइयों को पीने का स्वच्छ पानी मिले। हम वो सुझाव लेके कमिश्नर साहब के पास दोबारा गए। उन्होंने पीएचई के कमिश्नर साहब को बुलाया, मिस्टर दुबे कमिश्नर थे। हम लोगों की मीटिंग हुई आकाशवाणी के साथ, और तय हुआ कि इतना फंड दिया जाएगा और वहाँ पे नलकूप खोदे जाएंगे, और उन गांवों में वो नलकूप खोदे गए, और अगले साल से वो बीमारी वहाँ से खत्म हो गई। जनता की समस्याओं को प्रशासन तक या विशेषज्ञों तक पहुँचाने का काम ही जनसंचार माध्यमों का है, और चूंकि आकाशवाणी सबसे सहज सुलभ सबसे सस्ता
1: जी,
0: बस एक हिम्मत की जरूरत है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि रेडियो का सबसे बड़ा योगदान एक पुल के रूप में है
1: जी,
0: जो कि हमारी आम जनता की समस्याएं प्रशासन तक ना सिर्फ पहुंचाता है बल्कि उसका हल भी ढूंढता है, और उसको आगे वो काम ठीक चल रहा है कि नहीं इस पे भी निगरानी रख
1: जी।
0: तो ये एक घटना है जो याद रहती जीवन में, और ये लगता
1: बहुत
0: है
1: प्रेरक घटना है, और हाँ, अच्छा कि आपने ये हमारे साथ साझा
0: किया। ये लगता है कि एक किस्म की सोशल सर्विस है ये
1: जी, बिल्कुल। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
0: बहुजन सुखाय जी,
1: हैं,
0: जी तो बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये
0: देखिए महात्मा बुद्ध का है ये, बहुजन हिताय बहुजन
1: सुखाय,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसी मोड़ पर मैं आपकी पसंद का एक और गाना,
0: हाँ मैं आपको एक गीत अब सुनवाना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को। हमारी मित्र हैं छाया गांगुली
1: जी।
0: छाया गांगुली की विशेषता ये है कि वो आकाशवाणी में विविध भारती में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी रही हैं। मेरे साथ दूरदर्शन में भी उन्होंने काम किया है
1: जी।
0: गमन में संगीत जयदेव जी का, मखदूम साहब की वो है एक गजल आपकी याद आती रही
1: जी,
0: उस पर उनको अवार्ड भी मिला था। मैं ये चाहूंगा कि हमारे श्रोता ये समझें, जैसे उन्होंने पंडित रविशंकर जी का उदाहरण दिया है
1: जी,
0: कि छाया जी जो आकाशवाणी की ही हैं हमारी अपनी, उनकी ये गजल सुनी जाए
1: जी। बिल्कुल।

0: तो आपकी याद आती रही रात भर, लेकिन दिन में भी यादों के रंग हम ताजा कर रहे हैं अब आकाशवाणी के संग यादों के रंग कार्यक्रम में। और हमारे आज अतिथि हैं लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। मैं अब ये जानना चाहूंगी लक्ष्मेंद्र जी, आप बदलता हुआ वक्त देख रहे हैं, आपने जब ज्वाइन किया था आकाशवाणी, आपके अंडर जिस तरह के काम हुए जिनमें आप भी शामिल रहे, और आज जिस तरह के कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया का भी एक प्रभाव हम कई बार देखते हैं। आप इस प्रभाव को मीडिया पर किस तरह से देखते हैं और आकाशवाणी पर कैसे देखते हैं?
1: सोशल मीडिया को लेकर मैं कुछ निराश हूं जी, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, और धीरे धीरे सोशल मीडिया आम जनता का विश्वास खोता जा रहा है
0: जी,
1: क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी जानकारियां आती हैं जो सिर्फ इसलिए आती कि लाइक हमें मिलती रहे
0: जी,
1: और वो कितनी सही है कितनी गलत है, सिर्फ आकाशवाणी नहीं कहूंगा मैं, जनसंचार माध्यम या मीडिया में हमारे पुरखों ने जो काम किए
0: जी
1: वो और अधिक महत्वपूर्ण काम किए गए। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया में हर काम गलत हो रहा, सोशल मीडिया में कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी,
1: जनता को बहुत अच्छा जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इतने गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रहे हैं। अब मैं देखिए यहाँ आपसे एक स्कूप की चर्चा करना चाहता हूँ जो कि सीधा सीधा आकाशवाणी से जुड़ा है, और जो मैंने पहले बात यहाँ कही थी कि हमसे ज्यादा अच्छा काम हमारे पुरखों ने किया। मैंने जैसा शुरू में कहा कि हमारा देश यूरोप के कुछ देशों का एक उपनिवेश बन के रह गया था
0: जी।
1: बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि गोवा मुक्ति आंदोलन में ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन 1942 के आंदोलन के बारे में हम सबको मालूम है, उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो चलाया था, जब 1942 में सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ जयप्रकाश नारायण जी भी उसमें शामिल, इन्होंने बंबई में एक कांग्रेस रेडियो चलाया था जिसमें कि 1942 के आंदोलन के बारे में जो जानकारियां थी वो आम जनता तक पहुंचाई जाती थी। इसी प्रकार 1955 से 1961 तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुर्तगीज गोवा, उस जमाने में पुर्तगालियों के अधीन था, के बीच में एक रेडियो स्टेशन चलाया गया था, गुप्त रेडियो स्टेशन, जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम। और वॉइस ऑफ फ्रीडम जो था ये वास्तव में किस प्रकार गोवा को आजाद कराया जा सकता है, गोवा की आजादी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में जानकारी देता था। और इसमें जो काम करने वाले हमारे लोग थे जिन्होंने इस रेडियो स्टेशन का संचालन किया, वॉइस ऑफ फ्रीडम के जो कर्ता धर्ता थे उनके नाम मैं एक बार जरूर बता देना चाहता हूँ, मैं श्रोताओं को पता चले
0: जी।
1: ये रेडियो स्टेशन चलता था अम्बोली घाट में, जो कि

0: महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा बॉर्डर पे था। और वॉइस ऑफ फ्रीडम के जो प्रसारक जिसे कहिए, वामन सरदेसाई, मिस लीबिया लोबो, निकोलो मेंजेस, ये तीन नाम थे। वामन सरदेसाई जो थे वो आकाशवाणी बंबई के एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन के एक प्रसारक भी थे
1: जी।
0: जबकि मिस लीबिया लोबो वहां की स्टेनोग्राफर भी थी
1: जी।
0: तो ये एक जानकारी ऐसी है कि जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। आकाशवाणी के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी गोवा मुक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से 1955 से 1961 तक। और जब 1961 में भारत सरकार ने आजाद कराया गोवा को
1: जी,
0: तब उसके बाद वो रेडियो स्टेशन बंद हुआ। तो इस तरह की जानकारियां बहुत जरूरी हैं कि सोशल मीडिया इस पर रिसर्च करे
1: जी,
0: और सही सही जानकारियां अपने श्रोताओं तक पहुंचाए।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और मनोरंजन के तो अथाह हमारे पास सागर है, लेकिन ऐसे में अभी भी लोग कहते हैं कि आकाशवाणी जो है उसकी अपनी जो जगह है वो बहुत सुरक्षित है, बहुत मजबूत है। आप क्या मानते हैं, जितने हमारे पास विकल्प है उनमें आकाशवाणी का अपना स्थान क्या है आज के दौर में?
0: अब आकाशवाणी के साथ एक चीज और हुई, हमने शुरुआत की शॉर्ट वेव से
1: जी,
0: मीडियम वेव से। मेरे को अच्छे से याद है जब हम लोग ओबी पे जाते थे तो बड़े बड़े सिर के ऊपर टेप रिकॉर्डर रख के, तब हेल्पर भी होते थे। अब आज का युग ऐसा आ गया है कि आप कार में चलते समय भी रेडियो सुन सकते हैं
1: जी,
0: आप घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी आकाशवाणी को सुन सकते हैं
1: जी।
0: अब जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम ये पहचाने कि हमारे श्रोता कौन है, और नए श्रोताओं की तलाश करना आकाशवाणी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात
1: जी।
0: देखिए, अगर मैं कभी आकाशवाणी के इतिहास पर बातचीत करूं या सोचूं तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आकाशवाणी के इतिहास में थे वो स्टॉक करेक्टर्स थे, बरसाती भैया, लोहा सिंह, है ना, ये सारे नाम ऐसे थे जो गांव गांव में पहचाने जाते थे, और भी कई नाम होंगे, और वो उनके वास्तविक नाम नहीं थे, स्टॉक करेक्टर्स थे वो
1: जी।
0: और वो स्टॉक करेक्टर्स क्या थे, श्रोताओं को अपने में शामिल कर लेते थे। रायपुर में एक नाम था बिसाहू भैया
1: जी,
0: तो वो नाम शामिल कर लेते थे। इसी प्रकार अब क्या हुआ है, जैसे महानगरों में सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती गई हैं, तो रेडियो की विशेषकर आकाशवाणी की एक विशिष्ट मार्गदर्शक भूमिका के रूप में हमें काम करना पड़ेगा
1: जी।
0: सिर्फ यही नहीं बल्कि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी पनपी हैं, उन बुराइयों से हम स्त्री सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकते हैं
1: जी,
0: बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकते हैं, शिक्षा के और रोजगार के क्या क्या नए साधन आ रहे हैं
1: जी,
0: इन सब की जानकारियां इकट्ठी करके अपने श्रोताओं तक पहुंचाना भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व था है। जिस प्रकार एक युग में हम लोगों ने लोक संगीत, लोक नाट्य, शास्त्रीय संगीत, इन सबको बचाने के लिए जीतोड़ प्रयास किया और उनको बचा के भी रखा, मुझे इस बात का गर्व है, इस बात को कहने का कि हमारे रेडियो के आकाशवाणी का जो ऑडिशन, इसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आकाशवाणी से अगर वो अप्रूव्ड वॉइस है, अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, तो निश्चित रूप से वो कुछ होगा। उस आकाशवाणी की एक महती भूमिका यही हो सकती है, जैसे इसी आकाशवाणी दिल्ली का ही मेरे को याद है, जब हम 2003 में हमारी डीडीजी मिस नूरुन नकवी थी, मैं तो उनसे जब नए फिक्स पॉइंट चार्ट का मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं नव दंपतियों के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। नूरुन जी ने मेरे से पूछा, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि अब ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई है
1: जी, बिल्कुल,
0: अब हमें मार्गदर्शन के लिए परिवार में कोई है नहीं, तो भाई एक साधन तो चाहिए ना, तो आकाशवाणी वो साधन बन सकता है। महिला कार्यक्रम का हमने नाम दिया था आधा आकाश हमारा
1: जी,
0: आधा आकाश हमारा, मतलब ये पूरी दुनिया पुरुषों की नहीं है, इसमें आधा हमारा भी हिस्सा है,
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कार्यक्रम यहाँ हमने नेत्रहीनों के लिए शुरू किया था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि नेत्रहीनों के लिए आकाशवाणी से बड़ा कोई साथी नहीं है
1: जी, बिल्कुल,
0: है ना, तो आवाजों के अक्षर, तो ये चीजें ऐसी हैं जो आकाशवाणी जैसे जैसे अपना बढ़ेगा, आकाशवाणी उसको हमेशा नए नए श्रोताओं की तलाश

0: निष्पक्ष करती रहने पड़ेगी
1: जी,
0: और श्रोताओं की आवश्यकताओं को पहचानना होगा, समझना होगा और नए ढंग के कार्यक्रम जोड़ते रहना
1: जी। अब इसी मोड़ पर आपकी पसंद का एक और गीत।
0: हाँ, मैं यहाँ पंडित नरेंद्र शर्मा जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा
1: जी,
0: क्योंकि विविध भारती की स्थापना में पंडित नरेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ज्योति कलश छल के भाभी जी की चूड़ियां, लता जी का, सुधीर फड़के का संगीत है।

0: बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना हमारे श्रोताओं के लिए। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चलते चलते आकाशवाणी के जो आज के श्रोता हैं, जिसमें युवा साथी भी है, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: आकाशवाणी के युवा साथियों का ले दे तो हमारा तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को जीवन जैसे जियो।
0: जी,
1: यहाँ मैं अपना एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ।
0: जी
1: नीलम जी, उम्र के अब मैं जिस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ तो जो बातें हैं वो स्वीकार करनी चाहिए। मैं जब छात्र था स्कूल का तो एक ही दौर था कि क्या बनोगे, इंजीनियर या डॉक्टर, और इसलिए विज्ञान विषय ही पढ़ना चाहिए।
0: जी
1: है ना, और आपको जान के या श्रोताओं को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा पता नहीं, मैं BSc पार्ट 1 में 2 बार फेल हुआ।
0: जी
1: क्योंकि माता पिता चाहते थे डॉक्टर बने।
0: जी

0: अब मैं डॉक्टर कहां से बनूं, भाई मेरे को तो फिजिक्स ही नहीं समझ आती थी
1: जी,
0: है ना। तो मैंने अपने विषय बदले और जब मैं आकाशवाणी भोपाल में स्टेशन डायरेक्टर था, बड़ी छोटी सी घटना, मैं बहुत छोटे में उसको खत्म करूंगा। तो एक मीटिंग चल रही थी, मेरे कई मित्र साथी थे, हम लोग एक ऑफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे। तो मेरे प्यून ने आके कहा कि मेरे एक साथी का नाम लिया जो स्कूल में मेरा साथी था, कि वो अपने बेटे के साथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ भाई, उनको अंदर बुलाओ। वो अंदर आए तो हम लोग, जयंत जोशी जी वहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके साथ मीटिंग हो रही थी और भी एक दो साथी थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैंने सुना कि वो मेरे जो मित्र बैठे हुए अपने पुत्र के कान में कह रहे हैं, ये 2 साल फेल हुआ था।
1: जी
0: कोई बात नहीं, जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद चाय वाय बुलाई, फिर मैं उसके साथ बैठा
1: जी।
0: तो उसने बताया कि मेरा ये बेटा है, इसका पीईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, तो मैं सिर्फ जबलपुर से तुमसे मिलवाने के लिए इसको यहाँ लाया हूँ कि निराश मत हो
1: जी।
0: तो मेरा अपने बच्चों से यही निवेदन है कि दोस्त, सिर्फ एक ही चीज जीवन में नहीं है, और भी जीवन में बहुत कुछ है। आप में हिम्मत होना चाहिए, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और यही संदेश मेरा आज आकाशवाणी के साथियों को भी है
1: जी,
0: कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका है समाज में, और हमें उस भूमिका की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें करना चाहिए
1: जी।
0: और अंत में भूपेन हजारिका जी का, क्योंकि वो ना सिर्फ भारत रत्न थे बल्कि पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी में वो थे, तो एक पूरे भारत की मुकम्मल तस्वीर इस कार्यक्रम में आ जाए।

0: अपने कार्यालय आज आए और बहुत सारी बातें आपने साझा की। आपके प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। आपको मैं जाते जाते ही पूछना चाहूंगी कि कुछ ही शब्दों में आप बताएं कैसा लगा आपको आकर और एक टॉकर के रूप में यहाँ बैठकर।
1: देखिए, आकाशवाणी ने मेरी जिंदगी बनाई है
0: जी,
1: मेरे बच्चों की जिंदगी बनाई है, मुझे समाज में सम्मान दिया
0: जी।
1: आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी मैं श्रेय दूंगा, इन दोनों ने, तो ये तो एक कर्ज है
0: जी।
1: और समय समय पर ईश्वर हमें इतना स्वस्थ रखे कि हम इस कर्ज को किश्तों में ही चाहे चुकाते रहे
0: जी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने याद किया, और अपने श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। तो अब मुझे यानी नीलम अलकानिया को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे

0: से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश सोलस आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में, जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा।

0: था और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
1: बिल्कुल
0: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
1: जी
0: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ।
1: जी
0: और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन
1: जी
0: जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
1: बिल्कुल
0: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और
0: इतना बड़ा
1: जी कि सब
0: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
1: जी,
0: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे आडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। BSF की बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी।
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जेन के पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके 2 साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा
0: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि PM का श्रीनगर से उसी दिन

0: वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
1: बिल्कुल,
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल,
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन अच्छा। किया था, और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था,
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली,
1: okay.
0: सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा, 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे, हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी,
1: अच्छा,
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी,
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है, एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फार्मर शायद, सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था,
1: अच्छा,
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है, और वो CCTV से हमको
1: देख रहा था
0: जिसका हमको इल्म नहीं था,
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
1: अच्छा।
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं,
1: अच्छा,
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक,
1: अच्छा,
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ okay. निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों,
1: अच्छा,
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया, उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा, 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं, और उसके बाद वो सेकंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती।

0: पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया?
0: हाथ का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर हम इसकी बात, जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: ओटी में पता लगा
1: जी,
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज़्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट के तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पे ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने
1: है
0: आपका दिल बचाया।
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया,
0: फेंट हो जाता है, और फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी जी,
1: बट मैं चल रहा था।

0: ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
1: जी,
0: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: नहीं हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
1: जी,
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
1: जी,
0: रहा था
1: जी।
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री, होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा। लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला, तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है।
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी,
0: इतनी बड़ी थी
1: कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेस,
1: बिल्कुल,
0: हॉट केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
0: नाइन ईयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज अन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारी मर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जे एन के असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा
0: आतंकवाद से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल,
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है।
0: मैं
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी देता हूँ क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल,
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल,
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला, देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है
1: जो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था। मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल।
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: जाता, मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल,
0: गाजीबाग के माध में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
1: मिलता नहीं।
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: So great words, because we still remember the bloodshed in Australia, the body being

0: वेरी रिसेंटली बाय द आईसी
1: जी
0: बाय द आईसी स्काडर्स, हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एन एन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
1: जी,
0: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी बैजो
0: बच्चन,
1: हाँ अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
1: वो आपकी यादगार,
0: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल,
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
1: है। सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी।
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं। या तो
0: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
0: दो ही कैटेगरी होती है, मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर
0: सर
1: एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी,
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक के क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
1: बिल्कुल
0: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त
1: जी,
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।
1: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

तो सर, हम आगे और भी बात करेंगे। हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया। और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है, लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा। आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।

0: मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है। हो
1: जी
0: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
1: क्या
0: उस
1: बात
0: फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक
1: अच्छा
0: डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का। तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला मैसेज आया
1: सौभाग्य
0: था वो
1: जी
0: चिट्ठी के
1: मैसेज।
0: जरिए आया था।
1: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर
0: मैं
1: थे।
0: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया।
1: जी
0: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद। वो
1: ओके
0: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, एक बिकम फादर। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप
1: बिल्कुल
0: फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है।
1: पहले
0: तो
1: है
0: हो के
1: बिल्कुल
0: मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें तो।
1: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं।

0: और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई, जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी। जी।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था।
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और 1 साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पे बैठ के सुनाते
0: अच्छा।
1: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाई हो ये तो तब था ही नहीं। ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाई हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं, कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है।
0: ठीक है।
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
0: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा।

0: गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं। और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
1: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
0: जी।
1: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
0: जी।
1: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
0: जी।
1: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
0: जी।
1: सरकारी
0: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा
1: ये 9 वर्ष NIA में,
0: अच्छा
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
0: अच्छा
1: मेरे दिल से लगा हुआ है,
0: बिल्कुल।
1: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
0: अच्छा।
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
0: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से ग्रीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए। बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
0: जी।
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
0: जी।
1: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी,
0: बिल्कुल।
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी
0: okay.
1: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
0: जी।
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
0: जी, जी, जी।
1: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
0: जी। सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर, यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पूर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, पेटला, ललितपुर, सरगा, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये

0: संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
3: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
4: हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में हम आपको बता दें आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले जानकारी देते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 5:10 पर अपन गोट पर चर्चा का विषय होगा जिंदगी अनमोल है। संस्कृति के महक में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत संगीत में लोक वाद्यंत्र के प्रयोग, इस विषय पर जानकारी देंगे दानिश कुमार। साथ ही आप सुनेंगे माटी के गीत। लोक संगीत में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे गोरेलाल बर्मन और साथी, और रात 8:15 पर सुनिएगा सीमा कौशिक और साथियों को। किसानों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा बाजार की मांग अनुसार औषधीय पौधों के खेती। किसानवाणी के अंतर्गत शाम 7:30 पर आज की सलाह में डेयरी संयंत्र निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी, इस विषय पर आप सुनेंगे सहायक प्राध्यापक अंजोरा पशुधन उत्पाद विभाग के डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा से ली गई जानकारी। हिंदी गजल का सफर, इस रूपक का प्रसारण समय होगा आज रात 9:30 पर। लेखक श्री गिरजा पंकज और प्रस्तुति होगी डॉक्टर ब्रजेंद्र वैद्य की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग बसंत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। 10:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब आपको कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बता दें। कल रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर कार्यक्रम करंट अफेयर्स। दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का प्रसारण समय होगा कल सुबह 7:05 पर। इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल सुबह 8:30 पर सुनेंगे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे रमा शंकर। नवा अभियान कार्यक्रम में कल सुबह 9:00 सुनेंगे क्रिटिकल मिनरल मिशन पर छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक श्री यूके कुरैशी से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे नेमीचंद साहू। शुभांगी बागरदेव के गाय सुगम संगीत सुनेगा कल सुबह 9:40 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी सुनेंगे आप कल सुबह 10:00। और दोपहर 1:30 पर शास्त्रीय संगीत में पंडित शिव शर्मा का संतूर पर बजाया राग होगा झिंझौटी। प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम अनुराग धारा में आप सुनेंगे साहिर साबले के गाए मराठी गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 11:05 पर। सदाबहार नगमे का आनंद लीजिएगा कल सुबह 11:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 12:00। सुर सिंगार कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर। सांध्यकालीन सभा में प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा कल शाम 5:00। और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 5:10 पर आज कल में चर्चा का विषय होगा अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। साथियों का क्रम सेहत और चंदगीत अपनी पसंद के अंतर्गत। चौपाल कार्यक्रम में शाम 7:21 पर आज की बात में जल संरक्षण अपनावन भविष्य ला खुशहाल बनावन, इस विषय पर आप सुनेंगे चर्चा। इसके अलावा हेलो चौपाल में सुनेंगे खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां, इस विषय पर चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर के डॉक्टर मृत्युंजय सिंह से की गई बातचीत। संचालन सरिता साहू का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। उत्कल भारती कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल रात 10:00 और रात 10:30 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें का प्रसारण किया जाएगा। ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण

समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: जिंदगी अनमोल है, एला मत गवावा।
1: हर खुशी के पल्ला दिल ले अपनावा।
0: मुसीबत आते जिंदगी मा तो हिम्मत जना हारो।
1: मेहनत और विश्वास ले हर परेशानी के हल पावा। रेडियो के तीर मा बैठे जम्मू संगवारी मल्ला, आप मन के मयारू संगवारी थनेश्वरी बघेल
0: और वर्षा गोस्वामी के मया भरे
1: राम राम जय जोहार।
0: थनेश्वरी, काय सोच में डूबे हंसते हा? मैं जब ले आए हूँ देखा तो ते कोनो सोच विचार में डूबे हस।
1: हाँ वर्षा, काय ना सांझ हो गया हवे और चाय के खुशबू में डूबे हवा।
0: हाँ
1: तो बोला चाय की खुशबू नहीं आते का?
0: आवा थे ना, चाय के खुशबू तो बड़ सुघर आवा थे।
1: चाय नहीं पियो ना तो लागते वर्षा की का जरूरी चीज है छूट गए है। चाय बिना ना कहूँ मन ही नहीं लगे कतेक बेर। तो
0: अच्छा, तो ते हाँ चाय प्रेमी हवस।
1: हाँ संगवारी, देखना अभी चाय पिए नहीं हो तो मुड़ी है पिराए कस लागत है।
0: हाँ चाय है हमारे लिए औषधि से कम थोड़ी ना हवे। आधा समस्या ले तो चाय ले ही खत्म हो जाते हैं।
1: सीतोन में चाय के जतका तारीफ करवे ना संवारी कमे छे, कुछ परेशानी हो तो चलना चाय पी ले थन, कहा टेंशन है एक तनाव मरान वह खत्म हो जावे।
0: हाँ
1: चाय है जादूगर ले कम न है वर्षा।
0: हाँ अब इसने हम चार जन बिठे थन तो अनजान मन भी चाय के जरिया दोस्त बन जाते है नहीं। वैसे चाय की बात तो ठीक है थनेश्वरी, तो ये बता ते हाँ अक्सर हम दूसरे ला पूछथन कि ते कैसे हंस करके, तो ते हाँ कभी खुद ला पूछे हंस कि ते कैसे हंस करके?
1: अब खुद ला कैसे पूछूं वर्षा, कुछ परेशानी होती तो भले घर के ला बता देता, फिर रोज खुद ला कैसे हंस मैं तो नहीं पूछूं भाई।
0: अच्छा तो ते हाँ अपन आप ला नहीं पूछस कि ते कैसे हंस करके, लेकिन हमन अक्सर दूसरे ला पूछथन कि ते कैसे हस, का काम बूता चलत है, फिर हमन खुद ला नहीं पूछन। लेकिन थनेश्वरी पता है हमला खुद ला भी ये चीज ला ना पूछना चाहिए कि मैं कैसे हूँ, मोला का करना है, सब बढ़िया चलत है ना, मोला सुघर काम करना है, ये सब प्रश्न हमला अपन आप ले भी पूछना चाहिए।
1: बिल्कुल वर्षा, सकारात्मक विचार के संग रोज खुद के बर एक ठन समय निकाल के अपन आप ला ये सवाल करना चाहिए। एखर ले काहे मन में आए प्रश्न के उत्तर घलो मिल जाते और मन घलो खुश रह जाते और अपन आप के बारे में घलो जाने लगे जाते।
0: हाँ।
1: वैसे भी हमन हा बड़ भाग्यवान हरन कि जो मनखे जिंदगी मिले हवे।
0: सिरतुन में मनखे जिंदगी भगवान के अनमोल उपहार हवे और एकर सकारात्मक उपयोग कर हमला उपहार के सम्मान करना चाहिए।
1: हंसी खुशी मिलजुल के रहना चाहिए, सबके दुख सुख और में सांग देना चाहिए, ये जिंदगी बहुत अनमोल है। इला नकारात्मक और परेशानी मतलब ज्यादा सोचे में झन गवाना चाहिए।
0: कैसे देखबे छोटे छोटे लड़का मन हा हर छोटे छोटे चीज में खुशी हो जाए खुश हो जाते, लेकिन हमन अक्सर छोटे छोटे परेशानी ले परेशान हो जाथन और हंसना बोलना छोड़ के खाली दुखी रहथन और घर की घलो एक माहौल खराब ला करथन।
1: हाँ पोट गुट के इस वर्षा, समस्या असन समस्या नहीं रहे और तनाव हा पहाड़ बरोबर ले लेथन।
0: अब सुख और दुख तो धूप और छांव बराबर हवे, तो जिसे धूप और झाव आवत जावत रहते वैसे सुख और दुख तो हमला ये सब चीज लेना शांति ले मतलब हल निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल ध्यान देना चाहिए भाई हमला, काबा की सुख दुख परेशानी है तो जिंदगी में आते जावत रहते
0: हाँ।
1: है नहीं, समय समय के बात है पलट जाते भाई, कोनो भी परेशानी हमारे जिंदगी ले बड़े थोड़ी ना होते जो हमार खाली बैठे बैठे सोच सोच के हमन जिंदगी ला खराब कर डरथन।
0: सिरतुन में आजकल कोई समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचे बल्कि वह समस्या भागते और भागना समाधान नहीं है बल्कि यह और गलती हवे।
1: बिल्कुल भागना कोनो हल नहीं है संगवारी हो, सामना समस्या के सामना करना और ओखर समाधान।

0: आन करके असली जीत ही होते।
1: लइका मन हा देखबे ऐसे चॉकलेट देबे त मन रोवात रही चुप हो जाते खुश हो जाते ओमन हा हर छोटे छोटे चीज में खुशी ढूंढते त ऐसने हमन ला भी करना चाहिए हमन ला वो काम करना चाहिए जेखर ले हमन ला खुशी मिले लेकिन ऐसे एखर मतलब ये नहीं है कि हमन ऐसे काम करन जेखर ले दूसर के नुकसान हो।
0: बिल्कुल भाई, संगवारी हो तनाव समस्या सबके जिंदगी में रही थे फिर जिंदगी में ये चीज ला आवाज जिंदगी में आवाज आवत रही थे फिर एला अपन ऊपर हावी झन होन देन एला अनदेखा करन ज्यादा महत्व झन देवन मेहनत और विश्वास ले हर परेशानी के हल हावे।
1: थनेश्वरी, जब मन में तनाव रहते ना तो लोगों से बात करना चाहिए एकल ले बहुत हल्का महसूस होते हैं।
0: शीतुन में वर्षा, वैसे तो तनाव लेना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, फिर आज के भाग दौड़ वाले भरे जिंदगी में तनाव हो ही जाते। ऐसे समय में अपन परिवार संग संगी संगवारी संग बैठ के गुठियाना चाहिए और समय मिले बेरा मिले तो 2 मिनट आपस में बैठ के बिल्कुल बात करना चाहिए।
1: मैं तो कहती हूँ खुद से भी बात करना चाहिए और अपन हौसला बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल भाई, और खुद के मित्र बनाओ संगवारी हो, स्वयं ले मया करो, ये जिंदगी अनमोल है, एकर सदुपयोग करो और खुश रहो।
1: समस्या हा खुद भाग जाए, जैसे हर अंधियारी रात के बाद सवेरा होते वैसे हर दुख के बाद सुख के बरसात घलो होते।
0: बिल्कुल होते भाई, हिम्मत और हौसला कम नहीं होना चाहिए, फिर बढ़े ले बड़े समस्या घलो कुछ नहीं।
1: हर दिन एक नवा शुरुआत है और हर सांस एक मौका हवा और जिंदगी सच में अनमोल है।
0: तो संगवारी हो, जिंदगी ला समझो, एकर ले मया करो और खुद स्वस्थ रहो और खुश रहो, मुस्कुरावत रहो।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहे ने सुघर माटी के गीत ला जेन अपन सुर में सजाय रहीन भगत साहू मन
1: आओ सुने बर चाहरीन हमने संगवारी मन भिलाई छत्तीसगढ़ ले मुकेश शर्मा सरिता गौरव गरिमा शर्मा मन जालौन उत्तर प्रदेश ले सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया पुरेना खपरी बलोदा बाजार ले केशव प्रसाद साहू अनिता अनुष्का उषा साहू मन लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी परमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन पुरेना शहीद नगर छुई खदान ले धर्मेंद्र जंघेल संतराम लोधी नागेश्वर साहू का लोधी मन कोटना पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी लीलेश्वरी रूपेश गरिमा नोनी छनिष्का दादू मन आमा खोडरा रेंगाखार ले देवी सिंह नेताम राजेंद्र चंद्रदीप कृष्णाबाई नेताम दक्षप्रिया गीता सरगम महामाया चित्ररेखा नेताम मन
0: संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मा सुघर सुघर पारंपरिक गीत संगीत घलो हावे और उही गीत संगीत में सुघर सुघर जो लोक वाद्य यंत्र मन के जो संयोग मेल हावे वो हा बड़ा सुघर लागथे ओकर जो प्रयोग है वो कोनो गीत में सुनबो त बड़ा मिठास आ जाथे त चलो भाई उही प्रयोग ला जानथन आज के क्रम संस्कृति के महक में दानिश साहूले
2: संगवारी हो मांदर की ये आवाज सुनतेच मन में ऐसा उत्साह जाग जाते जैसा गांव में मड़ई शुरू हो गए होए ऐसा लगते जैसे पूरा गांव गीत संगीत मा रंगा गए है कोनों में राउत नाचक के घुंघरू के छनछन मा लोगन झूमत है कोनों में सुवा गीत के मधुर आवाज गूंजत है और कोनों में बांसुरी के धुन सुन के मन एकदम शांत हो जाते जय जोहार संगवारी हो मोर नाव दानिश साहू है और आज मैं आप मन ला हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत संगीत और लोक वाद्य यंत्र के बारे में कुछ ऐसन बात बताना चाहता हूँ जिन सिर्फ सुने भर नहीं बल्कि महसूस करे भर घलो है संगवारी हो छत्तीसगढ़ के माटी में कुछ अलगेज बात है यहाँ के बोली माँ मिठास है यहाँ के रहन सहन माँ सादगी है और यहाँ के गीत संगीत माँ गाँव के जिंदगी बसते और एक बात ता आप मनला घलो देखे हो लगभग हर लोकगीत मा मांदर के थाप जरूर सुनाई देते मांदर के आवाज ऐसे लगते जैसे गांव के धड़कन गुंजत हुए अब जैसे कर्मा परब ला लेवाऊं कर्मा परब मुख्य रूप ले खेती किसानी और हरियाली

संग जुड़े पराबाए। एला प्रकृति और कर्म देवता के सम्मान मा मनाए जाते। बहुत कम लोग ए बात ला जानते कि कर्मा परब मा कर्म डार ला सुख समृद्धि और हरियाली के प्रतीक माने जाते। ए कारण गांव के युवा भैया मन जंगल ले कर्म डाला लाए के गांव मा स्थापित करते। एमा मुख्य रूप ले मांदर, टिमकी और झांझ बजाए जाते। संगवारी हो, कर्मा गीत सिर्फ नाचे गाए बर नहीं है। ऐसन मान्यता है कि कर्मा परब मनाए ले गांव मा सुख समृद्धि बने रही थे और खेत खार मा हरियाली बने रही थे। और जैसेच मांदर के थाप शुरू होते ना संगवारी हो, पूरा गांव के माहौल बदल जाते। संझा होतेच युवा भैया मन जुटे लगते। कोनो मांदर बजावत रही थे, कोनो टिमकी और धीरे धीरे पूरा माहौल नाच गाना मा डूब जाते। ऐसा उत्साह भरे कर्मा गीत गांव के माहौल ला आनंद ले भर देते। और संगवारी हो, जब कर्मा के माहौल धीरे धीरे शांत होते तब दूर से बांसुरी की आवाज़ सुनाई देते और उत्केच ले शुरू हो जाते।

टिमकी अउ झांझ बजाए जाथे। संगवारी हो, कर्मा गीत सिर्फ नाचे गाए बर नहीं है। ऐसन मान्यता है कि कर्मा परब मनाए ले गांव मा सुख समृद्धि बने रही थे अउ खेत खार मा हरियाली बने रही थे। अउ जैसेच मांदर के थाप शुरू होते ना संगवारी हो, पूरा गांव के माहौल बदल जाते। संझा होतेच युवा भैया मन जुटे लगते, कोनो मांदर बजावत रही थे, कोनो टिमकी, और धीरे धीरे पूरा माहौल नाच गाना में डूब जाते। ऐसा उत्साह भरे कर्मा गीत गांव के माहौल ला आनंद ले भर देते। और संगवारी हो, जब कर्मा के माहौल धीरे धीरे शांत होते तो दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई देते और उत्केच ले शुरू हो जाते ददरिया। ददरिया ला छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय लोकगीत माने जाते। एमा मुख्य रूप ले बांसुरी, मांदर और हारमोनियम बजाए जाते। बहुत कम लोगन ए बात ला जानते कि पहली ददरिया सिर्फ मंच में नहीं गाए, बल्कि गांव के लोग खेत खार मा काम करत करत और सांझा बेरा चौपाल मा बैठ के घलो ददरिया गुनगुनावत रहे। ददरिया मा जौन मिठास और अपन भावना रही थे ना संगवारी हो, ओहा सीधे मन ला छू जाते। पहली गांव के लोग मन काम करत करत घलो ददरिया गुनगुनावत रहे। ददरिया गीत मा मया, बिछो और मन के भावना झलकते। ददरिया के ए मधुर बोल सुन के मन एकदम शांत और खुश हो जाते। फिर संगवारी हो, धीरे धीरे समय आते दिवारी के। दिवारी आतिच गांव मा अलगे रौनक दिखे लगते। दूर ले घुंगरू के छन छन सुनाई देते, मांदर गूंजे लगते और लोग समझ जाते कि राउत नाचा निकल गए। संगवारी हो, राउत नाचा सिर्फ नाच गाना नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य मन ले एक आए। एला दिवारी तिहार के समय मनाए जाते। ऐसन मान्यता है कि राउत नाचा खुशी, समृद्धि और गांव के एकता के प्रतीक आए। कई जगह एक हलो माने जाते कि राउत नाचा भगवान श्री कृष्ण और गोधन के सेवा सम्मान संग जुड़ाए है। एक कारण दिवारी के बेरा राउत भैया मन गांव गांव घूम के नाचत गावत खुशियां बांटते। राउत नाचा मा घुंगरू के आवाज सबले खास माने जाते। जब एक संग सैकड़ों घुंगरू छनकते ना संगवारी हो, तब पूरा गांव गूंज उठते। एमा मुख्य रूप ले घुंगरू, मांदर, मोहरी और ढोलक बजाए जाते। राउत भैया मन रंग बिरंगा पहनावा पहन के, हाथ मा लाठी धर के और ताल से ताल मिला के नाचते। ओ दृश्य देख के छोटे ले बड़े तक सबो झूम उठते। ऐसन जोश भरे गीत और घुंगरू के आवाज गांव मा अलगेच उत्साह भर देते। और संगवारी हो, देवारी बीत जाते, फिर गांव मा एक अलगेच शांति और मिठास उतरते। संझा बेरा बहिनी बेटी मन गोल घेरा बना के बैठ जाते, बीच मा सुआ रखे जाते और धीरे धीरे मंजीरा, ढोलक और मांदर के सुर गूंजे लगते। संगवारी हो, सुआ गीत मा सुआ मतलब तोता के प्रतीक ला माने जाते। ए गीत मा मुख्य रूप ले बहिनी बेटी मन गाते। ऐसन मान्यता है कि सुआ खुशी, प्रेम और मेल जोल के प्रतीक आए। पहली जब धान के फसल कट जावत रहीस और घर घर नया धान भर जावत रहीस, त ओ खुशी ला मनाए बर सुआ गीत गाए जावत रहीस। एमा बहिनी बेटी मन अपन मन के सुख दुख, माया और भावना ला गीत मा गाते। कई लोग ए घलो मानते कि सुआ गीत गाए ले गांव मा सुख शांति और खुशहाली बने रही थे। ऐसन मधुर सुआ गीत सुन के गांव के माहौल मा अलगेच मिठास भर जाते। और संगवारी हो, एक दिन मैं अपन गांव के एक जन सियान बाबा ले पूछा, बाबा ए मांदर और लोकगीत के मन के महत्व आखिर अतका ज़्यादा काबर है? तो बाबा हल्का सा मुस्कुराइस और कहिस, बाबू आज तुमन मोबाइल में गाना सुनता हो, फिर पहली गांव के लोग गीत खुदे बनावत रहे, दिन भर खेत में काम करके थक जावत रहे, फिर संझा होतीच त चौपाल में जुट जावत रहे, कोन्हो मांदर बजावत रहीस, कोन्हो बांसुरी और धीरे धीरे पूरा गांव में खुशी ले भर जावत रहीस। फिर बाबा एक ठन बात और कहिस, मांदर के आवाज सिर्फ कान में नहीं गूंजे, यह सीधा मन में उतरते। और संगवारी हो, बाबा के ये बात आज घलो मोर मन में बस गए।
आज घलो मोला

0: आधे जब गांव में मड़ई लगे के खबर मिलत रहीस तब मेला जाए के उत्साह में रात भर नींद नहीं आवत रहे। नवा कपड़ा कैसे पहनबो, कौन संग जाबो, पहली झूला झूलबो कि जलेबी खाबो, यही सोचत सोचत बिहान हो जावत रहे। और जैसे च दूर ले मांदर के आवाज़ सुनाई देत रहीस मन अपन आप दौड़े बर तैयार हो जावत रहीस। पहली गांव में टीवी नहीं रहीस, मोबाइल नहीं रहीस, फिर लोगन संझा होतीस त चौपाल में जुट जावत रहे। कोनो मांदर बजावत रहीस, कोनो बांसुरी, और धीरे धीरे पूरा गांव में खुशी फैल जावत रहीस। आज सब्बो चीज बदलत जाते संगवारी हो, अब चौपाल के जगह मोबाइल आ गए है, लोकगीत के जगह डीजे के तेज आवाज आ गए है। फिर आज एक बात नहीं बदलीस, जब अचानक कोनो गांव में मांदर गूंजते तब मन आज घलो ओतकेच खुश हो जाते। संगवारी हो, मांदर के थाप सुनके ऐसन लगते जैसे धरती खुद नाचत होए, मोहरी की आवाज सुनके ऐसन लगते जैसे कोनो देव यात्रा उतरे हुए, और बांसुरी के धुन मन ला एकदम शांत कर देते। और सच कहो तो संगवारी हो, लोकवाद्य के आवाज सुनके ऐसन लगते जैसे पुरखा मन के चिन्हारी आज घलो जिंदा है। संगवारी हो, हमार लोकवाद्य यंत्र मन सिर्फ बाजा नहीं है, ए मन हमार संस्कृति के धड़कन आए। आजकल के लइका मन अंग्रेजी गाना तो जल्दी सीख लेते, फिर अपन लोकगीत मन ले दूर हो जाते। ए बात सोच के कहीं ना कहीं मन दुखी घलो हो जाते, काबर की जिन दिन गांव ले लोकगीत के आवाज कम हो जाही ओ दिन गांव कुछ सुनना सुनना लागी, तो का करे बर चाही। सबले पहली अपन संस्कृति ऊपर गर्व करे बर चाही, मड़ई मेला मा लोक कलाकार मन ला सम्मान दे बर चाही, घर के छोटे बच्चा मन ला लोकगीत सिखाए बर चाही, काबर की जैन संस्कृति अपन जड़ ला बचाए के रखते वही संस्कृति लंबा समय तक जिंदा रहते। अब संगवारी हो, अंत मा बस इतकेच बात कहूँ, मोबाइल के गाना बदल जाए फिर माटी के गीत कभू नहीं बदलाए। जिन गांव में आज घलो मांदर गूंज थे वो गांव आज घलो जिंदा है। धन्यवाद संगवारी, और सुनत रहो आपन मन भावन कार्यक्रम युवाणी। जय जोहार
1: संगवारी हो, अभी सुनत रहीन क्रम संस्कृति के महक में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत संगीत मा लोकवाद्य यंत्र के प्रयोग। दानिश साहूले।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: संगवारी हो, गोड़ बात तो कर बोझ, फिर चलो भाई एक ठन सुग्घर अकन गीत सुन लेथन।

0: चल डोंगरी जाबोगा संगवारी हो ये सुघर माटी के गीतला अपन सुरदेरी ने गजराज सिंह और साथी मनहा
1: और सुने पर चाहरी न मने संगवारी मनहा मनकी लोरमीले नारायण खांडे रजनी तुसार समीर रेखा दिवाकर मनहा शीतलानगर दुरुगले शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर मनहा पंडरियाले शिवा यादव राज चिंटू तरुण चौवाराम यादव कन्हैया निर्मला यादव मनहा सहा मालगीले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी मनहा अंबागढ़ चौकीले रिजवान खान आयसा सबीहा अनस रिहान मनहा डोंगरगांवले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिस्का तन्मय गजभिये मनहा पिपरियाले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मनहा
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं जब आए पूर्ण जांच करवाएं
3: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर
4: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026 विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in
0: वर्षा तहां आए हस तब ले चाय के बिकट गोट करत रहे हस
1: हाँ।
0: फिर ये नहीं कि चल एक कप धर के चल देता हूँ थनेश्वरी बराती नहीं के हस
1: वाह तो चाय है ठंडा नहीं हो जाती ले कार्यक्रम न होन दे ओका बाद टपरी जाबो
0: बिल्कुल भाई तो संगवारी घाम भरी गर्मी के दिन चला था वे और चाय अपन नत्ता ला बखूबी निभाते भाई चाहे गर्मी के दिन रहे बरसात रहे चाहे जड़काला रहे है नहीं सबो दिन अपन निभाते भाई अपन नत्ता ला तो संगवारी हो वो हरे एक चाय और संगी हो आज हरे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और इला हर बच्चर 21 मई के मनाए जाते इला मनाए के मुख्य उद्देश्य ये हावे कि सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के जश्न मनाए बर और एक हर सतत उत्पादन ला बढ़ावा दे बर मनाए जाते संगी हो पहाते भार आँखी खुलते ही हमर ध्यान जाते चूल्हामा और चाय के संग हमर बिहान होते बिहनिया के काम बूता संग चिड़ई चिरगुन गाय गरु के कोल्हार संग बिहान होते चाय हमर जिंदगी में जिंदगी ले अलग नहीं है संगवारी हो जैसे हम मनखे मन में कई ठन गुण होते उही प्रकार ले अगर हम खाली बर्तन में पानी भर के धीमे धीमे आँच में पकोथन ना तो हमर दिन के बदलाव के शुरू होए के बिरा हो जाते जिंदगी जब आगू बढ़ते तो कड़वाहट के अनुभव के जरूरत घलो पर थे जैसे कि

0: एक चम्मच चाय के पत्ती के, जेखर ले ओकर नाव बनथे। अपन रंग रूप संग अपन स्वाद ला बनाए म लगे रथे। कुन कुन आँच में उबलत उबलत जीवन में मिठास के बेरा घलवाही जाथे। जैसे कि अब बेरा है चम्मच भर शक्कर डाले के।
1: वाह, चाय के ममहासी तो बढ़िया आते। अब बस मन करत है स्वाद लेके। थोकिन धीरज धरो, अब ये चाय माँ कुछ तो कमी है। वो है एक चटक से रस और हल्का से सुगर ममहासी ले भरे स्वाद अदरक इलायची के।
0: बिल्कुल,
1: जिन अपन भीतर के गुण के रसाला जम्मो के हृदय में आनंद भरे रस घोर देते। हाँ, तो अब थोड़किन धीरज और राखेल पढ़ी थी थानेश्वरी। काबर की अब तो जीवन के रद्दा चुने के बेरा आगे है।
0: वो कैसे?
1: जैसे जिंदगी में एक बखत एक पड़ाव के बाद हमला दू रास्ता दिखते।
0: हाँ।
1: फिर दोनों में कोनो एक रद्दा ला धरेल पड़ते।
0: हाँ।
1: जे हमर भविष्य के रद्दा गढ़ते।
0: बिल्कुल, का समझे भाई संगी हो, कुछ समझ आते नहीं ना? कुछ तो समझ आत हो ही। फिर चाय ओखरे ही बात करत हूँ भाई। अब बतावा भाई कि दूध चाय पीना है कि करिया चाय में संतुष्टि है? अब समझ आईस ना कि मैं हाँ का कहा था? समझ तो आ ही। काबर की सबके चाय पिए के बेरा जोन हो गए हावे। कैसे? चाह के दिन बादर और बेरा थोड़े होते संगवारी हो। अब संझा हो या बिहान, सबो के एक ही जुबान रहे थे, हाथ में बस एक कप चाय बस हो जाए इसे कि उही संध्या हो या बिहान, मंझनिया हो या घाम, चाह के एक घूट के चटकारा अंतसला सुकून दे जाते। स्वाद के ये घूठा एक घूठा एहसास के एक सुरता देवाते अमटहा औ मिठास के। मया पीड़ित के बानी संग में संगी संगवारी मन के कहानी औ एक कप चाय पुरो जाते औ संगवारी बड़ा सुकून मिलते।
1: बस एक जगह दू चार मनखे और चाय हो गए ता आनी बानी की गोठा सुरता आते।
0: बिल्कुल,
1: और कभू कभू तो चाय एक बहाना हो जाते एक दूसर संगोठी आए के मिलाप के।
0: बिल्कुल भाई, सही कहा था। दिन भर के थकान ला जुड़े बर चाह ले भरे कप देखते ही आधा अंत से जुड़ा आ जाते। कैसे? मन मार जाते एकर एक सौंद भर ले। हाँ हाँ भाई, बड़ ताकत है हमर चाय माँ, जी हाँ, सब झनला अपन मोहनी माँ मोह डार थे। अपन रंग रूप संग स्वाद ले एक कप चाय माँ जम्मो गोठला करवा देते। एक कप ले शुरू होते गोठ और बने बने बन के सिरा घलो जाने जाते। चाह हमर जिंदगी माँ चारों पहर आठों काल बारो माह सुख दुख सबो जगह सदा दिन संग देते। चलो यही गोठ सन सुन ये सुघर गीत।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहे ये सुघर माटी गीत जेन अपन सुर में पिरोए रही ने पुष्पलता ने ताम औ साथी मन हा
1: औ सुने बर चाहरीन हमारे संगवारी मन हा मेघापारा चिल्फीले शुभम पटेल दिव्या दीपांजलि दीपक संतोषी रामकुशल दीपांशु पटेल मन हा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ले अखिलेश कुमार यादव ज्योति अंकित श्रद्धा सौरभ यादव मन हा बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ ले बलौदा छत्तीसगढ़ ले दिलहरन गौतम अंजलि आनंद समृद्धि पटेल मन हा अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयसा सबिहा अनस रेहान खान मन हा कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीना विनय शंकर नयन पांडे मन हा पलारी ले नितेश कुमार लखनलाल सावित्री बाई ईशान तनुजा देवांगन मन हा पीपलोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश वर्मा कोटनापानी डोंगरगढ़ ले खिलावन मंडावी परमेश्वर प्रणय ईशांत मन हा
0: वर्षा हमन गांव की जिंदगी ला देखथन त कभू कभू हमला ऐसे लागथे कि बड़ा कठिन है सुविधा के अभाव रहते मेहनत के रहते बहुत मेहनत लगते हर चीज जिनिस मा ऐसे करके फिर जिनिस मन हाँ मेहनत तो लगते फिर हमला वो काम करे में सुकून घला मिलते और हमला ओकर परिणाम भी बहुत बढ़िया मिलते जैसे आघू तो लकड़ी कम मिले लकड़ी फाटा तो मिल जाए जंगल में फिर जाए ला बहुत दूरिया पड़े और वो टाइम में काहे गैस के भी सुविधा ज्यादा नहीं रही से तो गाँव में का हुए कि पानी कांजी के भी वो टाइम में ज्यादा नहीं रही से सुविधा तो गांव के मन हा कैसे करे नदिया मा जावे नदिया तरिया सूख जाए गर्मी के दिन मा नदिया मा जावे और एक झीरिया हुए जे मा बढ़िया सुघर को ठंडा पानी जे ते बड़ा सुकून देवे पिए मा ता ओखर उपयोग मन हा करे और आजो घला कोनो कोनो सुविधा तो आज आ गए हुए ओखर बावजूद भी मनखे मन हा बहुत झन मन हा उपयोग करते एकर

0: संगवारी हो अभी सुनत रहेन सुघर माटी के गीत जेन ल अपन सुर दे रहीन राम शरण वैष्णव औ साथी मन हा
1: औ सुने पछरीन हमने संगवारी मन हा दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन हा छतवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका पंकज सिंह सूर्यवंशी मन हा डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा आरती प्रभा देवी तामुरिया मनहा कोयलारी ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेंद्र साहिल चंद्राकर मनहा बोटसरा नैला ले प्रमुख

0: कुमार साहू, बीमा वैभवी, विभूति साहू मन्हा, सोंगा मगर लोडले, फनेस कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र हेयांस, कुमार चंदन मन्हा।
1: तो वर्षा तय कहत रहे कि गर्मी के दिन के भारी सुरता करत रहे कि नानी घर जावत रहे हाँ, भारी हाँ, मजा आत रही, तब बता भाई।
0: हाँ पहली हमन हा कैसे स्कूल के छुट्टी हुआ है गर्मी के, फिर हमन ही सोचन कि जल्दी जल्दी परीक्षा होती त नानी घर जाबो और भाई बहनी मन संग खेलबो,
1: भारी अगोरा करन ना,
0: बढ़िया पैरम खेलबो कूदबो और तरियम नहाबो और खेत में जाके आमा टोरबो।
1: आमा टोरबो ओही चला महु कातरे वर्षा अमल कैसे सुरता नहीं कर।
0: फिर आजकल के लइका मन है सब नहीं जाने थानेश्वरी,
1: बिल्कुल नहीं जाने कावे कि आजकल सोशल मीडिया के घरों कहीं ना कहीं प्रभाव आवे और ते औ अभी के बाढ़त गर्मी गर्मी और घाम के कारण अब वो सब जो हमन ननपन में जिए हैं वो सब कम देखे ला मिलते, जैसे तरिया में भरे गर्मी घाम के बेरा जान तरिया में छलांग मारन बढ़िया खेलन कूदन और आमा लटोर के लानन घर में।
0: अब ते लइका मन पूछबे बाटी काला कही थे तो मन नहीं जानी,
1: नहीं जानी,
0: फिर हमन बाटी भौरा सब मन हम बिल्लस पिठूल ये सब खेलन
1: बिल्कुल खेले हैं। तो चलो भाई अब सुरता के गठरी ला लमावत लमावत सुन लेथन ये सुघर माटी के गीतला।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहें ये सुगर गीत जिला पंसूर दरिन कविता हिरकने औ साथी मन हा
1: औ सुने बचारिन हमरे संगवारी मन हा खलारी भीम कोजले जीएल साहू सरोज छोटी पिंकी हा
0: ता वर्षा जाए के बेरा तो हो गए
1: हाँ।
0: हमर गीत घलो कह दीस कि जाए के बेरा हो गए भाई
1: हाँ।
0: ता जाए ला तो पड़ी फिर जाए के पहली जान लेथन काली के कार्यक्रम ला संगवारी हो काली के कार्यक्रम युवानी सची हिंदी में जे में आप मन सुनो अपनी सेहत और अपनी पसंद और यही गोट बात संग आज के कार्यक्रम कैसे लागिस चिट्ठी पाती के माध्यम ले जरूर बताओ और अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
1: और वर्षा गोस्वामी ला देवा विदा
0: नमस्कार।

युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओहो यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात। इन

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके पर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है और आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। इस समिति अशासकीय स्कूल में फीस बढ़ोतरी और पुस्तक गणवेश खरीदी के शिकायत मन के निगरानी करही। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू जिला कलेक्टर मन ला चिट्ठी जारी करे है। जारी आदेश में कहे गए है कि शासन के संज्ञान में ये बात आए है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूल मन को तिले अभिभावक मन ला पुस्तक गणवेश और दूसर जिनीस एक ही फर्म ले खरीदे बर बाध्य करे जाते। फर्म के अप्रत्याशित कीमत के सेती अभिभावक मन ऊपर वित्तीय बोझा बढ़त है। उमन के शिकायत के तुरते निराकरण पर जिला और विकासखंड स्तर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे गए है। केंद्र सरकार कहे है कि उपभोक्ता पेशेवर और सौंदर्य बोध क्लिनिक डहरले कोनो भी कॉस्मेटिक उत्पाद के प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करे के अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन कहे है कि कॉस्मेटिक के प्रयोग केवल मानव शरीर में लगाए छिड़के और स्प्रे करे बर होना चाहिए। ये उत्पाद में प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग भ्रामक दावा इलाज बर कॉस्मेटिक के इस्तेमाल और इंजेक्शन ले कॉस्मेटिक के प्रयोग अधिनियम और नियम के उल्लंघन माने जाही। प्रदेश में चलत सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया शुभारंभ करें। ये मशीन करीबन 4.5 करोड़ रुपया के लागत ले स्थापित करे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री हकीन कि नवा सिटी स्कैन मशीन के शुरू हुए ले तीर तखार के मरीज मनला इलाज के बने सुविधा मिल पाही। एकर पहली मुख्यमंत्री है अपन सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर में तेंदुपत्ता संग्राहक मन ले गोट बात करें। ओमन तेंदुपत्ता संग्रहण काम के जायजा लेवत संग्राहक मन के समस्या और ओमन के आजीविका ले जुड़े बुनियादी सुविधा के जानकारी लें। श्री साय हकीन के वनोपज संग्रहण करैया वाला मन के जीवन में समृद्धि लाना सरकार के प्राथमिकता है। रामानुजनगर क्षेत्र के वनोपज सहकारी समिति डहरले ए साल निर्धारित लक्ष्य ले ज्यादा मात्रा में तेंदुपत्ता संग्रहण करे जा चुके हैं। बता दें कि ए साल राज्य सरकार है तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा तय करे है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते। ए दिवस ल मनाए के उद्देश्य युवा मन ल आतंकवाद और हिंसा के प्रवृत्ति ले दूर करना है। ए मौका में आने आने शासकीय और अशासकीय संस्था मन में आतंकवाद विरोधी शपथ घलो दिलाए गिस। आजे के दिन बछर 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमला के शिकार हुए रहिन। भारतीय सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है। आने आने श्रेणी पर निर्धारित ए ऑनलाइन परीक्षा अवैया 1 जून ले 5 जून तक और एकर बाद 8 जून ले 12 जून तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहर भिलाई दुर्ग रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर में एकर बर कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिहां हरेक दिन परीक्षा के आयोजन 3 ले 4 शिफ्ट में करे जाही। जम्मू पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत हैं। धमतरी जिला के युवा मनला रोजगार के मौका उपलब्ध कराए बर जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करे गए है। एकर तहत जिला के बेरोजगार युवा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक मन के संग्रह कुशल और अर्धकुशल श्रमिक मनला देश के आने आने राज्य में रोजगार के मौका दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुन

0: आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कुती। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले काली 22 मई के रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। ए कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में संझा 6:30 बजे ले आयोजित करे जाही। दू सत्र में होवैया ए कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उप शास्त्रीय प्रस्तुति हुई। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश कर ही उन्हें श्वेता शिवाले डहाले उप शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति दे जाही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर है बताइन कि आकाशवाणी है लोक प्रसारण के रूप में पाछू 90 बछर में उल्लेखनीय काम करे है। इस दौरान आकाशवाणी है सूचना शिक्षा समाचार मनोरंजन के माध्यम ले अपन ध्येयवाक के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के परिकल्पना न साकार करे के काम करे है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर है घलो स्थानीय संस्कृति लोक कला शिक्षा समाचार और मनोरंजन ल गांव गांव तक पहुंचाए में अहम भूमिका निभाए है। राज्य सरकार है कहे है कि मछली पालन ल प्रदेश में कृषि के दर्जा दे जाए ले एक लागत में लगभग 10% के कमी आए है। एखले मछली पालक मन ल बने आर्थिक फायदा घलो मिलत है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक में राखे गए चिंतन शिविर ल संबोधित करन मछली पालन मंत्री रामेचा ने ताम हकीन कि प्रदेश के किसान मन पर मछली पालन अब ओमन के समृद्धि के साधन बन गए है। ओमन कहिन कि मछली पालक मन के आमदनी बढ़ाए बर आने आने वैज्ञानिक तरीका अपनाए जाते। इही कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए है। श्री नेताम कहिन के बछर 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन ला 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। बता दन कि मछली उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ देश में 6वां स्थान में है। यहाँ सालाना 9.5 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा मात्रा में मछली के उत्पादन होवत है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC है ए पछर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पर भुवनेश्वर कानपुर और मेरठ में 3 ठन नवा परीक्षा केंद्र शुरू करे है। एकरे संग अब केंद्र के कुल संख्या 83 हो गए है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवार मन ए नवा केंद्र पर आवेदन करे है। आयोग के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार है कहे है कि एकर उद्देश्य केंद्र में भीड़ ल कम करना और परीक्षा प्रक्रिया ल अनुकूल सुलभ और कुशल बनाना है। ए बछर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई के रखे जाही। परीक्षा पर कुल 8,19,000 ले ज्यादा आवेदन मिले है। इही बीच रायपुर में UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिला के 22 केंद्र में 2 पाली में होगी। पहली पाली बिहनिया 9:30 बजे ले 11:30 बजे तक और दूसर पाली मझनिया 2:30 बजे ले संझा 4:30 बजे तक संचालित होगी। अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है आज नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में जम्मू टेंडर प्रक्रिया ल पारदर्शिता के संग पूरा करे बर कहिन। केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर अवैया 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए है। एकर बर 5 ले 18 बछर के भारतीय नागरिक पात्र हुई। भिलाई पुलिस है नौकरी दिलाए के नाव में करीबन 7.5 लाख रुपया के ठगी के आरोपी ल गिरफ्तार करे है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंचा सीलिंग ले गिरे के सेती एक मजदूर के मौत हो गए। पुलिस हा मामला के जांच शुरू कर दे है। जांजगीर चांपा जिला के अर्जुनी गांव में तरिया में डूबे ले 8 और 9 साल के 2 सगे बहनी की मौत हो गए। जांजगीर चांपा जिला के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर पाछू संझा तेज रफ्तार 4-चक्का गाड़ी के अनियंत्रित होके पलटे ले 1 छात्र समेत 2 मनखे के मौत हो गए। उन्हें 1 जन दूसरा छात्र घायल हो गए। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काली 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप रखे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हा निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना हा ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित करते है। और आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्।

0: प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौंदर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौंदर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मंत्रिमंडले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मंत्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायं अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः 26,000+ अस्य उपक्रमस्य प्रगतये आईमेक मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारतदेशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक सम्पर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथिमार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति, अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय सेचनाय प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबंधित तत्वानां उपयोगः नामपत्रे भ्रामकोक्तिः संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषज माध्यमेन एतेषाम् अनुप्रयोगः औषध तथा प्रसाधन अधिनियमन नियमानां गंभीरं उल्लंघनं मन्यते, यस्य कृते दण्ड

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लीजिए अब सुनिए गोरेलाल बर्मन और साथियों का गाया लोक संगीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी।

एक के जगह औ तो औ अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर और सरायपाली केंद्र से। अब पेश है रतन सबिया और गोरेलाल बर्मन के स्वर में लोक संगीत।

0: आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे गोरेलाल बर्मन और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो
6: सुधीर?

0: मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभास कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की जांच करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा अभिभावकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से अभिभावकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जाँच समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुज नगर में तेंदुपत्ता संग्राहकों से बातचीत की। रामानुज नगर पटना में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने रामानुज नगर में मिनी स्टेडियम और पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत वे 10 जून तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे।
8: सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है, बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे और गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारा

0: योजना कहां तक गांव में पहुंच पा रही।
1: राज्य सरकार ने कहा है कि मछली पालन को प्रदेश में कृषि का दर्जा दिए जाने से इसकी लागत में लगभग 10% की कमी आई है। इससे मछली पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मछली पालन अब उनकी समृद्धि का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए हैं। श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन को 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये का विदेशी राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण और पीएम जनमन कार्यक्रम तथा पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और निगरानी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही अब केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच रायपुर में यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिले के 22 केंद्रों में 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा में 8,449 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर करना है। इस मौके पर विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं में आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलाई गई। आज ही के दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में सोरोसो संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उप शास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उप शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आगामी 1 से 5 जून तक और इसके बाद 8 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर दिन 3 से 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ

साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिनमें रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 5 से 18 वर्ष के भारतीय नागरिक पात्र होंगे। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले होते हैं। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम सहित राज्य के 14 जिलों के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चल सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धमतरी जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जिले के बेरोजगार युवाओं, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा डिप्लोमा धारकों के साथ ही कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन युवाओं को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। बेमित्रा में पिछले 15 दिनों से चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। इस दौरान शिविरों के माध्यम से करीब 6000 किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। रायपुर रेल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 19 से 22 मई तक स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। भिलाई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 7.5 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंची सीलिंग से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अर्जुनी गांव में तालाब में डूबने से 8 और 9 वर्ष की 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इसी जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार 4-पहिया वाहन के नियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत. लीजिए आप सुनिए रा वन फिल्म का गीत नंदिनी श्रीकर और विशाल डडलानी के स्वर में. गीतकार हैं पंछी जालनवी और धुन तैयार की है विशाल शेखर ने.

ये जवानी है दीवानी। पेश है इस फिल्म का गीत रेखा भारद्वाज और तोची रैना के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

पेश है वो लम्हे फिल्म का गीत, ग्लेन जॉन के स्वर में। शहीद कादरी का लिखा गीत है और प्रीतम का संगीत है।

वो लम्हे फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राजेश भैया राम राम।
1: राम राम मोनिका उ चौपाल सुनैया सबो संगवारी मल्ला हमर दोनों जन के
0: राम राम।
1: मोनिका गर्मी हाँ बिकट बाढ़ गए है नी
0: हाँ।
1: और कोनो कोनो दिन सांझ कन हवा गरेर संग पानी घलो गिर जाते और बिहान दिन तहन भारी दन मारते
0: हाँ।
1: और घर ले बाहर झन निकल तेसन ढंग के हो जाते अब गर्मी है पानी बादर जाड़ ये सबो हमार प्रकृति के अंग आए और ये ला हम सबो ला झेले सहेला पड़ते
0: भैया। अब चाहे गर्मी हो पानी बादर के दिन हुआ है फिर जाड़ा हुआ है हमर किसान संगवारी मन अपन खेती किसानी के बुता मान लगे रहे थे और आनी बानी के जिनिस उपजाते अभी किसान भाई मन अवैया खरीफ फसल के तैयारी में लगे हैं जैसे काका फसल के खेती करना है बीजहा गर्मी के बेरा मा जुताई जैसन बुता मा हमर किसान संगवारी मन लगे हैं। मैं कोनो भी फसल के बने तैयारी करथन सबो बात के ध्यान रखथन तो हमला उत्पादन घलो बने मिलते।
1: सही कहे मोनिका और खेती किसानी में अच्छा उत्पादन कैसे मिले ये बात के सबो किसान भाई मन ध्यान रखते और उसने जांगर तोड़ कमाते घलो
0: हाँ।
1: फिर एक बात के और ध्यान रखना चाहिए
0: का बात के
1: तो वो बात हरे बाजार में कौन कौन जिनिस के ज्यादा मांग है ये बात के ध्यान रखन और कहूँ बाजार के मांग अनुसार फसल के उत्पादन करथन तो हमला ज्यादा आमदनी मिलती
0: है। इसने बाजार के मांग की बात करे तो भाई तो औषधि पौधा मन के खेती करके हमारे किसान संगवारी मन बने लाभ ले सकते है। औषधि पौधा की खेती हमारे किसान मन पर बहुत लाभ के होते काबर की देख औषधि पौधा मन में खर्चा घलो कम लागते पानी कम लागते और जैसे दूसरिया पौधा मन में चरिक समस्या आती है ना तो ये मां कम होते और एक देख रेख पर मेहनत घलो कम लगते।
1: और मोनिका बाजार में ज्यादा मांग वाले औषधि पौधा के बात करें तो इमा है तुलसी है अश्वगंधा सतावर एलोवेरा जैसन पौधा शामिल है और तुलसी के उपयोग ला हर्बल चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया दवाई और कॉस्मेटिक माने सौंदर्य प्रसाधन जीनिस बनाए में उपयोग करे जाते हैं।
0: और इसने है राजेश भाई अश्वगंधा के उपयोग तनाव थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए दवाई बनाए खातिर करे जाते जिला हमारे इम्यूनिटी सिस्टम घलो कई थन ओला बूस्ट करे खातिर दवाई बनाते है ना। औषधि पौधा में अश्वगंधा के अलग ही पहचान है। एलोवेरा के उपयोग सौंदर्य प्रसाधन त्वचा संबंधी जिन रोग होते हो घर उपचार और जिसे भी हाथ धोए बर सैनिटाइजर के बहुत बाजार में मांग रही से हो तो ओला बनाए बर घलो को उपयोग करते।
1: और मोनिका औषधि पौधा के खेती में रासायनिक खातों के बहुत ही कम उपयोग होते
0: हैं।
1: औषधि पौधा मन में देसी और जैविक खातू ओखर बर बढ़िया होते हैं। औषधि पौधा मन ला कोनो भी सामान्य माटी में उपजा सकता है माने के ओखर खेती कर सका था कन्हार माटी है तब कहीं माटी तो किसान सागर में सोचते कि मैं होई कि नहीं होई तब कोनो भी सामान्य माटी में ओखर खेती कर जा सकता है। और खरीफ के मौसम में तुलसी अश्वगंधा और एलोवेरा की खेती है बहुत ही लाभ के होते अब खरीफ के तो दिन बाद आते हैं नहीं तो संगवारी मन कर खेती कर सकते।
0: सही बात कहा था तो ये बात के ध्यान हमारे सरकार है घलोक रखते तभी तो छत्तीसगढ़ सरकार है औषधि पौधा और सुगंधित पौधा के खेती पर इला बढ़ावा दे खातिर विशेष कार्यक्रम घलोक चलावा थे तेखर लाभ किसान भाई मन ले सकते भाई जेन किसान संगवारी मन पहली लेखर खेती करते औषधि पौधा सुगंधित पौधा तो वो मन एखर लाभ ले सकते और हमारे जेन संगवारी मन है एखर पौधा मन के उत्पादन शुरू करना चाहते वो मन हमारे जूना किसान संगवारी मन ले अनुभव के लाभ ले सकते।
1: मोनिका का है धान के बाद धाने रे हमन खेती करा था है ना तो ओखर ले माटी के उपजाऊ क्षमता कम होते और जत के मुनाफा मिलते लगभग उतके मुनाफा मिलते और मन बदल बदल के कोनो फसल

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: मोनिका, शुरू हमन सोकन गोठिया हन पर्यावरण के,
4: है नहीं?
3: और बाढ़त गर्मी के हम सबों के स्वास्थ्य माँ और यहाँ तक के पशु पक्षी हो गए जिनावर मन के और जिंदगी माँ भारी प्रभाव देखे बर मिलत है। और मंझनिया आगी का रगरग रगरग घाम भी थे और पूरा देश भर में ये गर्मी के असर देखे बर मिलत है।
4: बाढ़त मनखे मन की जनसंख्या है तो कहा होते ना कि अब मनखे मन बाढ़त है, ओखर मन की जरूरत घलक बाढ़त है, तो ओखर मन की जिन जिनिस के उपयोग है ओखर कारण देख भाई उद्योग जन की था ना औद्योगिकीकरण मैंने छोटे ले लेके बड़े बड़े उद्योग हर जगह देखा मिल जाती तो एक लेना जिन धरती भूमि के तापमान है वो बढ़त है, वहाँ बढ़ोतरी हुआ थे और ये तापमान दिनों दिनों बढ़ी भाई। एक सबले ज्यादा जिन अभी मैं कहूँ औद्योगिकीकरण ये तो कारण हावे छावे, दूसरिया कारण ये है जिन पेड़ पौधा चिड़ई चिरुवन ये जिन प्रकृति के वरदान है ये खर हमन अंधाधुन मतलब पेड़ पौधा मन के कटाई करतन एखर देख रेख कम करतन तो एकरो असर हमारे हर पर्यावरण पर पड़ते
3: हैं। और ये सब ला दुरिहाय बर देखन तो रुख राई लगाना है ये है बढ़िया अच्छा एकर उपाय है नहीं? और रुख राई लगाए ले ओखर बढ़त ले जतन करन और भाटा हो गए गाँव भाटा तरिया पार है नदिया कछार है माने जहाँ जगह मिले वहाँ मल्ला रुख राई जरूर लगाना चाहिए ओखर बढ़िया जतन करन तभी गर्मी जे ओखर से मन राहत मिली और अभी पीढ़ी घलो मन गर्मी ले थोकन पांच के
4: सिर तो उनका हाथ है जिन खेत के मेड़ है ना वहाँ घलो हमन फलदार पौधा इमरती रुखराई लगा सकथन एखर ले हमन आमदनी घलो कमा सकथन और पर्यावरण ला सुधराए में अपन सहयोग दे सकथन और पेड़ के घलो बढ़िया उपयोग कर सकथन।
3: और देखथन मेड़ में ना जैसे खम्हार हो गए है नी बमरी हो गए तो पहले तो कौहा उहा अभी भी कतको गांव लगे है और अंगवारी मन कहते छाए होते तो छाए जहनो तो उखर पर खम्हार है और आजकल छोटे साइज के जो पौधा थे है ना कम उम्र फल थे ओला भी लगा सका थे।
4: हाँ राजेश भाई मोर तो एक ठिन हमेशा निवेदन हमारे संगवारी मन ले ही रही थी कि देखो हमारे जिन लड़का मन है उमन ला हमन पेड़ पौधा के महत्ता ला समझान भाई देख हमारे सियान मन लगे इन पौधा आज वो पौधा अपने पेड़ बन गया हमन ला फल फलहारी देवा थे रंग रंग के फूल देवा थे तो ये जम्मो जिन फल फलहारी है साग भाजी कर स्वाद तो हमन लेवे कर थन स्वास्थ्य के लाभ घलोक लेतन तो जिन आज के लड़का है और खास करके जैसे ककरो जन्मदिन है ना तो वो लड़का ले एक ठिन पौधा जरूर लगवाना चाहिए भाई ओला ओखर देख रेख बर सिखाना चाहिए तो एखर ले कहा है ना कि एक पौधा से ओखर जिन लगा हो ही तो वो दूसरिया पौधा मन ऊपर घलोक देखा
3: दूसरा और मोनिका रुख राई जैसे लगाता ना तब वह गर्मी नियंत्रित करते और बढ़िया पानी गिरते चिड़ी चुनगुर मन ला रहे के जगह मिलते और मन खोंदरा बनाते बढ़िया रहते और जनसंख्या बढ़ते
4: भाई। अब यही बात तो मैं बोलियो ना कि देखिए सबे बार लाभ के हम मल्ला तो रिकिम रिकिम के फल फलहारी खाए बर मिलते है ना।
3: और बेरा हो गए किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: थन अब आपो मन ला सुनवा थन।
1: मैं मुकेश चौधरी गांव नवापाली भरम केला तहसील सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निवासी हूँ। मैं हमारे खेती के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी इतकी अच्छा अच्छा प्रतिष्ठित काम करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो FAO के प्रतिष्ठित एग्रोकोला मेडल ले सम्मानित हुई है, यार हमारे कृषि के क्षेत्र में हम किसान मन पर बहुत ही अच्छा कारगर और किसान वाला नया रास्ता दिखा के काम कर ही ये प्रतिष्ठित ला हमारे प्रधानमंत्री जी दर्शाते हैं कि हमारे किसान मन पर वो कितना अग्रणीय है, काम करे बार उत्सुक है। हमला खुशी है कि हमारे देश के किसान और कृषि के विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास करते हैं। हमारे वैश्विक स्तर में जो हमारे प्रधानमंत्री जिला कृषि के क्षेत्र में किसान मन की ओर ले सम्मान मिले हैं, यार हमारे किसान भाई मन पर बहुत ही उपलब्धि के हमारे साधन है। हमारे किसान मन के प्रतिनिधित्व करत हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व में किसान मन पर इतकी अच्छा FAO के प्रतिष्ठित ला सम्मान से भारत ला कृषि के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिष्ठा ला दर्शात है। एक बार में माननीय प्रधानमंत्री जिला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता। हमारे किसान हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ में है, सहयोग की अपेक्षा रखता। धन्यवाद।
2: मैं श्री राम साहू ग्राम पोस्ट अमूदी थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का हूँ। आज पूरे किसान समुदाय के लिए यह गर्व का क्षण है, प्रधानमंत्री जी को मिला FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल का सम्मान। केवल उनकी नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों के परिश्रम और कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का भी सम्मान है। हम सभी किसान इस सम्मान पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। धन्यवाद।
3: मेरा नाम उमेंद्र दास मानिकपुरी है। मैं ग्राम उजभट्टी सीपत छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है, जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिला है। कृषि क्षेत्र में उनकी दूरदर्शी सोच और प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करना हम सभी किसानों के लिए गौरव का विषय है। हम उन्हें इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
4: नमस्ते, मैं योगेश कुमार जांगड़े ग्राम सिरवा बांधा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है। FAO द्वारा दिया गया यह एग्रीकोला मेडल उनके नेतृत्व और कृषि क्षेत्र के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। इसके लिए हम अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।
0: संगवारी हो, अभी सुनिन कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के उत्कृष्ट योगदान खातिर FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल ले सम्मानित देश और देश के माननीय प्रधानमंत्री ला हमारे किसान संगवारी मन जिन बधाई दे तिन ला। तो आप मन ला भी ये बात सुना ना, हमरो ढाल ले बहुत बहुत बधाई भाई जम्मू किसान संगवारी मन ला।
5: मोनिका, शुरू में बाजार के गोट करत रहे हैं, बाजार जाथन, तानी बानी के जिनिस भी साथन है, और लेवैया बेचैया सब खुश रहन मगर रहन। तो यही रकम के ठन गीत सुनथन, जलगावा थे पंच राम मिर्जा और कुलवंतीन बाई।
0: हाँ।

0: हैं भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: संगवारी हो, कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के उत्कृष्ट योगदान खातिर FAO के प्रतिष्ठित एग्रीगोला मेडल ले सम्मानित हमारे देश और देश के माननीय प्रधानमंत्री ला हमारे किसान संगीमन बधाई पठोए तीन ला सुन।

0: संगवारी हो अभी सुनेन ये सुघर गीत जिला गायन पंचराम मिर्जा हो कुलवंतिन भाई है।
1: मोनिका हमर किसानवाणी मा हमर संगवारी मा नवा नवा जानकारी सुनावा देते हैं क्रम आज की सलाह मा और आज की सलाह क्रम मा जानकारी के विषय है डेयरी संयंत्र निर्माण पर आवश्यक जानकारी जानकारी देवा थे डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा सहायक प्राध्यापक पशुधन उत्पाद विभाग पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा जिला दुर्ग और आप मन सन गोट बात करे हैं मोनिका जैन
0: संगवारी हो हमारे कतकोन संगवारी मना पशुपालन करते पशु मन हमारे बलबैया होते काबर की देखो पशु जन है वो हमारे खेती किसानी में तो काम आबे करते संगे संग हमारे जन रोज की जरूरत है खास करके दूध की जरूरत ला पशुधन मन ले पूरा करे जा सकते और इखले बने दिगर उत्पाद जिन होते वो हमार बड़ काम मा थे। भाई अब अगर हम बात करन इला एक व्यापार के रूप में करे खातिर तो इखर बर होते डेयरी और डेयरी संयंत्र जिन निर्माण ही वो हमन कौन ढंग ले कर सकथन कैसे इखले लाभ ले सकथन ये खातिर आज हम गुड बात करबो हमार विशेषज्ञ के लिए और ये जानकारी पर हमार संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा जी। हाँ आप मन सहायक प्राध्यापक हैं पशुधन उत्पाद विभाग पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्गले। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
2: नमस्कार।

0: जैसे कि आज हमारा विषय है डॉक्टर साहब, जिन हमारे संगवारी मन डेयरी बना के दूध उत्पादन करके ज्यादा ले ज्यादा लाभ लेना चाहते, तो सबसे पहले तो आप मन यही बताते हो कि एक डेयरी अगर हमला खोलना है तो एक हर खातिर हमला कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए।
1: जी मैडम, अगर कोई भी किसान जन अगर डेयरी प्लांट खोलने की विचार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले दूध की खरीद, आप दूध कहाँ से परचेज करेंगे या दूध आप कहाँ से लाएंगे। मान लो आप 100-200 लीटर का डेयरी प्लांट खोलने जा रहे हैं तो 200 लीटर 300 लीटर आपके पास एक समय में दूध होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दूध कहाँ से लेंगे इसका आप परीक्षण कर लेंगे कि मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दूसरा, मार्केटिंग या विपणन, हिंदी में विपणन या मार्केटिंग बोल सकते हैं, इसके संबंध में भविष्य की योजना बनाना, आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, किस खर्च की क्षमता वाले लोग रहते हैं, इस हिसाब से आप अपने डेयरी प्लांट को सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास अगर सिर्फ लिक्विड मिल्क पीने वाले लोग हैं या खरीदने वाले लोग हैं तो आप सिर्फ लिक्विड मिल्क की योजना बनाएं। अगर आपके पास कोई आइसक्रीम वाले हैं, पनीर वाले हैं या सारे उत्पाद खरीदने वाले लोग हैं तो उस तरह से डेयरी प्लांट की योजना बनानी चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो आप मन पर सुघर बात के हो कि भाई हमन सबले पहले तो अगर डेयरी खोलना चाहते हैं तो दूध की उपलब्धता कौन प्रकार ले हुई ये विषय में पूरा जानकारी होना चाहिए। और आप मन यू बताए कि जब हमन डेयरी प्लांट खोलना चाहते हैं तो वो जगह कैसे है। अब जगह के बात आवे तो कौन प्रकार की जगह के चुनाव हमन कर सकते हैं जो हमारे डेयरी जिन उत्पाद है ओखर भर उचित होगी।
1: इसमें डेयरी प्लांट बनाने के पहले आपको यह देखना होगा कि आपके डेयरी प्लांट के साइट सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण हो। इसके लिए आप जहाँ पे आप डेयरी प्लांट खोलना चाहते हैं वहाँ से मार्केट आपका ज्यादा दूर नहीं हो, नजदीक हो। दूसरा, वहाँ से आपकी जो भी दूध आप खरीद कर रहे हैं वो भी ज्यादा दूर नहीं है और उसके लिए सुगम रास्ता उपलब्ध हो। दूसरा, साइट का आकार, माप और पानी, बिजली, ईंधन तथा जलवायु परिस्थितियां भी उपयोगी होती है। ये सभी देखकर हम साइट की सिलेक्शन करते हैं। जैसे बढ़ते प्रदूषण और औद्योगिकरण के कारण जनरली जो भी आसपास शहर के आसपास की अनुमति सरकार नहीं देती, इसलिए शहर से थोड़ा हटके बनाना चाहिए और साइट सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए ताकि भविष्य में उसे एक्सपैंड कर सके आप।
0: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे जैसे संगवारी मन है जिनमें नवा डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर माने जाए कि कोनो करा पहली ले डेयरी के व्यवसाय उमन करत है, तो जैसे भाई हर कोई चाहते है कि बोला ज्यादा जाए ज्यादा मुनाफा हो, तो नवा अगर अमन उपकरण लेना चाहते हैं तो वो कौन प्रकार के होना चाहिए, ओखर क्षमता की बात करें तो कैसन होना चाहिए, और अगर पुराना हमारे संगवारी मन करत है तो उमन में का विशेष कर सकते जेखर लिए उमन ला ज्यादा उत्पादन मिल सके।
1: इसमें उपकरण आपको डेयरी प्लांट के हिसाब से लेनी होती है। जैसे आप लिक्विड मिल्क कच्चा दूध का उत्पादन सिर्फ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ही आपको उपकरण लेनी है, जैसे पास्चुराइजर, होमोजिनाइजर या ठंडा रखने वाली उपकरण लेनी है। अगर आपको प्रोडक्ट उत्पाद की डेयरी प्लांट खोलनी है साथ साथ में, लिक्विड मिल्क के साथ साथ उत्पाद की भी प्लांट भी खुल सकती है
0: जी।
1: तो आपको उसके लिए अलग से उत्पाद वाली उपकरण खरीदनी होगी।
0: ये तो आप मन बड़े सुघर सुघर बात बताता हो, विस्तार ले बताता हो। फिर एक चीज मन में आती है कि भाई अगर डेयरी की हम उद्योग खोलना चाहते हैं तो मैं खर्चा कितना आई।
1: डेयरी उद्योग खोलने के लिए ज्यादा खर्च नहीं आती। इसके लिए जनरली जो अगर आपके पास जमीन है या जमीन नहीं है तो आप लीज पे जमीन ले सकते हैं, उसमें ज्यादा जो भी कुछ जो खर्च आती है। दूसरा, आपको शेड व्यवस्था करनी रहती है। शेड व्यवस्था के साथ बिजली, पानी और फीड, गाय, अच्छे प्रजनन वाली गाय, ये सब व्यवस्था करनी रहती है। तो जनरली जो खर्च आती है 20 लाख रुपए में आपको एक छोटा सा डेयरी खुल सकता है। छोटा सा मतलब मॉडर्न नहीं बोल सकते, मतलब एक ट्रेडिशनल जो डेयरी है वो खुल सकता है। मॉडर्न डेयरी के लिए तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है।
0: अच्छा, ये जैसे अगर हमने घर बनाए के तरीका की बात करें, मैंने अगर हम कौन तरीका ले वो डेयरी के डिजाइन बनवान या फिर कौन तरीका के संयंत्र यंत्र मल्ला अपनान जेखर लिए हमला ज्यादा ले ज्यादा लाभ मिले।
1: डेयरी प्लांट डिजाइन और आउटलेट जनरली यह एक योजना के तहत की जाती है। इसमें आपको लेआउट, उपकरण लेआउट और डेयरी मशीनों की जो व्यवस्था है वो करनी रहती है। इसके लिए आपको प्लांट के प्रत्येक अनुभाग में सामग्रियों की आवाजाही कुशल और किफायती तरीके से होनी चाहिए। इसमें से कई मूलभूत विषयों के

0: अनुप्रयोग शामिल हैं, जैसे कि साइट का चयन, निर्माण सामग्री, सर्विस सेक्शन, उत्पाद सेक्शन एवं अलग अनुभाग विशिष्ट आवश्यकताएं होती है।
1: डॉक्टर साहब, डेयरी में कौन कौन से संयंत्र के उपयोग होते हैं, थोड़ा विस्तार से बताते हो।
0: डेयरी प्लांट में जनरली मिल्क रिसेप्शन एरिया, दूध प्राप्ति क्षेत्र जहां हम दूध को प्राप्त करते हैं, जैसे अलग अलग जगह से, गांव से, मिल्क कलेक्शन सेंटर से आपके यहां दूध आती है, आप उस दूध को जहां रिसिप्ट करते हैं वहां उसको रिसेप्शन एरिया बोलते हैं। उस जगह पे हम दूध की गुणवत्ता की जांच परीक्षण करते हैं ताकि हम अच्छे दूध परचेस कर पाए। इसके लिए उसकी कुछ प्लेटफॉर्म टेस्ट, एक प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है, इसमें अल्कोहल टेस्ट है, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, लैक्टोमीटर टेस्ट, फैट टेस्ट, ये सब करते हैं ताकि हम अच्छा दूध, गुणवत्ता वाले दूध प्राप्त कर सके। चिलिंग सेंटर, चिलिंग सेंटर इसलिए रखते हैं ताकि जब दूध हम लाते हैं, 200 लीटर दूध लाते हैं, हो सकता है कि वह तुरंत के तुरंत प्रोसेस नहीं हो पाए, तो उसे कुछ समय के लिए ठंडा कर सके, तो एक चिलिंग सेंटर बनाई जाती है, स्टोरेज सेक्शन जहाँ पे हम उसको ठंडा रखें। पाश्चुरीकरण एवं होमोजेनाइजेशन एरिया, यहाँ पे दूध को पाश्चुराइज किया जाता है, मतलब कि जीवाणु रहित किया जा सकता है। दूसरा होमोजेनाइजेशन, मतलब मिल्क को हम एक साथ मिला दें, मतलब जो भी उसके फैट ग्लोबुल्स हैं उसको तोड़ के एक भाग में कर दें। इससे होता क्या है, सारे जैसे जो भी दूध का जो प्राइस सेट होता है मार्केट में वो फैट के बेस पे होता है, तो जनरली दूधिया से अगर आप दूध लेते हैं तो ऊपर से दूध देता है तो आपको फैट ज्यादा हो जाता है, किसी को कम जाता है, लेकिन पाश्चुराइज और होमोजेनाइज दूध में इस तरह की चीजें नहीं आती, सारे फैट मिले रहते हैं, सारे जो भी कण है, उपयोगी कण है, वो आपस में मिले रहते हैं
1: जी।
0: पैकेजिंग क्षेत्र, ये बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है जहाँ पे हम दूध को संरक्षित कर अच्छे पैकेजिंग फॉर्म में किसी भी ग्राहक को दे सके, दूध, दही, मक्खन आदि जो भी चीजें हैं उसको स्वच्छ एवं रोगाणुहीन वातावरण देकर उसे उपयोगी को दे सके
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे डेयरी के जिन संयंत्र है एक विषय में बात करा था, तो जैसे हमारे संगवारी मन डेयरी खोलना चाहते हैं और एक संयंत्र खातिर का कोनो प्रकार के सरकारी योजना के लाभ मिल सकते हैं?
0: हाँ, जनरली होता क्या है, जब भी आप प्रोजेक्ट की मांग करते हैं डेयरी के क्षेत्र में, तो डेयरी के क्षेत्र में प्रोजेक्ट बहुत सारे एजेंसीज हैं जो हमें प्रदान करते हैं, जैसे नवार्ड हो गया, या फिर हमारे ही चिकित्सा विभाग में, पशु चिकित्सा विभाग से भी बहुत सारे डेयरी के योजना चलते हैं, जैसे बकरी योजना चलते हैं, गाय भी योजना चलती है कभी कभी, नवार्ड भी प्रोजेक्ट के तहत आपको, आप जितने भी 50 यूनिट का अगर आप गाय भैंस का खोलना चाहते हैं डेयरी प्लांट, तो उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बना के देनी रहती है और वो नवार्ड आपको उस हिसाब से पैसा देती है एज ए लोन। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे सरकारी सिस्टम में है जिससे किसान लाभ उठा सकते हैं
1: जी। तो फिर एक बार हमें पता कहाँ करी, कहाँ ले, कैसे लोन मिलना है तेला?
0: ये हमें जो चिकित्सा विभाग है, अपने नजदीकी चिकित्सा विभाग, जो भी वेटनरी ऑफिसर्स हैं या वेटनरी चिकित्सालय हॉस्पिटल्स हैं या DHO ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं, या कभी कभी ब्लॉक लेवल पे भी ये सब चीजें होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास में भी वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं, वो भी ये सब चीज जानकारी दे सकते हैं।
1: डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा जी, आप मन आए हमारे संगवारी मल्ला, इतना सुघर सुघर जानकारी दियो, डेयरी उत्पाद ले कौन प्रकार ले हम आर्थिक लाभ ज्यादा ले ज्यादा ले सकथन, और जिन दूध है ओकर सही उपयोग करके, जैसे आपने बताया कि भाई दूध तो बेचे सकथन, संगे संग ओकर ले बने दिगर उत्पाद ला घलो बेच के हमन लाभ कमा सकथन, ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी सुनत रहे क्रम आज की सलाह में जानकारी, विषय रही से डेयरी संयंत्र निर्माण बर आवश्यक जानकारी, जानकारी देवत रहीन डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक, पशुधन उत्पाद विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, जिला दुर्ग, और आपमन सन गोट बात करत रहीन है मोनिका जैन।
1: राजेश भाई, अपना हमर करा जिन हलो चौपाल ले जुड़े सूचना है तेला संगवारी मल्ला बता देते। संगवारी हो, अवैया शुक्रवार 22 मई 2026 मैंने काली के दिन प्रसारित हुआ हलो चौपाल कार्यक्रम के दही के विषय हो ही खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां, आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेकाहारा, रायपुर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकता हूँ। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483, और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई शुक्रवार

मई 2026 माने काली बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक और ये कार्यक्रम के प्रसारण हुई कालीच माने शुक्रवार के संझा माँ 7:30 मा। तो संगवारी हो आप मन के फोन कॉल के अगुरा रही और सूचना इचे सिरावत है।

0: संगवारी हो, आप मल्ला अगरो हो ही हमार क्रम कृषक प्रश्न मंच के। तो भाई पेन और पेपर लेके हमारा आज के प्रश्न ला लिख ले रहो, और हमार जिन विशेषज्ञ मल्ले गुड़बात रीस ना तेला ध्यान से हमार संगवारी मन सुने हुई, तो झटकुन मेल कर दी हमार ये प्रश्न के जवाब ला। तो संगवारी हो, प्रश्न है कि कच्चा दूध के डेयरी खोले बर का का उपकरण की जरूरत पड़ते। प्रश्न लायक हूँ, बता देता हूँ कि कच्चा दूध के डेयरी खोले बर का का उपकरण की जरूरत पड़ती है। सही जवाब पर मेल आईडी है raj@23@gmail.com। इसने अमन पांचों हफ्ता पूछ रहे हैं कि भाई रेबीज रोग कौन पालतू जानवर के चाबेले होते, तो एक सही जवाब है कि ये कुकुर के चाबेले होते। और सही जवाब भी चाहिए संगवारी मन के नाम बताएं राजेश भाई।
1: नवागढ़ कटेले है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा वर्मा, बठेना पाटन है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, माधो, उमेश, धनेश्वरी वर्मा, आर्यनगर कोका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरा सनील, अजीत, आयुष, नन्नी जंघेल, परसा टोला अंबागढ़ चौकील है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी, खुमेन मसिया, धमधा सुखरी कला ले अमित जंघेल, सकून आरोसी, ओशिका आदित्य, अंजलि, सोनार पाल, बस्तर ले दुलेश्वर कुमार कश्यप, कुंती कश्यप, नागर कोहरा ले बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। सही उत्तर भेजिए हमारे सबो संगवारी मल्ला हमारे डाले गाड़ा गाड़ा
0: बधाई। भाई राजेश भाई देख अतका सुगर सुगर हमार जिन विशेषज्ञ रहीन हो जानकारी देन, हमूमन गोड बात बढ़ करें एक ठीन गाना घलोक सुनें, फिर का होते ना कि चौपाल मा बैठ के जब गाना बजाना होते तो अलग एक माहौल बन जाते हैं।
1: और बाजार के गोट शुरू करे हैं है ना, तो हम नहीं के भाई संगवारी मन बढ़िया फूल के खेती करे, औषधि जिन पौधा है गुरशादर है तुलसी एलोवेरा वो सब के खेती करे, बढ़िया बाजार में बेचे है बना लाभ कमावे। तो गाना की बात करे तो सुनथन संगवारी हो गाना गावा थे रजनी रजक और बुद्धि सागर शर्मा।

0: संगवारी हो, ये सुगर सुगर गीत सुने नो आपो मल्ला सुनवाइन जिला गावत रहीन है रजनी रजक और बुद्धि सागर शर्मा जी। हाँ भाई, ऐसे है कि अब हमारे किसानवाणी इंचे सिरावत है, तो भाई ये रही इस किसानवाणी प्रायोजक रहीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: ओ मोनिका, जाए पहले संगवारी मतलब बता देवन काली कार्यक्रम संगवारी हो काली संध्या चौपाल माँ गोट बात संग सुनियो क्रम हेलो चौपाल। विषय हो ही खेती किसानी करत बखत किसान मल्ला हो या चर्म रोग। जानकारी दी डॉक्टर मृत्युंजय सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ में कहरा रायपुर। संग में आज के प्रश्न और गीत संगीत घलो हो ही। अब आज के कार्यक्रम ले देवा विदा। कार्यक्रम सुनैया सबो संगवारी मल्ला राजेश यादव
0: और मोनिका जैन के
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। आपको सुनवाते हैं लव मैरिज फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए पाकीज़ा फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। धुन तैयार की है कैफ भोपाली ने और इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज में लाखों में एक फिल्म का गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन RD बर्मन का।

लाखों में एक फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं सीमा कौशिक और साथी। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कर्मा गीत सीमा कौशिक और मोतीलाल सूर्यवंशी के स्वर में।

सीमा कौशिक और साथियों के गाए स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन अब हम रिले करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन में आज आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता गोरखपुर में संपन्न हुई। अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन कल से झारखंड के रांची में शुरू। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 117 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात की टीम जो है वो पहले ही प्लेऑफ का अपना टिकट कटा चुकी है, जबकि चेन्नई चाहेगी कि आज का मैच जीता जाए, अच्छे अंतर से जीता जाए और टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: ईडन गार्डन्स में कल करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए।

0: क्विन बॉश ने टीम के लिए 18 गेंद में सर्वाधिक 32 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने दो दो विकेट लिए। 148 रन का सामान्य लक्ष्य केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोलकाता की ओर से मनीष पांडे ने 33 गेंद में 45 और रोबमैन पॉवेल ने 30 गेंद में 40 रन बनाए। अंतिम ओवर में रिंकू सिंह 9 और अनुकूल रॉय ने 4 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 7 गेंद जीत दिलाई। कॉर्बिन बॉश ने मुंबई के लिए सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिला। मनीष पांडे को उनकी पारी और शानदार फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी और राजस्थान और पंजाब के अगले मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि कोलकाता अपने कल के मैच के बाद आने वाले लीग के सभी मैच बहुत ध्यान और सतर्कता से खेलेगी भी और देखेगी भी। और अब आईपीएल के बाद रुख करते हैं हॉकी के टर्फ का, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जापान के काकामिघारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए केतन कुशवाहा को टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली।
2: सावन कुमार और आयुष रजक गोलकीपर की भूमिका में टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि डिफेंडर के रोल के लिए अंश बहुता, अरमान सोरेंग, आशीष तानीपूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी और रोमित पाल को चुना गया है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी राहुल यादव, प्रेमचंद सोए, वरिंदर सिंह, करण गौतम और सिद्धार्थ बेन के कंधों पर होगी। वहीं कप्तान केतन, आकाशदीप, गाजी खान, शाहरुख अली और प्रहलाद राजभर के साथ फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगे। भारत को पूल ए में दक्षिण कोरिया, मेजबान जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने पूल स्टेज कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 31 मई को मेजबान जापान से, 1 जून को साउथ कोरिया से और 3 जून को चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। पूल ए और पूल बी की टॉप दो टीमें सीधे 5 जून को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 जून को खेला जाना है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि ये पूरा वर्ष बड़ी प्रतियोगिताओं का है, जहां एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजन होने हैं और सभी खेल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हॉकी के बाद चलते हैं मलेशिया के कुआलालंपुर, जहां बैडमिंटन कोर्ट में आज मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत की अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में आज खेले गए भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों का पूरा हाल।
3: अश्मिता चाहिला ने क्वालिफायर और राउंड ऑफ 32 के बाद आज प्री क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। युवा अश्मिता ने सिर्फ 27 मिनट चले मुकाबले में मलेशिया की गोहजिन वेई को 21-13, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना डेनमार्क की 8वीं वरीयता प्राप्त लाइन होजमार के जर्सफेल्ट से होगा। हालांकि अश्मिता के अलावा भारत का कोई भी खिलाड़ी जीत दर्ज नहीं कर सका। मालविका बंसोड़ डेनमार्क की केजर्सफेल्ट से 21-16, 8-21 और 15-21 हारकर दूसरे दौर में बाहर हो गई थी। वहीं देविका सिहाग चीन की चेन युफेई से 16-21 और 13-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस बीच एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्कारुनन की हार के साथ ही भारत का मेंस डबल अभियान भी समाप्त हो गया है। मिक्स डबल्स में सात्विका रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी अमरीका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई के हाथों 12-21 और 25-27 से हार का सामना करना पड़ा। अब इस टूर्नामेंट में अश्मिता एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को उम्मीदें होंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय उम्मीदों का भार अपने कंधों पे लिए अश्मिता लगातार क्वालिफायर्स, फिर राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज करते हुए अब राउंड ऑफ 8 की तरफ पहुंच गई हैं, यानी क्वार्टर फाइनल, जहां वो अपना कल मुकाबला खेलने उतरेंगी। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज पानी की धार के बीच खिलाड़ी पदकों के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आए। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता का आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में समापन हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के एक बड़े आयोजन स्थल के रूप में सामने आ रहा है।
4: रामगढ़ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। रामगढ़ताल पर

0: 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ ताल इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है।
1: तो नई पहचान बनाता हुआ रामगढ़ ताल रोज नए कीर्तिमान और कमाल स्थापित कर रहा है। और अब इन खेलों पर अधिक अपडेट के साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रेमचंद। प्रेमचंद, आज गोरखपुर में किस किस टीम की नौका पार लगते हुए नजर आई है और बताइए कि आज के मुकाबलों के नतीजों में कौन कौन सी टीम बाजी मारते हुए दिखी।
2: जी जी जी, बालक वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ओवरऑल चैंपियन बनी, जिन्होंने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण 1 रजत व 1 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की टीम ने भी इस बार एक गोल्ड मेडल जीता है। बालक वर्ग के क्वाड्रपल स्कल के फाइनल में यूपी की टीम विजयी रही। इस मुकाबले में 2रे स्थान पर बंगाल और 3रे स्थान पर उड़ीसा की टीम रही।
1: जी प्रेमचंद, हमें इस मैदान के बारे में भी बताइए कि बड़ी रोचक बात है कि गोरखपुर का ये मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्रमंडल तक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।
2: जी जी जी जी, जैसा कि आपने अभी सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि रामगढ़ ताल जो है वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में बन चुका है, एक वाटर स्पोर्ट्स हब बन गया है। यहाँ पर 49 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यूपी में देखे तो वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बहुत समृद्ध है। प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, राप्ती जैसी नदियां हैं जहां वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में बलिया, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर जैसे शहरों में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल गोरखपुर में बहुत सारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया था, जिसमें कम से कम 30,000 दर्शक जो है का ये स्टेडियम बनेगा। जी
1: बिल्कुल, एक बेहतर केंद्र के रूप में उभरते हुए भारत के तमाम शहर और उसी कड़ी में गोरखपुर भी। और अब गोरखपुर से चलते हैं झारखंड के रांची की तरफ, जो कि तैयार है नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन की मेजबानी के लिए, जो कल से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर, अन्नू रानी, तजेंद्र पाल सिंह तूर, सर्वेश कुशारे और तेजस्विनी शंकर जैसे भारतीय दिग्गज एथलीट भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आएंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: भारत की प्रमुख घरेलू एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन, जिसे आमतौर पर फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाले इस साल का यह आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एकमात्र चयन ट्रायल के तौर पर काम करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने हैं। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में सचिन यादव, रोहित यादव और किशोर जेना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वहीं महिलाओं में अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर पुरुष वर्ग में और शैली सिंह महिला वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला बूबकर और शॉट पुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर खेलते नजर आएंगे। राजेश रमेश 400 मीटर, मोहम्मद अफसल 800 मीटर और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के 400 मीटर स्पर्धा में विथया रामराज एक्शन में नजर आएंगे, जबकि तेजस्विनी शंकर कथानॉल में हिस्सा लेंगे। जया भारती स्पोर्ट्स कैन।
1: तो रोमांच तैयार होने को बेकरार है। और अब बात करते हैं हॉकी कोच बलदेव सिंह की, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बसे एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को बेहतरीन हॉकी प्रतिभा का केंद्र बना दिया है। सुनते हैं बलदेव सिंह के जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
4: जिंदगियां सवारना खेल खेल में, श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026। 15 नवंबर 1950 को लुधियाना के किसान परिवार में जन्मे बलदेव सिंह का बचपन आर्थिक तंगी में बीता।
5: मैं उस समय बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार मैदान में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मैच देखा जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनूं।
4: बलदेव सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेंगलुरु से हॉकी कोचिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया।

0: और 1981 में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करके हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में कोच के पद पर आ गए। शाहबाद उनकी कर्म भूमि बन गया और उन्होंने सबसे पहले यहाँ हॉकी ग्राउंड्स तैयार किए। बलदेव सिंह जी के कड़े परिश्रम और अनुशासित ट्रेनिंग से उनके खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। जल्दी ही वे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी नियुक्त हुए और टीम को कई सफलताएं दिलाई।
1: मैंने देखा कि लड़कियां भी खेलना चाहती हैं, पर उनके सामने कई अड़चनें थी। हमने उनके परिवार वालों को समझाया।
2: उन्होंने बड़ी गाड़ी ली बच्चों की मदद के लिए। जब प्रतियोगिताएं दिल्ली या कहीं दूर होती थी तो ये लड़कियों को घर लेने और छोड़ने भी जाते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये आर्थिक सहायता भी देते थे।
1: हॉकी खेलने से यहाँ के बच्चों को मान सम्मान और जॉब भी मिली। लड़कियाँ आगे आएंगी तो इंडिया आगे आएगा।
0: बलदेव सिंह जी की ट्रेनिंग में लड़कियों की स्कूल टीम ने भी कई टूर्नामेंट जीते और आगे चलकर देश का गौरव बनी।
3: मेरे लिए वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, मेरे लिए वो एक गाइड, मेंटोर और एक फादर फिगर, जिसको फिकर रहती थी कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए।
4: उस समय हमारे शाहबाद में कहावत थी कि किसी के घर बेटी पैदा हो तो उसे बलदेव जी के मैदान में छोड़ दो, उसकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी।
0: शाहबाद से इतने खिलाड़ी निकलने लगे कि इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाने लगा। सन 2017 में बलदेव सिंह जी भारत की ओलंपिक टास्क फोर्स में भी शामिल हुए और भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में योगदान दिया।
1: मेरी पूरी जिंदगी हॉकी और खिलाड़ियों के लिए है।
0: सच ही है, बलदेव सिंह गुरु नहीं, खुद गुरुकुल है। श्री बलदेव सिंह, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
5: तो कोटि कोटि नमस्कार बलदेव सिंह जी को, जो कि हॉकी की एक पूरी पीढ़ी के लिए किसी शिल्पकार से कम नहीं, और उनके बनाए हुए तमाम खिलाड़ी आज जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो शायद बलदेव सिंह जी का सीना भी फख्र से चौड़ा होता होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी, खेल जगत की, खेल मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारों को

0: और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन

0: 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
3: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28

0: मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफील्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other.

जगजीत सिंह के गाए इस नगमे के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को है। प्रस्तुत है रूपक, हिंदी गजल का सफर। इस रूपक के लेखक हैं श्री गिरीश पंकज, प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र वैद्य। तो आइए सुनते हैं रूपक, हिंदी गजल का सफर।

0: गजल हूँ, हिंदी गजल। वैसे मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सिर्फ गजल कहें, लेकिन चूंकि मैं फारसी से उर्दू और उर्दू से हिंदी तक पहुंची हूँ, इसीलिए चाहने वाले मुझे हिंदी गजल कह देते हैं। मैं बुरा नहीं मानती। हिंदी में लिखें तो हिंदी गजल, उर्दू में कहें तो उर्दू गजल। अब तो अनेक भाषाओं में गजलें कही जा रही हैं। ये और बात है कि हिंदी ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, मुझे हिंदी गजल कहा। एक शायर का कहना है,
1: तीक्ष्णतर अनुभूतियों का धाम है हिंदी गजल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गजल।
0: गजल वैसे तो अरबी का

शब्द है। इसका अर्थ है स्त्री से या प्रेम पात्र से बातें करना। लेकिन गालिब से लेकर फिराक तक सभी ने जीवन के हर रंग में डूबी गजलें कही हैं। गजल कभी भी केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं रही। गालिब फरमाते हैं,

0: फिर आप गोरखपुरी का मशहूर कलाम देखिए।
1: बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।
0: इस तरह मैंने प्रेमिका से बात करने के अपने अर्थ को कदम कदम पर झूठलाया है। मैंने दोहे की तरह गागर में सागर भरने की कोशिश की। मेरा एक एक शेर जीवन दर्शन में डूबा हुआ होता है। मेरी इसी खासियत को ही देखकर सब ने मुझे गले से लगाया और मुझे एक विशिष्ट पहचान दी। एक शायर के शब्दों में

0: आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में से एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने भी मुझे अपनी अभिव्यक्ति का सहारा बनाया। हिंदी के महाकवि निराला और प्रसाद ने भी मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। मुझे सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर किसी शख्स ने दी तो उसका नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी। दुष्यंत के आने के बाद हिंदी गजल यानी मैं हिंदी गजल के रूप में प्रतिष्ठित हो पाई। दुष्यंत ने हिंदी गजल को जीवन के सुख दुख और दर्शन से इस तरह जोड़ दिया कि लोग आज भी अपनी अपनी बात में वजन डालने के लिए दुष्यंत के गजलों का सहारा लेते हैं। कुछ पंक्तियां देखिए।
1: हो गई है पीर पर्वत सी पिघलने चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलने चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
0: कुछ और पंक्तियां देखिए, आपको पता चलेगा कि दुष्यंत ने मुझे किस ऊंचाई पर लाकर बिठा दिया।
1: कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं।
0: तो ऐसी है मेरी शख्सियत। हर भाषा का अपना सौंदर्य होता है, अपनी परंपरा होती है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है, लोक मंगल। उर्दू के महान शायर जानिसार अख्तर कहते हैं,
1: हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आ

तो ऐसी हूं मैं, मेरी भावनाएं, मेरे जज्बात। मैंने आम आदमी की पीड़ा को प्रस्तुत किया है। चंद शब्दों के सहारे मैंने बड़े बड़े आतताइयों को झकझोर कर रख दिया है। मेरे चंद शेरों को पढ़कर पाठकों में नया जोश, नई उमंग भर जाती है। यही है मेरी विशेषता, क्योंकि जो बात एक लंबे गीत में कही जाती है, वही बात एक शेर में भी समेटी जा सकती है, यानी गागर में सागर। हिंदी गजल, यानी मैंने हिंदी साहित्य की बगिया में ऐसी खुशबू बिखेरी है कि उर्दू वाले भी खुश होते हैं कि उनके जिगर का एक टुकड़ा हिंदी की सेवा कर रहा है।

0: मैं हूँ जिज्ञासा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
1: क्यों नहीं, पूछो, जरूर पूछो।
2: बहन, तुम्हारा जन्म कब हुआ? लोग कहते हैं तुम उर्दू से निकलकर हिंदी में आई हो। अपनी परंपरा के बारे में मुझे कुछ बताओ ना।
1: हाँ, मेरे जन्म को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मेरे बारे में अनेकानेक भ्रम भी फैले हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि मैं अरबी की बेटी हूँ। उर्दू भी हिंदी की तरह ही एक भाषा शैली है। हिंदी संस्कृत से निकली तो उर्दू अरबी फारसी से आई। उर्दू की साहित्यिक पृष्ठभूमि फारसी साहित्य ही है। संस्कृत और फारसी आम लोगों के लिए कठिन भाषा थी। दरअसल हिंदी और उर्दू इन्हीं दो भाषाओं के सरल रूप हैं। उर्दू का अर्थ क्या है जानती हो?
0: नहीं।
1: उर्दू का शाब्दिक अर्थ है शिविर। 13वीं-14वीं शताब्दी की बात है। मुगल बादशाहों की भाषा तुर्की हुआ करती थी, लेकिन दरबार में चलती थी फारसी। बादशाहों के शिविर में धीरे धीरे खड़ी बोली भी घुलने लगी और एक नई भाषा ने आकार लेना शुरू कर दिया, जिसे कहा गया उर्दू, जिसे बाद में हिंदुस्तानी भी कहा जाने लगा। मुसलमान जब

0: देश में आए तो यहाँ प्रचलित जुबान को एक प्यारा सा नाम दिया हिंदवी या हिंदी। गोस्वामी तुलसीदास के समय तक अपनी भाषा हिंदी का नामकरण नहीं हो सका था। भाषा भले ही मौजूद थी, तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा भी है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का ये दोहा भी तुम्हारे ध्यान में होगा।
1: अरबी तुर्की हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मारग प्रेम का सबै सरोहम ताही।
0: दो उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि हिंदी नामकरण बहुत बाद में हुआ। उर्दू भी फारसी की देन है। संस्कृत से हिंदी निकली तो अरबी फारसी से रेख्ता और उर्दू, और धीरे धीरे हिंदी और उर्दू आपस में इस तरह समरस होने लगे कि एक नई भाषा ने आकार लेना शुरू कर दिया, और ये भाषा थी हिंदुस्तानी। आज हिंदी प्रदेश में रहने वाले हर हिंदी भाषी की बोलचाल की भाषा में अधिकांश शब्द उर्दू के रहते हैं, रहते हैं ना। इसी तरह उर्दू वालों की जुबान पर हिंदी के शब्द रहते हैं। इसे हम भाषाई सद्भावना कह सकते हैं। हिंदी उर्दू या उर्दू हिंदी के गंगा जमुनी संगम से बनी भाषा ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे गजल की कुछ बहरें हिंदी के छंदों के निकट हैं। जैसे बहरे रमल हरि गीतिका छंद है, बहरे मुतकारिब भुजंग प्रयात छंद है, बहरे मुतदारिक त्रिभंगी छंद है, तो बहरे सरिय हिंदी की चौपाई है।
2: वाह, आपने तो काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि सबसे पहले गजल लिखी आमिर खुसरो ने, क्या ये सच है?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 13वीं शताब्दी में हुए थे आमिर खुसरो। हिंदी को गजल के रूप में ढालने का पहला काम आमिर खुसरो ने ही तो किया। उन्होंने खड़ी बोली में न जाने कितनी कविताएं रची। ये कविताएं आज भी लोगों की जबानों पर चढ़ी हुई हैं।
1: गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आप नौ रैन भई चहुदेस।
0: अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं को हिंदी या हिंदवी कहा है। खुसरो तो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि खुसरो की माता हिंदू थी और पिता मुसलमान। इस तरह खुसरो की मातृभाषा तो हिंदी ही थी, लेकिन उन्हें संस्कार में अरबी फारसी का वातावरण मिला, और इस कारण उन्होंने नई भाषा गढ़ी हिंदी के रूप में। उन्होंने फारसी में भी खूब लिखा। आमिर खुसरो की मशहूर रचना तो तुमने सुनी ही होगी।

0: वाह, मान गए अमीर खुसरो को। मतलब ये कि अमीर खुसरो ने हिंदी गजल की नींव रखी।
1: बिल्कुल, और उसे आगे बढ़ाने में कबीर से लेकर बहादुर शाह जफर और भारतेंदु हरिश्चंद्र तक का विशिष्ट योगदान रहा। कबीर की ये रचना क्या है, गजल ही तो है।
2: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या।
0: हाँ, ये तो गजल ही है।
1: प्रख्यात शायर सौदा की ये पंक्तियां देखी।

0: सावन के बादलों की तरह से भरे हुए ये वो नयन है जिनसे जंगल हरे हुए।
1: ये गीत की पंक्तियां हैं या गजल की? जाहिर है गजल की, जो अपने ठेठ हिंदीपन के कारण गीत का आभास दे रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोहों या गजल को किसी धर्म या भाषा की दीवार में कैद करके नहीं रखा जा सकता। सौदा भी विशुद्ध हिंदी में गजल कह सकते हैं। फूल की खुशबू पर, उसके सौंदर्य पर सबका अधिकार है। हवा, पानी, सूरज, चंदा सबके लिए हैं। हर कोई इनका उपयोग कर सकता है। ठीक उसी तरह कोई दोहा लिख सकता है तो कोई गजल। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी लिख तो सकता है, लेकिन भगवान या अल्लाह के वास्ते विधा के मानदंडों का पालन निहायत जरूरी शर्त है। महान शायर बहादुर शाह जफर ने भी ऐसी परंपरा यानी हिंदी गजल की परंपरा को आगे बढ़ाया था। देखो उनकी चंद पंक्तियां।
0: प्रेम अगन नित मोहे जरावे, या भेद कहूं कासे, पीहो पास तो जीहो ठंडा, अपनी विपदा कहूं वासे, रतियां गुजारूं रोवत रोवत, दिन को गुजारूं आहां खींच, मेरे मन की मोसो न पूछो, पूछो मेरी विपदा से।
2: हाँ, ये भी हिंदी गजल ही है, हिंदुस्तानी गजल।
1: अरे, मुझे समृद्ध करने वालों की कभी कमी नहीं रही। आज अगर मैं महलों से लेकर झोपड़ी तक राज कर रही हूँ तो इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की मेहनत रही है, उनकी साधना रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक से एक गजलें कही हैं, जैसे
0: आ गई सर पर कजा तो सारा सामा रह गया, ऐ फलक क्या क्या हमरे दिल में अरमा रह गया, याद आई जब तुम्हारे रूप रोशन की चमक, मैं सरासर सूरतें आईना हैरान रह गया।
1: भारतेंदु युग के ही एक और कवि हुए हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, उनकी एक गजल देखो।
0: कैसा नीरस जीवन बीता, मैं प्यार किसी को कर न सका, अपकार किया किसका किसका, उपकार किसी का कर न सका, कितने दुखिया बहते देखे, दुख सरिता में मझधार पड़े, मैं मस्त रहा अपने धुन में, उद्धार किसी का कर न सका।
2: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी गजलें लिखी थी।
1: ठीक कहती हो बहन, उनकी एक गजल है।
0: इस देश को हे दीन बंधो, आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए।
2: मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य के अनेक मूर्धन्य लोगों ने भी गजलें लिखी हैं।
1: हाँ हाँ, जैसे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी भी एक गजल मिलती है, देखो।
0: मुसीबत में कटे हैं दिन, मुसीबत में कटी रातें, लगी हैं चांद सूरज से निरंतर राहु की घातें, जो हस्ती से हुए हैं पस्त, समझे हैं वही क्या है, गुजरती जिंदगी के साथ हरकत से भरी बातें।
1: हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदी गजल के सफर में अनेक बड़े साहित्यकार सहयात्री रहे। ये अलग बात है कि उन्होंने दूसरे छंदों के सहारे भी कविताएं की, फिर अतुकांत छंद का जमाना भी आया, लेकिन गजल कहने वाले गजल ही कहते रहे, वे रुके नहीं।
2: बहन, हिंदी गजल में ऐसी क्या खास बात है कि इन दिनों गजल लिखने की होड़ सी मची है?
1: कारण साफ है, गजल अभिव्यक्ति की सबसे छोटी और कारगर विधा है। दो पंक्तियों में पीड़ा और खुशी का एहसास करा देता है एक शेर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में हर कोई श्रेष्ठ गजल लिख रहा है। कुछ लोग गजल का अर्थ तुकबंदी से लगा लेते हैं। हिंदी गजल के सफर में ऐसे यात्रियों की भी कमी नहीं है, लेकिन कुछ कवि ईमानदारी के साथ गजल की परंपरा का निर्वाह करते हुए गजल लिख रहे हैं, मीटर का ध्यान रखते हैं, रदीफ काफिया भी दुरुस्त रहता है।
2: गजल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ते में गजलकार का उपनाम भी आता है। हिंदी गजल में क्या इस बात का भी ध्यान रखा जाता है?
1: हाँ, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक गजल में पहला शेर और आखिरी शेर तो होगा ही, रही बात अंतिम शेर यानी मक्ते में गजलकार के उपनाम आने की, तो हिंदी गजल में इस परंपरा का निर्वाह नहीं के बराबर होता है। शायद

0: इसलिए हिंदी गजल और उर्दू गजल में भेद हो जाता है। उर्दू की गजल में मकते में उपनाम का आना अनिवार्यता सी है, लेकिन हिंदी गजल में ये बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं।
1: लेकिन गजल का वह रूप जो अरबी फारसी में रहा है उसका तो ध्यान रखा ही जाता है।
0: अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो गजल गजल नहीं रह जाएगी। कुछ लोगों ने हिंदी गजल को मुक्तिका, गीतिका, तेवरी आदि आदि बहुत से नामों से पुकारा, लेकिन इन्हें स्वीकृति नहीं मिल सकी, इसलिए हिंदी गजल केवल हिंदी गजल है।
1: आपने अपने बारे में मुझ जिज्ञासु को काफी जानकारी दे दी। बताइए, क्या आज आप अपने सफर से संतुष्ट हैं?
0: जिंदगी जारी सफर का नाम है, इसके हिस्से जाने कितना काम है। हम मुसाफिर हैं सदा चलते रहें, अपनी किस्मत में कहां आराम है। तो अभी मेरा सफर जारी है। दुष्यंत कुमार, अदम गोंडवी, चंद्रसेन विराट, शेर जंग गर्ग, कुंवर बेचैन, जहीर कुरैशी, इसाक आश्क, विनोद तिवारी, सूर्यभानु गुप्त, रऊफ परवेज, नारायण लाल परमार, भवानी शंकर, रामावतार चेतन, अश्व घोष, उर्मिलेश, शिव, ओम अंबर, राजेश रेड्डी, ज्ञान प्रकाश विवेक, विज्ञान वृत्त, अशोक अंजुम, पुरुषोत्तम प्रतीक, हनुमंत नायडू, रामेश्वर वैष्णव, गिरीश पंकज, राजेंद्र तिवारी, अहत प्रकाश, महेश अनघ, अजय जन्मेजय, जाने कितने नाम हैं जिन्होंने मुझे समृद्ध करने का काम किया है और निरंतर कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार, पुरुषोत्तम प्रतीक, हनुमंत नायडू और रामावतार चेतन जैसे गजलकार तो अब नहीं रहे, लेकिन इनके बाद की पीढ़ी अपना काम बेहतर बेहतर तरीके से कर रही है।
1: आपकी बातें सुनकर मुझे तो लगता है ये नई सदी गजल के ही नाम रहेगी। इसमें हिंदी गजल भी शामिल है और उर्दू गजल भी। मैं भी एक शायर की बड़ी अच्छी गजल सुनाती हूँ। इसे सुनकर लगेगा कि हिंदी गजल में भी कितनी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। सुनो। जो ना गाई गई वह गजल जिंदगी, दोस्तों रेत का है महल जिंदगी।
0: सचमुच बहुत सुंदर गजल है।
1: तो फिर एक और हो जाए।
0: तो सुनो। जितनी खरी दोपहरी होगी, छाया उतनी गहरी होगी।
1: वाह।
0: नदी ढूंढते हो जंगल में, वो पहाड़ पर ठहरी होगी।
1: क्या बात है। मतलब ये कि आप अपने सफर से खुश हैं। आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले लेखकों ने आपके साथ पूरा न्याय किया है?
0: ऐसा तो नहीं कह सकती कि सभी ने पूरा न्याय किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा सचमुच मान बढ़ाया है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आज मेरा अस्तित्व ऐसे ही प्रतिभाशाली हिंदी गजलकारों से है, मुझे इन पर गर्व है। मैं दोहे और गजल को अपनी काव्य परंपरा की दो निर्मल नदियों की तरह देखती हूँ। एक है गंगा तो दूसरी है जमुना। आज अगर उर्दू वाले दोहे या गीत लिख रहे हैं और हिंदी वाले गजल कह रहे हैं, तो ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब का ही प्रमाण है। सांप्रदायिक सद्भाव का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि रचनाकार एक दूसरे की भाषाओं की लोकप्रिय विधाओं में रचना करें। अब ये बात और है कि किसी एक भाषा पर पूरा का पूरा अधिकार मातृभाषा के जानकार का ही हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर हम किसी लेखक को गजल या दोहा लिखने से वंचित नहीं कर सकते। भाषा पर पूरा अधिकार भले ना हो, उस विधा की निर्धारित शर्तों का अगर पालन किया जा रहा है तो हमें इतनी उदारता तो बरतनी ही चाहिए कि उसके लेखन को प्रोत्साहित किया जाए। दोहे, चौपाई या अन्य छंदों की निर्धारित मात्राओं के अनुरूप ही लिखा जाए और गजल भी रदीफ, काफिया समेत निर्धारित 19 बहरों के तहत ही लिखी जाए, तो निसंदेह भाषाई सद्भावना की दिशा में एक उल्लेखनीय कार्य हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि हिंदी और उर्दू दोनों क्षेत्रों में कुछ ऐसे मूर्मति मिल ही जाते हैं जो अपनी अपनी भाषाओं की विधाओं को लेकर कुछ ज्यादा ही वर्जनावादी या शुद्धतावादी हो जाते हैं। उर्दू वाला कहता है, हिंदी वाला क्या खाक गजल कहेगा, तो हिंदी वाले चीखेंगे कि उर्दू वाले क्या खाक लिख पाएंगे, दोहे, चौपाई या गीत। ये झगड़ा खत्म होना चाहिए।
1: आपके विचार सुलझे हुए हैं। सौभाग्य से अब

0: व्यापक सोच वाले सामने आ रहे हैं, तो आपका ये सफर इसी तरह जारी रहे। आपकी एक एक पंक्ति जिंदगी के सच का बयान करती जाए। आप इसी तरह लोगों के दिलों में अपना घर बनाए रखें, यही है मेरी शुभकामना।
1: ठीक है, इस शुभकामना पर भी चंद शेर प्रस्तुत कर रही हूँ कि आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं। हारने का अर्थ ये भी जानिए, जीत की संभावनाएं साथ हैं।
0: क्या बात है,
1: इस अंधेरे को फतह कर लेंगे हम, रोशनी की कुछ कथाएं साथ हैं, आपकी शुभकामनाएं साथ हैं।
0: वाह।

प्रिय हिंदी गजल, तुम इसी तरह अपनी भावनाओं के सहारे आम आदमी के दर्द को, जीवन दर्शन उसके संघर्ष को, मानवीय मूल्यों को शब्दों के आंचल में बांधकर चलती चलो, चलती चलो।

हिंदी गजल का सफर, ये रूपक अभी आप सुन रहे थे। वाचक स्वर था शारदा पांडे, प्रीति राजवैद्य और दीपक हटवार का। संगीत संयोजन था सती शंकर पंड्या का। इस रूपक के लेखक थे श्री गिरीश पंकज। प्रस्तुति सहयोग शारदा पांडे का था और प्रस्तुति थी डॉक्टर ब्रजेंद्र वैद्य की। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय रात के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग बसंत।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग बसंत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग बसंत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम संबंधी सूचना हम आपको बता दें, आगामी शुक्रवार 22 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेकाहारा, रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। सभी श्रोताओं को जय श्री द्विवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें हैं आप सबकी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कोटा रायपुर से हैं योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा। पावर हाउस भिलाई जामुल से आप हैं विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान। रामनगर रायपुर से हैं राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे। कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश। देवरी भाटापार से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। बाजारपारा बेमेतरा से हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। इसी गीत को सुनना चाहा है डेहरी देवकर से आप हैं वेद व्यास पटेल, प्रीति पटेल, किशोर पटेल। शिवरी नारायण से आप हैं धर्मेंद्र केशरवानी, योगेश केशरवानी, मोनिका केशरवानी, राजेश केशरवानी। महामाया पारा दरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलोरेन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। सिमगा से आप हैं डॉक्टर प्रदीप, सविता जैन, देवेंद्र जैन और साथी। तो चलिए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम अनुरोध गीत को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कटी पतंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द आनंद बख्शी के हैं और धुन आर डी बर्मन का। फरमाइशें आप सबकी। जवाहरनगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े, मीना, विपुल। कोदवा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा। श्रीगाधापार से आप हैं लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू। गर्रापार बांधा बाजार से आप हैं मानवेंद्र साहू। बंगला मटिया बालों से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, अंशुमाला, आशुतोष। दरचूरा से आप हैं ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। हाई स्कूल फरसगांव से आप हैं हरीश साहू, पुनीत राम, पद्माबाई। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, वीरेंद्र साहू। नानगढ़ से आप हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश। शीतलनगर से आप हैं शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर। नयापारा मिरई से आप हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, इशदराज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी। नर्मदा धाम सुरसुर से आप हैं कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव। भाटापारा से हैं श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकर मुंदड़ा। माधेवघाट अमृतसर से हैं डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर। नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। प्रमिलागंज आलोट रतलाम से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई वर्मा, माया वर्मा और शोभा वर्मा। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा था खट्टी कोना से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी, बांदावाजा से हरिओम साहू, रेवाराम साहू, सरस्वती, भाटापारा से सोन जोशी, अर्चना जोशी, सौंगा धमतरी से फनेश चंद्र, सावित्री देवी चंदन, डोंडी लोहारा से देवशंकर तामुरिया, बावनकिरा से डीगेश महिलांग, रमाकांत महिलांग, सिमगा से भारती सेन, विजया सेन, ललिता सेन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल और सरिता माखीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये नगमा। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं, शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन है SD बर्मन का। इस गीत के सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता साथी हमारे हैं भाटापारा से आप हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत ब्रिगू, विनय ठाकुर, सोनाडी से आप हैं सुब्रत चौधरी, भाटापारा से दानसी रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, इंदिरा विहार रायगढ़ से हैं अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसु नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, लुधियाना पंजाब से आप हैं अमरजीत सोनम, परमजीत बिहारी कॉलोनी महासमुंद से हैं वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, बुलंदशहर से हैं बद्रू वली अंसारी, पटेलनगर मलोट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, बक्सर बिहार से हैं सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, दादरी गेट भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, रिंगनी से छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरिंग से भागवत वर्मा, लेवे से आप हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, चरडुंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गा राम साहू, अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से आप हैं दरियान अमल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन नाराजक, निम्मी शिवम, सतीश, धामणी मनोरा से आप हैं तलशीरन डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फाज और पटपर डूंगरगढ़ से हैं रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव। तो आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

अंवर खेड़ से आप हैं अभिजीत, रायपुर से हैं मोहन देवांगन, और भिलाई नगर से हैं अशोक कुंवर, मुंगेली से हैं खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ, रायगढ़ से हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश और लक्ष्मी लक्ष्मी। कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर और सरायपाली केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन बिना सुहागन से, यशुदास और अनुराधा पोडवाल के स्वर में। इंदिवर का लिखा ये गीत है और उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत के लिए फरमाइशें आप सबकी, दतरेंगी से आप हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लालपुर से आप हैं लोकेश यदु और समीर यदु, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णो, मानस सतीश वैष्णो, गायत्री वैष्णो, रुआबादा सनीचरी से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन और शुभम जैन, श्रीगातापर से आप हैं श्रीमती धनेश्वरी साहू, अमग्रा साहू, श्रीमती बिंदेश्वरी और नागेश्वरी साहू, अरमरी बट्रेल दुर्ग से हैं चुरामल लाल वार्डे, जैनी वार्डे, विवेक कुमार वार्डे और नेहा वार्डे, अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव, कन्हैया लाल, रीता देवी और शिल्पी रानी, आकाश कुमार आप हैं दिल्ली शहर मुरी गेट से। इसी गीत के लिए फरमाइशें शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, शिवाजी चौक राजिम से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, महानदी श्रृंगी ऋषि से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, डोंगरगांव राजनांदगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये, चरडोंगरी पिपरिया से आप हैं श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और श्रीमती मायावती साहू। तो पेश है आपकी फरमाइश का ये नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पेशकश में लीजिए अब सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत। स्वर मुकेश का, गीत लिखा है संतोष आनंद ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इस गीत के लिए फरमाइशें आप सबकी। सिमगा से आप हैं लवकु सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य प्रकाश सेन। नवागढ़ कटे से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा और शारदा। भाटापारा दतरेंगे से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक वर्मा, झावेन्द्र वर्मा। शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना और प्रेरणा। बेमित्रा से आए सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हिमलता, कमलकांत सारथी। धरसीवा से आपे छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा वर्मा। दुर्गापार संतोषी नगर, छनूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक। मगरलोड से आपे पुनुराम साहू, तेजेश्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू। हरदेवपारा से आप सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू और सनी। हथनीपारा भाटापारा से आप हैं चुवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा, दुर्गा, दुर्गेश्वरी। परसटोला से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी, खुमेंद्र मसिया। बारा ईरवारा से हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति। लोरमी से आप हैं अमन मरावी, चमन मरावी। डोंडीलोरा बालोद से हैं कमलेश राजपुरिया। सांकरा भूमिया से हैं मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद। शहीद टेकराम चौक से रामाधर ध्रुव, संजय ध्रुव। तो आपको सुनवाते हैं ये आखिरी नगमा रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आपकी फरमाइश पर।

0: समय की धारा में, वो समय की धारा में।
1: श्रोताओं, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत को हम यहीं करते हैं, देते हैं विराम। जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए अपना विशेष ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और इस गर्मी से अपने आप को बचा कर रखिए, खुश रहिए। फिर मिलने के वादे के साथ अपने रेडियो दोस्त जयश्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समय है हिंदी समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए

गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।